0: Elena.
1: इस देशगान के साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन 12 संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान भाग 342 सुनिएगा। 6:45 सुबह और शाम संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला राग समय चक्र भाग 2। कलाकार हैं गायिका मंजरी आलेगांवकर, प्रस्तुति मनीषा जैन की। 7:00 भोले बिसरे गीत 7:30 से हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज का केंद्रित होगा संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के शंकर पर, आलेख और प्रस्तुति रमेश गोखले की। 10:00 पिटारा में आज के मेहमान फिल्म लेखक निर्देशक डॉ. विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान की। 11:00 रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल, 1:00 सुनिए सुरीला सफर। दोपहर 2:00 त्रिवेणी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 2:30 पर सदाबहार नगमे, सखियों सहेलियों का कार्यक्रम सखी सहेली। 3:00 से सुनिएगा कहानी पद्मश्री की, बीरूबाला रंभा, मुझे कुछ कहना है, ग्रामीण अंचल में रची बसी लोकोक्तियां, उपयोगी टिप्स, घरेलू नुस्खे रखेंगे सुंदर त्वचा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। शाम 4:00 हेलो फरमाइश, संवादक मंदाकिनी जोशी, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी। शाम 5:00 छाया गीत। पर शाम तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता। 7:45 पर इनसे मिले कार्यक्रम में सुनेगा अभिनेत्री एवं लेखिका असीमा भट्ट से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 8:00 सुनिए नाटिका बड़े दिनों के बाद, अजहर अफसर लेखन और निर्देशन है। 9:00 आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार। 10:00 छाएगी, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11:00 रंग तरंग। आपको फिर याद दिला दें हवा महल में 8:00 सुनिए नाटिका बड़े दिनों बाद, लेखक और निर्देशक हैं अजहर अफसर। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत।

हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 342 आज आप सुनेंगे लंका कांड।

युद्ध में जांबवान के पद प्रहार से मूर्छित होकर रावण धरती पर आ गिरता है। रात हो गई देख सारथी, उसे रथ में डालकर युद्ध स्थल से दूर ले जाकर उसकी मूर्छा दूर करने के उपाय करता है। भयभीत राक्षस वहां आतंकित खड़े हैं। त्रिजटा अशोक वाटिका में सीता को युद्ध की गति का विवरण सुनाती है। वाणों से कटने के बाद भी रावण के सिर और भुजाएं बढ़ने की बात सुनकर सीता उदास हो जाती हैं और माता के समान स्नेह देने वाली त्रिजटा से पूछती हैं कि किस प्रकार रावण का वध हो पाएगा। त्रिजटा कहती हैं कि हृदय में बाण लगने से वो मर सकता है, किंतु श्री रघुनाथ उसके हृदय को लक्ष्य इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वहां उसने तुम्हारी छवि बिठा रखी है, लेकिन बार बार सिर कटने से उसका ध्यान तुम्हारी ओर से हट जाएगा और तब श्री राम वहां वाण मारेंगे। उधर मूर्छा टूटने पर रावण युद्ध भूमि से अपने को दूर पाकर सारथी पर क्रुद्ध होकर उसे धिक्कारने लगता है।

0: राग समय चक्र। नमस्कार श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला राग समय चक्र। आमंत्रित कलाकार जानी मानी शास्त्रीय गायिका विदुषी मंजरी आलेगांवकर आपसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने। लीजिए आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं विदुषी मंजरी आलेगांवकर जी।
2: नमस्ते।
1: मंजरी जी, कल की कड़ी में जयपुर घराने की विशेषता को उजागर करने वाली बंदिश हमने सुनी जो सावनी राग में थी
2: जी।
1: आज समय चक्र में पहला प्रहर है दिन का, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है
2: जी।
1: उस समय कौन कौन से राग गाए जाते हैं और इसमें किस राग की विशेष रूप से चर्चा हमें करनी है, उस राग के चलन के बारे में, आरोह अवरोह के बारे में?
2: बिल्कुल बिल्कुल, बताती हूँ। यह राग समय चक्र हम सुबह के 4 बजे से यानी ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करते हैं
1: जी।
2: सुबह 4 बजे से 7 बजे तक गाए बजाए जाने वाले रागों को प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कहते हैं। वो सुबह शुरू होने का पहला जो समय होता है उसको संधि प्रकाश कहते हैं। इसमें शुद्ध मध्यम सागमा, यह शुद्ध मध्यम है
1: जी।
2: यह शुद्ध मध्यम का ज्यादा महत्व है और इस समय भैरव, कालिंगड़ा, जोगिया, ललित, रामकली, विभास और भैरव के सब प्रकार गाए जाते हैं। राग भैरव एक प्रमुख रागांग राग है, यानी भैरव के अनेक प्रकार होते हैं
1: जी।
2: नट भैरव है, प्रभात भैरव है, बैरागी भैरव है, शिवमत भैरव, बहुत सारे प्रकार है, इसीलिए उसको रागांग राग कहा है। थाट पद्धति के अनुसार यानी 10 थाट होते हैं
1: जी।
2: व्यंकट मखी जी ने 72 थाट मेल करता है वो, और भातखंडे जी ने 10 थाट बताए हैं। वो 10 थाट के पद्धति के अनुसार यह भैरव थाट का राग है। ये थाट भी भैरव है और राग भी भैरव है, इसीलिए उसको आश्रय राग भी कहते हैं। और राग रागिनी पद्धति के अनुसार 6 रागों में से एक पुरुष राग है। इसमें ऋषभ धैवत कोमल लगते हैं। सा रे रे रे, ये कोमल ऋषभ है। सा रे रे, ये शुद्ध ऋषभ होता है। और ये ऋषभ और धैवत वादी संवादी है और आंदोलित है। आंदोलित यानी

0: ये आंदोलन है। मैंने ऐसा नहीं बताया, सारे धा ये खड़ा सुर है।
1: अच्छा,
0: धा धा इसमें गोलाई है, इसीलिए उसको आंदोलित सुर कहते हैं। ये ऋषभ और धैवत वादी संवादी है और दोनों आंदोलित है। ये उत्तरांग प्रधान राग है, यानी पंचम के सा

ये पंचम के बाद आने वाले सूर है वो उत्तरांग होते हैं। राग का उत्तरांग पूर्वांग सारे गामा ये पूर्वांग है, पारानी सा ये उत्तरांग है। ये उत्तरांग राग है, उत्तरांग प्रधान है, लेकिन इस राग पूर्वांग उत्तरांग यानी तीनों सप्तकों में इसका विस्तार मंद्र मध्य और तार तीनों सप्तकों में किया जाता है।

और भैरव राग के लिए तानसेन जी कहते हैं, कहे मियां तानसेन सुनो शाह अकबर, सब रागन में प्रथम राग भैरव। उसको प्रथम बताया है, पहला राग बताया है, और भैरव का स्वरूप वैराग्य, भक्ति एवं शांत रसों को व्यक्त करने में समर्थ जरूर है। इस भैरव राग में मैं एक पारंपरिक बंदिश सुनाने वाली हूँ जो तीन ताल में निबद्ध है। भैरव राग का आरोह अवरोह है।

0: क्या बात है मंजरी जी, ये बंदिश जो आपने सुनाई, इसको सुनकर के याद आ रहा है राग परछाई के बारे में चर्चा हुई थी।
1: जी बिल्कुल,
0: इसी राग की परछाई कलिंगड़ा में देखने को मिलती है।
1: हा, हा, हा।
0: इसके बारे में आप क्या बताएंगे?
1: कलिंगड़ा भैरव के सम प्राकृतिक राग है
0: जी।
1: यह भक्ति रस प्रधान भैरव थाट का सुपरिचित राग है। भैरव के ही सुर इसमें लगते हैं, लेकिन उसका चलन अलग होता है। वो सीधा सरल है और भैरव जैसा वो गंभीर नहीं, थोड़ा चंचल है। तो हम कालिंगड़ा को भैरव राग की परछाई कहेंगे। यहाँ रागों के बारे में परछाई शब्द का प्रयोग किया है। हर राग का अपना एक ढंग होता है, स्वरूप होता है
0: जी।
1: और जैसे ही जैसे राग गाया जाता है तो आपके दिल में उसकी तस्वीर उभर आती है। उस राग की छवि हमारे मन में बन जाती है और यही छवि जब अलग रूप से किसी दूसरे राग में भी नजर आने लगती है तो हम उसे उस राग की परछाई कह सकते हैं। तो इसमें कालिंगड़ा राग भैरव राग की परछाई है
0: जी।
1: तो कालिंगड़ा राग का चलन कैसा है?

0: देखिए वो ही सुर है भैरव के सब,
1: हाँ
0: लेकिन चलन अलग है। सा रे गा रे सा, वो आंदोलित नहीं है ऋषभ दैवत, बिल्कुल आंदोलित नहीं है।

0: कलिंग देश में गाया जाने वाला भैरव यानी कलिंगड़ा, और आज भी लोक समाज में प्रातःकालीन भजन गायन में इस राग का अधिकतर प्रयोग होता है।
1: क्या बात है मंजरी जी, आपने कहा कि भैरव के सुरों को सुनकर के जो तस्वीर मन में उभरती है, ऐसा ही हुआ है कि एक गाना दिल में उभर रहा है और सुनाई दे रहा है। ये दिव्य स्वर लता जी का है,
0: हाँ,
1: और खूबसूरत रचना शैलेंद्र जी की, संगीतकार सलील चौधरी। जागते रहो फिल्म का ये गीत राग भैरव पर आधारित है, अपने श्रोताओं को सुनाते हैं।
0: जरूर जरूर।

0: राग समय चक्र। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जानी माने शास्त्रीय गायिका विदुषी मंजरी आलेगांवकर आपसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। तबले पर इनका साथ दिया बाल कृष्ण अय्यर ने और हारमोनियम पर शुभांगी भावसार ने। तकनीकी सहयोग गणेश शिंदे का।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनेगा थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को नमस्कार। सविता सिंह का

0: लता मंगेशकर की आवाज में आवारा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे हजरत जयपुरी, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं
1: और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

0: कहानी।
1: छोटी सी ये जिंदगानी रे, चार दिन की जवानी तेरी। आह, फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में सुन रहे थे। शब्दकार शैलेंद्र थे, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। और इस गाने के पहले आपने सुना था दाग फिल्म का गाना, तलत महमूद की आवाज थी, बोल शैलेंद्र ने लिखे थे और शंकर जयकिशन ने धुन बनाई थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चलिए इस भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते

0: पतिता फिल्म का गीत आप भी अभी आपने सुना। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में इसे गाया तलत महमूद ने, बोल शैलेंद्र ने लिखे थे।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
3: दिल तो पागल है,
1: दुश्मन
4: चिट्ठी न कोई संदेह,
1: गदर एक प्रेम कथा,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
1: पिंजर दास्तान, बेमिसाल संगीत की
6: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाँव,
1: एक उत्तम जीवन की

0: नचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

मन्ना डे की आवाज में बूट पॉलिश फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। शब्दकार थे शैलेंद्र, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में हलाकू फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में फांसी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इसे संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी।

0: उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित की आवाजों में फारूक कैसर का लिखा हुआ ये गीत अभी आपने सुना, बप्पी लहरी का संगीत था, फिल्म का नाम लहू के दो रंग।

0: मैं राजी हूँ गुजरिया, मैं राजी हूँ गुजरिया।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार आरटी बर्मन थे, फिल्म का नाम हीरालाल पन्नालाल। हमें राही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: जानी दुश्मन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की, वर्मा मलिक के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह।

0: प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पा
0: एक उत्तम जीवन

0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेंद्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

बनफूल फिल्म का गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत की धुन बनाई। अब आज का हम है राही प्यार की ये कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मंत्रिमंडल ने 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी। सरकार ने गन्ना किसानों के मुद्दों की जांच और उचित उपाय सुझाने के लिए समिति गठित की। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश की संभावना। और वेस्टइंडीज ने चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हराया, श्रृंखला 2-2 से बराबर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वे इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई यात्रा टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। लेह के निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दारचा से सुदूर जांस्कर घाटी के माध्यम से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा प्रदान करती है, जिससे श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्गों पर आवागमन और आसान हो जाएगा। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस PLB को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने इसके लिए 2009 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का बोनस दिया जाएगा।
3: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
1: इसमें रेलवे लाइन रखरखाव कर्मचारी, लोको पायलट गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के कर्मचारी सहित ग्रुप सी के रेलकर्मी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भी 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है।
3: दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें।

0: सेक्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेवी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: समिति गन्ने के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य में वृद्धि की मांग की समीक्षा करेगी, जिसमें खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। यह चीनी उत्पादन लागत, बाजार में मिलने वाले दाम और चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता के संदर्भ में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन की मांग की भी समीक्षा करेगी। जांच के अन्य प्रमुख बिंदुओं में शुगर रिकवरी की टेस्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा तंत्र और चीनी मिलों में गन्ने का वजन करने के मौजूदा तरीके भी शामिल होंगे। समिति मशीन से काटे गए गन्ने के वजन में से कटौती से संबंधित मौजूदा तरीकों भी जांच करेगी और कटाई से होने वाले वास्तविक नुकसान यदि कोई हो तो उसका आकलन करेगी। यह किसानों के देय गन्ने के मूल्य पर वर्तमान तरीकों के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ये समझौता समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी सहायक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरूआत की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 18 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंधिया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित ही है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारी इस विशेष श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे इस संकल्प को रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम जैसी संस्थाओं के माध्यम से साकार किया गया है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों के लिए काम कर रही है।
5: वर्ष 2016 में संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की स्थापना की गई। रेरा लागू होने के बाद से किसी भी फ्लैट के बेचने से पहले प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना जरूरी है। इसके तहत डेवलपर्स और खरीदारों के बीच के विवाद प्राधिकरण के पास जाते हैं और तय समय सीमा के भीतर सुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेरा के माध्यम से ग्राहक और डेवलपर्स के बीच का भरोसा बढ़ा है।
6: इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया।
5: गौतम बुद्ध नगर निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि रेरा के आने से डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के बीच आपसी समझ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रेरा के कारण बिल्डर समय से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और समय पर लोगों को कब्जा मिलना शुरू हो गया है।
7: डेवलपर और क्लाइंट के बीच में पारदर्शिता होती है। जो पैसे हम लगाते हैं डेवलपर के साथ, वो हमारा सुरक्षित पाया जाता है और हमें कोई भी आपत्ति यदि रियल एस्टेट के माध्यम से होती है तो हम किसी और के पास न जाके हम सीधा रेरा के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं और पूरी तरह से रेरा हमें संतुष्ट करता है।
5: रेरा ने डेवलपर्स और क्लाइंट के बीच के संबंधों को बेहतर बनाया है और खरीदारों के अधिकारों को वैधानिक रूप दिया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: देश भर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग इस अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। पुदुचेरी का लीसे फ्रांशे इंटरनेशनल डी पॉन्डिचेरी आज 200 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ये स्कूल अन्य देशों में अभी भी संचालित सबसे पुराने फ्रेंच स्कूलों में से एक है। एक रिपोर्ट।
8: इस आयोजन में 400 से अधिक पूर्व छात्र हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें कई फ्रांस से आए हैं। आज शाम होने वाले मुख्य समारोह में 1000 से अधिक मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, फ्रांसीसी शिक्षा एजेंसी के महानिदेशक अलेक्जेंडर मोरोइस, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगसामी भी शामिल होंगे। इस स्कूल की स्थापना ऐसे दौर में हुई थी जब उपनिवेशिक समाज में नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव होता था। बाद में प्रवेश के अवसर बढ़ाए गए और पाठ्यक्रम में तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। पुदुचेरी से विविन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।

0: और अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, शुरुआत करते हैं रियाद स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श से। दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अब भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी है। भारतीय विमानन कंपनियों ने इस महीने की 17 तारीख तक सऊदी अरब को आने जाने वाली उड़ानें निलंबित की हैं। उधर हुरमुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय सिंगापुर के दो मालवाहक जहाजों जीएफएस प्राइड और जीएफएस गिसेले पर अज्ञात मिसाइल हमलों से हमला किए जाने की खबर भी है। फिलहाल दोनों जहाजों के सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने पनडुब्बियों से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया है। हालांकि दक्षिण कोरिया की सेना ने परीक्षणों पर अभी तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। और कोलंबिया ने कल यरूशलम में अपने दूतावास का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कोलंबिया के नए राष्ट्रपति अबिलार्डो डे ला एस्प्रियेला ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कर लिए हैं। तो फरहत, ये थी अब तक की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
0: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए।
2: एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष पांच देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इन खेलों में भारत का रिकर्व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक और सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली बार पदक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इनमें महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक, 28 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक भी शामिल हैं। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब बात खेलों की। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। दोनों टीमें श्रृंखला में 2-2 की बराबरी पर हैं। अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दिल्ली से पहले रेलवे कर्मचारियों को तोहफा देने का समाचार कई अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका लिखता है रेलवे कर्मियों को 78 दिन का बोनस, दिव्यांगों को जन्म से मिलेगी पेंशन। अमेरिका में वर्क परमिट खत्म तो 540 दिन का एक्सटेंशन नहीं, नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों की सुर्खी है। छठ पर बिहार जाने वालों की राह आसान करेगी 3 विशेष ट्रेनें, अमर उजाला की खबर है। दैनिक भास्कर ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला दर्रे की तस्वीर दी है।
2: धन्यवाद वैष्णवी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आज की त्रिवेणी में सेहत की बातें। आज की भागम भाग वाली आधुनिक जीवन शैली में सेहत एक जरूरी मुद्दा बन गया है। दरअसल हमारी जीवन शैली में आगे निकलने की प्रतियोगिता बढ़ी है, तनाव बढ़ा है, जिसका सबसे खराब असर हमारी सेहत पर पड़ता है। लेकिन अब लोग अपनी सेहत को लेकर पहले से ज्यादा सचेत रहने लगे हैं, इसलिए अक्सर लोगों को पार्कों में घूमते, टहलते, दौड़ते और व्यायाम करते देखा जा सकता है। तो चलिए हम भी चलें।

सेहत का ध्यान रखना एक चुनौती जरूर है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि किया न जा सके। कुछ छोटी छोटी बातों पर यदि ख्याल रखें तो हम हमेशा फिट बने रह सकते हैं। यदि हम सुबह जल्दी उठें, ताजी हवा में टहलें और कुछ देर सूरज की किरणों के सामने बैठे रहें, साइकिलिंग करें, दौड़ लगाएं, नृत्य करें, सीढ़ियां चढ़ें और जिन बातों से स्ट्रेस होता है उनसे दूर रहें, इस तरह अपने भीतर की खुशी को अभिव्यक्त करते हुए हमारी जीवन की गाड़ी चल पड़ेगी।

0: कल की बात है, ए आँख मेरी फड़की, कल की बात है, आँख मेरी फड़की, जल्दी से गोद में फिर आई एक लड़की।
1: लड़की? अरे कौन थी वो लड़की?
0: मैंने जब पूछा बोल तेरा नाम क्या, तो हंस के वो बोली नाम से है काम क्या। आई थी वो धम से, आई थी वो धम से, गई छम छम छम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली।

0: नहीं जा रहा।
1: देखो आंख मारे लाल लाल सिग्नल,
0: सिग्नल को तोड़ दो बाद वाली सिंबल।
1: देखो बेल बॉटम गालों पे डिंपल, हल्का सा गालों पे है एक पिंपल।
2: मनु भाई प्यारा बड़ा अच्छा भैया, खोपड़ी की जेब में करे
3: तुरंग तक।

0: मचाएंगे, हुल्ला मचाएंगे, हैंड बाजा बाजेगा ठम ठम ठम। हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम।
1: आज हम न चाहकर भी कई प्रकार के मशीनों से घिरे हुए हैं, चाहकर भी हम मेहनत नहीं कर पाते। लेकिन स्वयं को यदि फिट रखना है तो व्यायाम के अलावा भोजन, स्वच्छता और विश्राम पर ध्यान देना होगा। रोज हमें उचित समय पर भोजन और 6 से 8 घंटे की नींद के लिए समय निकालना ही होगा।
2: एक दो चा चा चा, ऐसे बहुत अच्छा।

0: बजते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: मधुश्री अंचल सेठी चिन्मयी और वैशाली की आवाजों में रांझणा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल थे, एआर रहमान की तर्ज थी।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहाने खिली तनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: बॉर्डर टू फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं विशाल मिश्रा, तुलसी कुमार की आवाजें हैं। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा और विशाल मिश्रा का संगीत।

बॉर्डर टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाजों में मनोज मुंतशिर का गीत था, विशाल मिश्रा का संगीत था।

धुरंधर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में एक लेते हैं बहुत छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है
1: ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
4: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
3: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

0: लापता लेडीज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। श्रेया घोषाल की आवाज थी, स्वानंद किरकिरे के बोल थे, राम संपत का संगीत था।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
3: दिल तो पागल है,
1: दुश्मन
4: चिट्ठी न कोई संदेह,
1: गदर एक प्रेम कथा,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
1: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
6: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाऊं,
1: एक उत्तम जीवन

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज 15 अक्टूबर है। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती है। उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। अब्दुल कलाम की जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वे अपनी सादगी, ज्ञान और देश प्रेम के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें बच्चों और युवाओं से विशेष लगाव रहा। उनका मानना था, सपने वो नहीं जो सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। यानी सपने वो हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत करने को तैयार रहें। हमें हमेशा उन्हें पूरा करने की मन से प्रेरित करे। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आइए उनकी जयंती पर उनके आदर्शों, उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लें। अब चित्रलोक कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं आपको ये गीत। ये गुलाल फिल्म का गीत है। पीयूष मिश्रा ने इसे लिखा है। गीतकार और संगीतकार हैं पीयूष मिश्रा।

है प्रचंड गोल मस्तकों के झुंड बाज चंद की घड़ी की तुंग हार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज चंद की घड़ी की तुंग हार दो आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो प्रचंड बोल

सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड।

दया का भाव, या की शौर्य का चुनाव, या की हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव, या की शौर्य का चुनाव, या की हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या की पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या की केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। आइए इस कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: भोले भोले बम भोले भोले बम भोले।
1: हनुमान अंश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज थी साधु एस तिवारी की, गीतकार और संगीतकार साधु एस तिवारी थे। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज हिंदी साहित्य के छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक है महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज उनकी पुण्यतिथि है, हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। महाप्राण निराला को हिंदी कविता में मुक्त छंद का जनक माना जाता है। उनका पूरा जीवन और साहित्य अदम्य साहस, विशाल हृदय और संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी। इन्हें महाप्राण इसीलिए कहते हैं। उनकी कालजयी रचना राम की शक्ति पूजा में जब रावण से युद्ध करते समय एक दिन ऐसा आया जब विजय प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाई होने लगी, तब राम ने शक्ति की देवी जगदम्बा माँ दुर्गा की आराधना करने का संकल्प लिया। विजय की कामना से 108 नीलकमल अर्पित करने का संकल्प लिया था, लेकिन 108 में जब अंतिम कमल अर्पित करने का समय आया तो एक कमल रिक्त पाया। आदिशक्ति ने राम की परीक्षा के लिए उसे उठा लिया। तब राम बड़े व्याकुल हो गए कि एक कमल के बिना 108 की संख्या पूरी नहीं हो पाएगी। तभी श्री राम को अपनी माता का वो संबोधन याद आया कि माता कौशल्या उन्हें राजीव नयन कमल नयन कहती थी। तब महाप्राण निराला लिखते हैं राम की शक्ति पूजा की, ये कविता का ये अंश है। राम में जागी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमण, यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन। राम में जागी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमण, यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी यह पुरश्चरण। पूरा करता हूँ देकर मातह एक नयन। तब श्री राम अपनी आंख निकालकर शक्ति को अर्पित करने को उद्यत हुए। तभी आदिशक्ति प्रकट हुए और राम का हाथ थाम लिया। साधु साधु साधक धीर धर्म घन, धन्य राम कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम।

अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजों में तमाशा फिल्म का गीत अभी आपने सुना, इरशाद का मिलके बोलते, ए आर रहमान की तर्ज आपने सुनी। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अब चित्रलोक कार्यक्रम में एक और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हम आपको सुनवाएंगे गाने और कुछ बातें आपसे होंगी।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। निराला का हृदय मानव वेदना और संवेदना की प्रतिमूर्ति है। अपनी पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर उन्हें उनके विदीर्ण हृदय से जो शोक गीत प्रस्फुटित हुआ, वो सरोज स्मृति के रूप में हिंदी साहित्य का अनमोल धरोहर बन गया। यूं तो अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं में शोक गीतों की परंपरा रही है, किंतु सरोज स्मृति जैसी अभिव्यक्ति हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि पूरे विश्व साहित्य में दुर्लभ है। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति से उद्धृत ये पंक्तियां आप सुनिए। धन्य मैं पिता निरर्थक था, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने एक पिता की अत्यंत मार्मिक पीड़ा को दर्शाया है, जहां वो अपनी पुत्री के इलाज और परवरिश के लिए खुद को असहाय और विवश पाता है। और अब सुनते हैं चित्रलोक कार्यक्रम में एक और गाना।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वेमेन। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मुख्य रूप से कृषि खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास में ग्रामीण महिलाओं के अद्वितीय योगदान को सम्मान देने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मनाया जाता है। ग्रामीण महिला हमारे समाज और देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। इसके बावजूद भी कई जगह उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते। सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई गई हैं महिलाओं के अदृश्य श्रम को प्रोत्साहन देने के लिए। ग्रामीण महिलाएं इस ओर जानकारी लें और उसका लाभ उठाएं और सुनते हैं ये।

दंगल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रफ्तार और साथियों की आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और प्रीतम का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार, आप स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए, इसी कामना के साथ आपको फिर से नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है कि शोधा एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

गीत चाहे कोई भी हो, जब वो शंकर जयकिशन के साजों स्वर लहरियों पर सवार हुआ तो सीधे सुनने वालों के दिलों तक पहुंच गया और फिर वो श्रोता श्रोता नहीं आशिक बन गया।

आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार शंकर को, जिनका जन्म हुआ 15 अक्टूबर सन 1922 को हैदराबाद स्टेट के दक्षिणी हैदराबाद में, जो कि अब तेलंगाना राज्य में है। संगीतकार शंकर का पूरा नाम था शंकर सिंह राम सिंह रघुवंशी।

संग गालो और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गालो और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो।

संगीतकार शंकर की शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में हुई और फिर शंकर ने बाबा नासिर खान साहिब की देखरेख में तबला वादन की शिक्षा लेना शुरू कर दी। कुछ वर्षों के बाद शंकर ख्वाजा खुर्शीद अनवर के शागिर्द बन गए और फिर उन्हीं के ऑर्केस्ट्रा में रम गए।

सत्यनारायण और हेमावती का एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था जिससे शंकर जुड़ गए और थोड़े ही दिनों के बाद पृथ्वीराज कपूर द्वारा स्थापित पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। यहाँ वो संगीतकार हुसनलाल भगतराम के सहायक के रूप में काम

0: बात उन दिनों की है जबकि शंकर पृथ्वी थिएटर में काम किया करते थे। तब स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम की तलाश में वो कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के यहाँ स्ट्रगल के लिए जाया करते थे। उन्हीं में से एक थे गुजराती फिल्मों के निर्देशक चंद्रवदन भट्ट। शंकर इनके यहाँ नियमित रूप से जाते थे। चंद्रवदन भट्ट ने भी शंकर से वादा किया था कि जब कभी भी वो खुद कोई फिल्म प्रोड्यूस करेंगे तो उन्हें संगीतकार के रूप में साइन जरूर करेंगे। इस बात का जिक्र मैं इसलिए यहां कर रहा हूं क्योंकि यहीं पर शंकर की मुलाकात अक्सर एक युवक से होती थी जो कि बहुत अच्छा हारमोनियम बजाया करता था। तो एक दिन जबकि शंकर को पृथ्वी थिएटर में एक अच्छे हारमोनियम प्लेयर की जरूरत पड़ी तो उन्हें उसी युवक की याद आई और वो जाकर उसे अपने साथ ले आए और पापा जी यानी पृथ्वीराज कपूर से पूछे बगैर उन्होंने इस युवक को पृथ्वी थिएटर में काम पर रख लिया। अब जब पापा जी ने उस युवक को हारमोनियम बजाते सुना तो बेहद खुश हुए और शंकर को उन्होंने उनके इस चुनाव पर बहुत बधाई दी।
1: हर दिल जो प्यार करेगा वो गा...

0: महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना।
1: हाँ, तो हम बात कर रहे थे हारमोनियम बजाने वाले उस युवक की, जिसे शंकर ने अपने साथ पृथ्वी थिएटर में काम दिला दिया। दोनों साथ काम करने लगे, दोनों के बीच बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। जहाँ भी जाते दोनों साथ जाते। अब पृथ्वी थिएटर में उस समय होने वाले नाटकों में संगीत के अलावा दोनों छोटे मोटे रोल्स भी करने लगे। लोगों ने इनकी दोस्ती को देखते हुए इन्हें राम लक्ष्मण की जोड़ी का नाम भी दे दिया। अब ये जरूरी हो जाता है दोस्तों कि मैं उस युवक का नाम आपको बता दूं। वैसे ये कोई रहस्य नहीं है, आप जानते भी हैं। जी हाँ, जय किशन पांचाल।
2: मुड़ मुड़

तो शंकर जयकिशन की जोड़ी यहीं बन चुकी थी। अब यहीं यानी पृथ्वी थिएटर में दोनों की मुलाकात हुई पापा जी के बेटे राज कपूर से, जो कि उस समय निर्देशक केदार शर्मा के सहायक के रूप में काम कर रहे थे। राज कपूर ने जब खुद फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा तो अपनी पहली फिल्म आग के लिए उन्होंने बतौर संगीतकार राम गांगुली को साइन किया। फिल्म रिलीज हुई, संगीत भी लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन फिल्म के रिलीज होते होते राज कपूर और संगीतकार राम गांगुली के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए। और फिर जब राज कपूर ने अपनी अगली फिल्म प्लान की तो संगीत के लिए उन्होंने चुना शंकर जयकिशन को, और फिल्म थी बरसात।

यहाँ से शुरू हुई सुरीले गीत संगीत की वो बरसात जिसने संगीत प्रेमियों को बार बार अपने सरगमी छींटों से भिगोया। राज कपूर और शंकर जयकिशन के बीच एक ऐसा सुरीला रिश्ता बन गया जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया।

शंकर जयकिशन के बीच के सुरीले साथ ने एक के बाद एक कई ऐसी फिल्में दी जिन्हें आज भी सिने संगीत के रसिया याद करते हैं। आवारा, बादल, पूनम, नगीना, औरत, पर्वत, कालीघटा, आह, पतिता, शिकस्त, बादशाह, मयूर पंख, नया घर, सीमा, श्री 420, बसंत बहार, हलाकू, राजहट, कठपुतली, अनाड़ी, चोरी चोरी, यहूदी, लव मैरिज, उजाला और न जाने कितनी। अगर मैं सिर्फ नाम ही बताता रहूं तो शायद मुझे दो या तीन प्रोग्राम इन पे करने पड़ेंगे।

साथियों, शंकर जयकिशन की ये जोड़ी 12 सितंबर 1971 को अचानक टूट गई, जबकि महज 41 वर्ष की उम्र में जयकिशन का देहांत हो गया।

खेल में जय किशन नहीं थे, लेकिन संगीतकार शंकर ने उनके नाम को अपने से अलग नहीं किया। जब तक वो रहे, शंकर जय किशन के नाम से ही संगीत देते रहे।

और आखिर 26 अप्रैल 1987 को शंकर ने भी अपनी तमाम धुनों और साजों को अकेला छोड़ दिया और इस दुनिया से विदा ले ली, और पीछे उन्हें भी अकेला छोड़ दिया जो उनके सुरों के मुरीद थे, जो उनकी सरगम के इंतजार में रहते थे।

0: संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के संगीतकार शंकर पर केंद्रित आज के फनकार प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले, शोध आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुनने वाले हैं उन्हें जिनकी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों हमारे मन को छू रही है, खास तौर से इसके कुछ गीत जैसे कि ये
1: हो। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई,
0: और ये गीत तो हमारे दिल में घर ही कर चुका है।
2: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: तो आज हनुमान अंश फिल्म की शूटिंग और सृजन से जुड़ी बातें हमसे साझा करने आए हैं निर्देशक विशाल चतुर्वेदी। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। इस बातचीत की पहली कड़ी हमने पिछले सप्ताह सुनी थी और अब सुनते हैं इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी।
3: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे लेखक निर्देशक की आमद है जो इन दिनों बहुत चर्चा में है। ये है युवा लेखक निर्देशक और आजकल इनके नाम के दीवाने हो रहे हैं लोग, वो हैं जाने माने निर्देशक और लेखक विशाल चतुर्वेदी जी। उनकी फिल्म बहुत हिट हुई है। विशाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
4: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए ममता जी।
3: विशाल जी, सबसे पहले तो बधाई लीजिए अपनी फिल्म की हनुमान अंश। हमने भी देखी और समूह के साथ देखी, बहुत अच्छी लगी, तो बहुत बहुत बधाई।
4: धन्यवाद।
3: और अब आपकी दूसरी फिल्मों का जिक्र करते हैं विशाल जी। इसके पहले भी आपने फिल्में बनाई हैं, तो उन फिल्मों के बारे में बताइए। कहाँ से आपकी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट का चुनाव और लिखने का चुनाव कैसे आपके मन में आता है, क्या क्राइटेरिया होता है?
4: मुझे लगता है कि एक तो मैंने पहले ये डायरेक्टोरियली मेरी पहली फिल्म है। इसके पहले मैंने फौजी 2 मतलब फॉलोअप सीजन ऑफ फौजी 1 जो शाहरुख खान जी का जो सीरियल था उसका एक फॉलोअप सीजन मैंने पिछले वर्ष लिखा।
3: द गर्ल ऑन द हाईवे
4: वो हमारे अपना हम बहुत सारी आईपीज हमने क्रिएट किए उसमें। okay. वो अपनी आईपी अपना कंटेंट है। द गर्ल ऑन हाईवे प्लस जो है ना हुड़दंग में क्रिएटिव डायरेक्टर था मैं। बहुत से मित्र हैं जो उसके डायरेक्टर हैं प्लस

0: कर्मा मीडिया एंटरटेनमेंट में कुछ समय तक कंटेंट हेड कर रहा था, तो मुझे लगता है कि मैं जो है ना बहुत समय से वायरल फिल्म्स तो बना रहा था जो कि शॉर्ट थी, 10 मिनट 12 मिनट की फिल्म्स होती थी वो, और एड्स भी थे मेरे बहुत वायरल हो जाते थे। तो वायरल शॉर्ट से वायरल सोशल मीडिया वायरल कंटेंट से थिएट्रिकली वायरल फिल्म बनाने का मुझे एक चस्का भी था कि ऐसी फिल्म बनानी जो सब एक्सेप्ट करें, जो सब देखें, जिसके बारे में कोई नेगेटिव ना बोले। अब ये अचीव करने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी समझ की आवश्यकता थी जो मुझे बहुत समय से जिसको मैं फॉलो कर रहा था कि कैसे मैं ऐसा कंटेंट लिखूं जिसको सब प्यार करें, जिसमें आप महिलाएं तो महिलाएं, बच्चे तो बच्चे, ग्रैंडसन ग्रैंडफादर, मौसा फूफा, जो भी आप पॉसिबल है, दोस्त मित्र, आपको हर व्यक्ति के लिए हर रोल के लिए आपको एक कुछ मिल जाए फिल्म के अंदर और आप उस फिल्म को सराहें। तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो कि हो कैसे गई मुझे पता नहीं, क्योंकि आज के सोशल मीडिया के जमाने में कुछ भी कितना भी अच्छा आप कर लो लेकिन आपको नेगेटिव करने वाले कोई ना कोई मिल ही जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप समझिए, सोचिए, आपके 9.7 की रेटिंग है, ऑलमोस्ट 10 ही हो गया ऑन बुक माई शो, 1.5 लाख से ऊपर रिव्यूज हैं उस पे। आप नेगेटिव ढूंढते रह जाएंगे, आपको मिलेगा ही नहीं। इंटरनेट सोशल मीडिया पे आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा, कमेंट ही नहीं मिलेगा नेगेटिव।
1: बिल्कुल नहीं।
0: तो ये कैसे हो गया, ये अपने आप में एक चमत्कार है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगता था कि लोग लेंगे साइड, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। चूंकि फिल्म में कोई विलन नहीं है, चूंकि फिल्म में किसी को भी एंटागनाइज नहीं किया, चूंकि फिल्म में ऐसा कोई मुद्दा समाज का नहीं है जो मैंने, जिसको मैंने केटर नहीं किया। अगर वो पति पत्नी के बीच में वो है तो सबको एड्रेस किया है समाज समस्याओं को। तो मैं इस फिल्म को बोलता हूँ, जब मैं फिल्म को पोजीशन कर रहा था तो मैं बोलता हूँ इसको कि स्पिरिचुअल सॉल्यूशन टू द सोसाइटल प्रॉब्लम्स, ये मेरे लिए वो फिल्म है। मैं एज अ फिल्म मेकर क्या बोलूं, एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ,
1: मानवीयता है,
0: मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ, कुंडलिनियों को डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये मैं एज अ डॉक्टर, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन और Somebody who's a filmmaker और वो समाज को कुछ तो दे है ना भाई, आप फिल्म बना के दे क्या रहे हो एंटरटेनमेंट के साथ में। बट किसी भी समय पे फिल्म में से एंटरटेनमेंट जाना नहीं चाहिए कि आपको फिल्म जो है ना टिटलेट करती रहे, आपको कॉन्स्टेंटली आपको जो है ना वो एक बांध के रखे और आपको मजा भी आता रहे।
1: तो यहाँ एक गाना सुनते हैं
0: जी,
1: बताइए कौन सा गाना सुनवाए।
0: मुझे लगता है कि अमेरी जोरा जबी वो समय है।
1: सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद वापस की फिल्म पर आते हैं विशाल जी, एक आध्यात्मिक कहानी को फिल्मी कहानी के रूप में ढालना थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो होता है, ये तो आपने इसमें हनुमान अंश में तथ्य समय और कहानी को कैसे तीनों में संतुलन बनाया आपने?
1: तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तथ्यात्मक रूप से मैंने रेफरेंसिंग करी अच्छे से, प्रॉपर रेफरेंसिंग करी, तो उसमें बहुत गलत ना चला जाऊं, सिनेमेटिक लिबर्टी तो लेते ही हैं हम सब, लेकिन कहीं गलत ना चला जाऊं, गलत का मतलब कोई ऑफेंड ना हो जाए, उनकी उनके परिवार वाले इन्फेंड ना हो जाए, उनके फॉलोअर्स इन्फेंड ना हो जाए, या एक आप सनातन को मानने वाले हैं, आप अगर हिंदू धर्म में के बिलीवर हैं, आपकी भक्ति पे कोई किसी तरह का आपको ना बुरा लग जाए, तो संवेदनशीलता जब हम, मुझे मेरा कहना मानना ऐसा है कि संवेदनशील आप जब होते हो, आप जिस सब्जेक्ट पे भी काम कर रहे हो, तो आप एक अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो सेंस रहता है कि आप कहीं गलत ना कर दो, तो तथ्यात्मक रूप से मैंने कोई उसको जो है ना बैलेंस करके रखा। कालखंड को मैनेज करना, क्योंकि पीरियड फिल्म्स जनरली बहुत टफ मानी जाती हैं और माना जाता है कि आप उस कालखंड को करोगे, क्रिएट करोगे तो बहुत महंगा होगा, जबकि मैंने उसको उल्टा सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर को बोला कि 4 कलर्स के कॉस्ट्यूम्स होने चाहिए, पांचवा नहीं होगा,
0: जी जी जी,
1: और थान खरीदो और उनको कलर करो, तो पगड़ियां बनेंगी या धोती बनेगी या कुछ भी बनेगा, वो सेम कलर, 4 कलर के अंदर पांचवा कलर नहीं होगा कॉस्ट्यूम्स में। सिमिलरली ऑन द वॉल्स, जो भी वॉल्स हैं, एक तो मैं सेलेक्ट ही ऐसी जगह करूंगा जहां पे किसी तरह की मॉडर्निटी ना हो, तो उसको बचना वहां से, लेकिन जो मैं पेंट करना है, पेंट करने के लिए भी लगभग 4 कलर है, उनका पैलेट है एज एन वॉल का, जिसको प्रोडक्शन डिजाइन बोलते हैं, और कॉस्ट्यूम डिजाइन जिसको बोलते हैं, तो कॉस्ट्यूम के कलर्स में और इसके कलर्स में इनको 4-4 कर दिया, प्लस मैंने पूरी फिल्म को 9 भाग में बांट दिया,
0: अच्छा,
1: लगभग 9 चैप्टर्स थे, उनको बांट दिया। और ये करने से हुआ ये कि हम कहीं ना कहीं वो जिन गलियों में घूम रहे थे, जिन वॉल्स को हम देख रहे थे, जिसको जो हमें कलर्स पता था, सबको क्लैरिटी थी कि यार ये कलर नहीं हो सकता, कोई कलर हो ही नहीं सकता मॉडर्न है, तो पेंट करो, रीपेंट करो उसको, मतलब जब आप उनको वापस करोगे तो रीपेंट कर दो, इफ दे आर ओके विद द सेम पेंट इट्स ओके। तो ऐसे करते करते करते मिट्टी के बने हुए मकान, पुरानी जो वॉल्स, पुराने कोतवाली, पुरानी जगहें, उन सबको हमने टारगेट किया, फोकस किया, और मिलते भी गए हमको, तो ढूंढते ढूंढते हमको मिलते भी गए। तो ऐसे करके मैंने पीरियड अप्रोप्रिएट किया। और तीसरा सवाल था आपका
0: कि कालखंड और इसको आध्यात्मिक व्यक्तित्व की कहानी को फिल्मी कहानी के रूप में ढालना
1: कैसे,
0: तो
1: बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं था, क्योंकि मैं खुद भी एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे हूँ बहुत समय से, पिछले 20 साल से, मैं उसका श्रेय पूरी तरह मैं अपनी माताजी को देता हूँ, मुझे कंसिस्टेंटली जो है ना वो पुश करती रहती हैं और कुछ कुछ बताती रहती हैं कि ये सुन लो, ये हो गया, वो हो गया, ये किताब पढ़ लेना, भले मैं पढ़ पाऊँ ना पढ़ पाऊँ उनकी बात को मना नहीं करता, मैं कहता हाँ मैं कर लेता हूँ, और कई बार वो बोरिंग भी होता है जो बोलती हैं, कह रही नहीं ये सुन लो वो सुन लो, अब मैंने जिस जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में क्लियर हो गया मैं उनको ही फॉलो करता हूँ, तो मैं नई नई चीज़ों में जंप नहीं करता, उनको बहुत इंटरेस्ट दिन भर यही करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी 20 साल से मैं जो फॉलो करते आया, बिकॉज ऑफ mother, I could actually talk about the subject matter and the core principles. कि किसी का कुंडलिनी जागरण हुआ होगा, अगर सिद्धियां आई तो कुंडलिनी जागरण हुआ होगा, कुंडलिनी जागरण के बिना तो सिद्धियां नहीं आएंगी, तो सिद्धियां कहां से आई होंगी, तो उसके लिए कॉन्सेप्चुअली आपको you'll have to deep dive, you'll have to figure out कि हुआ क्या होगा। तो नाथ संप्रदाय के जो साधु मिलते हैं, जहां पर सांसा हाले हंसा चाले सॉन्ग है, जहां पे वो इट ऑल टॉक्स अबाउट कि आपके भीतर जो है ना, भीतर बड़ा उजाला भासे एक मणिधर आगे, दीज लाइन्स जो है वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स येट वेरी सिंपल, कि वो जो मूलाधार में जो मणि चक्र बोलते हैं, जिसको मणि बोलते हैं, कि कुंडलिनी का जो मणि है, तो भीतर बड़ा, और जो अंधेरे में जो ताला खोले, वो बिना चाबी के अंधेरे में ताला खोले, अंधेरा ही है ना, आप जब आंख बंद करोगे तो अंधेरा है, तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअली चीजों को इंक्लूड करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत समझ की आवश्यकता थी, वो मुझे मेरी अपनी माताजी के वजह से बहुत मिली, प्लस मुझे एक आई फाउंड वन ऑफ द बुक कॉल्ड सारस्वत कुंडलिनी जागरण एक्सीडेंटली बाय समबडी आई मेट, ही रेफर्ड दैट बुक समहाउ, मैं एक वंदे भारत ट्रेन में बैठा था, 6 घंटे का समय था, मेरे पे आईपैड पे वो बुक थी, मैंने उसको खोल के पढ़ना शुरू किया, उसके 58वें पेज पे मुझे सासा हाले आसा चाले मिल गया, जो कुंडलिनी जागरण के बारे में गुरु गोरक्षनाथ की 11वीं शताब्दी की लिखी हुई कपलेट से, और वो इतनी सिंप्लीफाइड और उतनी गूढ़ और सिंप्लीफाइड येट सिंप्लीफाइड, सो आई लव थिंग्स विच आर वेरी सिंप्लीफाइड, यू विल लव टू हियर देम इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, गूढ़ इन्फॉर्मेशन सिंपल वर्ड्स में मिले, पॉकेटेड इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं, बट अंडरस्टैंडेबल इफ यू विश टू गो इन टू, आप डीप डाइव करोगे, अगर आप मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान आप डीप डाइव करोगे तो आपको उसके अंदर वो मिलेगा जो आप

0: शायद जिंदगी में ना खोज पाओ,
1: बिल्कुल
0: उतनी क्लैरिटी ना मिले। तो मेरा ये जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्पिरिचुअल पर्सन दैट आई प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, कि अगर आप उसमें डीप डाइव करना चाहते हो तो आप कर लो फिर,
1: बिल्कुल
0: आपके पास में ये रास्ता है, सुगम रास्ता है, इसको आप समझ लीजिए। मैंने समझाया, मैंने आपको समझा दिया, हो सकता है कि मैंने 5% ही समझाओ, लेकिन एटलीस्ट 5% 4% समझेंगे आप, फिर आपकी जर्नी आप देखेंगे आप कैसे कहाँ जाना है।
1: तो यहाँ पर ये आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए आपकी माँ का बहुत बड़ा रोल है
0: जी।
1: और माँ पिता से हम बहुत कुछ सीखते हैं, कभी डांट खाते हैं, मार खाते हैं, तो ऐसी कोई शरारत वाली घटना भी बताइए, अच्छी अच्छी बातें तो बता रहे कि डांट पड़ी हो वो भी बताइए।
0: बहुत मैं अपने भाई की वजह से बहुत मार खाता था, मेरे भाई मुझे जो है ना ट्रैप करा देता था कुछ कुछ चीजों में, कभी बचपन में भाई ने मुझे बहुत जो है ना इस तरह की सिचुएशन में फंसाया है
1: जी,
0: तो मार तो मैं खाता था लेकिन भाई की वजह से खाता था, और वो तो फिर माता जी के हाथ में जो आ जाए, फिर वो पाइप होता था जिससे
1: बेलन
0: पाइप चिमचा, तो कर ये तो आप सब देखते हो, लेकिन जो प्लास्टिक का पाइप होता है ना जिसमें पानी भरते हैं वो बड़ा खतरनाक होता था, वो चिपकता भी बहुत था वो, तो वो तो मैंने बड़े काफी उम्र तक खाया है वो, मुझे
1: अच्छा।
0: मुझे याद नहीं कौन, कि मुझे लगता है कि मैं 17-18 साल तक की उम्र तक भी खाया है।
1: तो लेकिन क्या बात होती थी, घटना क्या रहती थी?
0: She will just get furious and then she will beat and then now you don't have any option because you ये तो जॉब है तो
1: मतलब कौन सी गलती आप करते थे जिससे मार पड़ती थी?
0: मैं एक्चुअली कोई सच वो नहीं थी, इंफॉर्मेशन कैसी कैसी पास होती है, इंटरप्रिटेशन होता है ना, कैसे आप इंटरप्रेट कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फिल्म और फॉर अ स्टोरी कि आप जो भी इंटरप्रिटेशन की पॉसिबिलिटीज होती हैं उसको आप यू वर्क इट आउट। एंड आई टेल यू वन ऑफ द सीन जहां पे फिल्म में जो है ना वो महाराज जी को नीचे उतार देते हैं और गोपाल को और महाराज जी को उतार देते हैं, आपको जो हमारी ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी उसमें गोपाल था ही नहीं उस सीन के अंदर, किसी ने मुझे बोला कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि महाराज जी एरोगेंट हैं, उन्होंने अपने गुस्से में आके उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। मैंने कहा यार बात तो सही बोल रहे हो तुम, सोचता हूं मैं इस बारे में, तो मैंने शूट पे वहीं पे जाके वो उस पूरे के पूरे उसमें इवेंट में उसको इंक्लूड किया, तो अगर आप देखें गोपाल के पास बहुत डायलॉग्स नहीं है
1: जी,
0: पूरे सीक्वेंस में गोपाल डायलॉग्स नहीं बोलता क्योंकि डायलॉग लिखे ही नहीं गए थे, वो चूंकि गोपाल को धक्का मार के गिरा दिया इसलिए महाराज जी को गुस्सा आती है और वो फिर गोपाल से ही हर बात पे, अगर आप याद हो आपको वो जब रोने लगता है, वो कहते हैं यहाँ पे स्टेशन बनेगा और यहाँ पे कभी सेल संत को नहीं उतारेंगे, तो ही लुक्स एट हिम एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग बिकॉज ही नोज दैट ही इज ये मेरे लिए कर रहे हैं, तो मैं उनका साथी, मुझे भाई भी बोलते हैं, मतलब मुझसे भाई भी बोलते हैं और मेरे लिए कर रहे हैं और समाज के लिए कर रहे हैं, दैट्स हाउ दैट सीन वर्क्स। तो इंटरप्रिटेशन है, अगर आपने इंटरप्रिटेशन में ध्यान नहीं दिया होता मैंने तो शायद वो सीन इतना अच्छा वर्क नहीं करता, हो सकता कोई भी ना मुझे क्वेश्चन करता,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन फिर भी मैं उस बात पे गौर किया और उसके हिसाब से थोड़ा सा जो भी आमूलचूल परिवर्तन करते हुए वो फिल्म का इंटरप्रिटेशन चेंज किया, दैट वर्क्ड फॉर पीपल, बिकॉज़ किसी ने मुझे कल ही बोला कि द वे ही लुक्स एट महाराज जी एंड स्टार्ट्स क्राइंग वो मेरे लिए सीन में सबसे ज्यादा वर्क किया।
1: तो यहाँ माँ का ही जिक्र चल रहा है तो मुझे लगता है कि माँ के नाम एक गाना होना चाहिए, माँ पिता के नाम, कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे?
0: माँ के नाम पे, माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे।

0: बहुत सारी बातें माँ पिता के बारे में संस्कार होते हैं, लेकिन ये जो मेडिकल की पढ़ाई आप कर रहे थे, मैं MBBS कर रहे थे, बाकायदा एक डॉक्टर बन चुके थे, फिर अचानक फिल्मों की ओर झुकाव कैसे हुआ, मतलब वो बीज कैसे आया? आप इतनी बड़ी, मतलब एक आपको नौकरी मिल चुकी है और फिल्मों की ओर जाना कितना बड़ा रिस्क था, तो कैसे आपने चयन किया ये?
1: आई थिंक बहुत टफ था। मुझे लगता है कि मैं आ तो गया मुंबई, और आया क्यों मैंने बता दिया कि मैंने लखनऊ में ऐसा माहौल में चला गया मैं कि मुझे आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, म्यूज़िक में इंटरेस्ट आ गया, डिफरेंट आर्ट फॉर्म में पोइट्रीज लिखने शुरू कर दी मैंने। तो वो कॉलेज में भी करता रहा, परस्यू करता रहा करता रहा, फिर एक समय ऐसा आया कि मुझे मेडिसिन पसंद आ गई। अब वो दोनों पसंद हैं, अब दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, तो बैलेंस बना नहीं। कुछ सालों मैंने जो है ना यहाँ पे नौकरियाँ भी की मुंबई में, और उसके बाद में कुछ समय मैंने अपनी क्लिनिक भी चलाई, और बाय द एंड ऑफ इट मुझे समझ में ये आया कि एक समय ऐसा हो गया कि मुझे लग रहा था कि इट इज टू एग्जॉस्टिंग टू, ये दोनों अलग अलग दुनिया है। मैं इस दुनिया में जाता हूँ फिर इस दुनिया में आता हूँ, और मेडिसिन जो है ना, चूंकि आई एम लिटिल इमोशनल पर्सन, मैं अपना मोबाइल फोन कभी स्विच ऑफ नहीं करता था, यानी साइलेंट भी नहीं करता था। पता नहीं किस पेशेंट का किस हालत में कॉल आ जाए, किस व्यक्ति का जान जो है ना जोखिम में हो और वो बोल रहे हो, लेकिन लोग कॉल ऐसे भी करते थे, सर 2 बजे के, सर जो है थोड़ा पेट में गैस बन गया, हॉस्पिटलाइज्ड है, बोल रहे पेट में गैस बन गया। तो फिर मुझे एकदम समझ में आया कि ये दोनों मेरे लिए पॉसिबल है नहीं, और मैंने अपनी पीक जो प्रैक्टिस थी उस पर चलते हुए मैंने अचानक से एक दिन क्लिनिक बंद कर दिया, और तब से मैं वो सारे जो पेशेंट्स हैं उन सबके मैं फोन पे इलाज कर रहा हूँ कई सालों से। तो ऐसा नहीं होने उनको छोड़ दिया, सागर में नैया डाल दी, मैं उनको मजार में नहीं छोड़ा मैंने। तो खैर, विद देन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स 2011 में मैंने अपनी क्लिनिक बंद की, और उसके बाद से मैंने उसी समय मैंने कैमरा खरीदा, और सेम समय मैंने म्यूजिक भी छोड़ा था, म्यूजिक और मेडिसिन दोनों छोड़ दी मैंने। मैंने एक फिल्म साइन की थी, और काफी बड़े प्रोड्यूसर थे उनके, मैं आज भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया बाद में आगे जाके। तो उनकी एक फिल्म थी जिसके सारे गाने मैं कर रहा था, सारे गाने सेलेक्ट हो जाते हैं, 2 साल तक उस पर काम चलता रहता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि वो गाने शायद वो डायरेक्टर के लिए वर्क नहीं कर रहे थे, या वो डिसाइडेड कि मुझे लगता है कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा हूँ नहीं, मैं म्यूजिक कंपोजर शायद सिंगर सॉन्ग राइटर ज्यादा अच्छा हूँ, मैं अपने लिए अच्छा गाने म्यूजिक बनाता हूँ, गाने बनाता हूँ, लेकिन किसी सिचुएशन के लिए मैं शायद बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, मैं इस बात को क्वेश्चन करने लगा, और अल्टीमेटली मुझे डायरेक्ट करना था, लिखना था और डायरेक्ट करना था, मेरा वो अल्टीमेट उद्देश्य था। तो मैंने कहा कि जब वो ही अल्टीमेट है तो मैं क्यों ना उस पर ही लगूं। 2011 से 26 तक, 15 साल तक, 14 साल तक, वो 25 तक मैं कहूंगा, वो यात्रा पूरी मेरी चर्निंग चली है, टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन, टू राइटिंग, ये वो सब कुछ जो भी है। तो पहली स्क्रिप्ट मैंने 6 साल में लिखी, 6 साल तक एक ही स्क्रिप्ट थी मेरे पास में, दूसरी स्क्रिप्ट मेरे 1.5 साल में, अनदर स्क्रिप्ट फिर साल में, फिर हर 2 महीने पे एक स्क्रिप्ट लिखने लगा मैं। तो ऐसा मेरे पास कुछ 53 स्क्रिप्ट प्लस कॉन्सेप्ट हैं जिन पे मैं अलग अलग समय पे काम करता रहा हूं या करना चाहता हूं भविष्य में।
0: और ये स्क्रिप्ट 15 दिन में लिखी, तो अगली स्क्रिप्ट 10 दिन
1: में। नहीं, ऐसा नहीं, अगर डिजिटल माध्यम से निकल गए तो कुछ भी हो सकता है, वो तो डाउनलोड है।
0: यहाँ पर गाना सुनवाते हैं।

0: गाने के बाद विशाल जी हमारे श्रोताओं को बताइए कि एमबीबीएस आपने बचपन के उस संसार के बारे में बताया जहां माँ की मार थी, डांट थी। जब एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे आप, तो उस समय टीचर्स की, प्रोफेसर्स की डांट भी तो रही होगी, उनके बारे में भी बताइए, कोई दिलचस्प घटना बताइए।
1: तो मेडिकल कॉलेज में जो है ना, कुछ होता नहीं, इज्जत नहीं होती है जूनियर की, है ना। मतलब ऐसा होता है कि वो कॉलेज के अंदर एकदम बहुत ही दयनीय स्थिति होती है पहले साल में। और मुझे क्या था कि मुझे, अब वो नया नया कॉलेज में हूँ लेकिन जाना तो बम्बई है जी। तो मैं दोस्तों के साथ में, दो तीन दोस्त मिलके बम्बई चले गए, हमने 15 दिन का बंक मार दिया। अब उसमें मेरा दूसरा दोस्त था, वो भी एमबीबीएस ही कर रहा था, बहुत अच्छा गिटारिस्ट है, निरंजन पांडे। उसका इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई में था नहीं, बिल्कुल ही नहीं था, और वो बहुत ही होमसिक भी था, ये सब चीज़ें थी। हम तीनों दो लोग और मेरा एक लखनऊ का दोस्त, हम सब लोग बम्बई आए कि हमारे पास जो गाने हैं, सॉन्ग्स हैं, वो हम पिच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। करके 15-17 दिन मैंने वहाँ पे करके वापस गया अपने कॉलेज। तो वहाँ पे बंक मारना अच्छा है। तो वहाँ पे मेरे बहुत, अभी तो बहुत अजीज टीचर हैं वो, रामजी पवार उनका नाम है, डॉक्टर रामजी पवार, एनाटॉमी पढ़ाते थे वो। ऐसा टॉल, डार्क, हैंडसम, 6 फीट, और मतलब क्या पर्सनालिटी थी, मतलब हमारे कॉलेज के अमिताभ बच्चन थे वो, सब फैसिनेटेड रहते थे उनसे। लेकिन वो बहुत फ्यूर, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे।
0: अच्छा।
1: और वो पकड़ लिया तो वो कुछ भी करेंगे। तो मेरे थोड़े से बाल लंबे हो गए, थोड़े लंबे बालों, मुझे लंबे बाल करने का शौक भी था, बम्बई से आया लंबे बाल के साथ में। और गलती से मैं जो है ना, आगे वाली सीट पे बैठ गया।
0: अच्छा।
1: अब उन्होंने पहले से नोटिस कर रखा था कि ये लड़का गायब है, या बहुत दिन से दिखाई नहीं दिया है। तो उन्होंने बोला, किसी को सवाल किया, कल क्या एनाटॉमी का कुछ तो सवाल था, जिसका जवाब मैंने दे नहीं पाया। और वो पता नहीं, वो आगे बैठने की वजह से उन्होंने पकड़ लिया, और उन्होंने मेरा सर पकड़ा, ऐसा बाल पकड़ और बाल पकड़ के पूरा ऐसा, और कई बार उन्होंने 7-10 मिनट का लेक्चर बाल पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाते हिलाते किया। तो जो जो इंसल्ट थी, जो जिसको बोलते हैं, हाँ, जो अनबेरा की, और क्या ये क्या कर दिया मैंने, और ये आगे क्यों बैठना था। तो ये सारी चीजें जब हुई, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से मेरा एक इंटरेस्ट वापस पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई की तरफ ध्यान देने, क्योंकि इंसल्ट हो गई है। अभी तक तो आप म्यूजिशियन हो, पोइट हो, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट यू बिकॉज यू समहाउ। मैं ऐसा था कि मैं जब पहुंचा था अपने कॉलेज, तो पहुंचने से पहले लोगों को पता था कि देयर इज दिस गाय जो कि इसका बैंड है लखनऊ में और बहुत अच्छा गाता है, ऑल ऑफ दैट। तो मैं ऐसा छोटे से स्टार की तरह एंट्री हुई थी कॉलेज में, और वो जो धुलाई हुई मेरी, उसकी वजह से मैंने थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, नहीं तो पहले साल में फेल हो जाता मैं।
0: जी, यहाँ पर पढ़ाई और धुलाई दोनों की बात हो गई, बैंड का जिक्र किया आपने लखनऊ में, कौन सा बैंड था, म्यूजिक बैंड?
1: म्यूजिक बैंड था, अपने मेरे अपने कंपोज सॉन्ग्स थे। मेरे एक मित्र हैं शिखर श्रीवास्तव, अभी वो गल्फ में

0: चले गए, हम आप म्यूजिक टीचर हैं, और भी दो दोस्त थे ऐसे, तो हम मिलके जो है ना, वी हैड अ बैंड, तो वहाँ पे जाके लाइव परफॉर्मेंसेस करते थे ओरिजिनल सॉन्ग्स के. सो वी वर इन अ वे लिटिल पॉपुलर ऑल्सो. बट देन मूव टू गोरखपुर, तो गोरखपुर में तो क्या ही होता है, मतलब कॉलेज कल्चरल साल में एक बार होते हैं, उन 3 दिन में ही अपन स्टार होते हैं, उसके बाद फिर वापस वही जो है, जैसे बोलते हैं ना कि रेगुलर डेज ऑफ लाइफ. तो वो 5-6 साल मैंने बहुत म्यूजिक को मिस किया कि मैं सीख नहीं पा रहा था और ये सब कुछ था. लेकिन फिर आके मुंबई आके भी मैंने एक बार इन बिटवीन 2017 एंड 2020 आई डिड इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स, शॉट देम वेल, ऑल ऑफ दैट. तो वो एक इंटरेस्ट जो था उसको मैंने पूरा कर लिया.
1: अगर याद है वो म्यूजिक बैंड का कुछ
0: आई कैन सिंग,
1: कुछ याद है तो गा
0: आई कैन
1: दीजिए।
0: सिंग अ सॉन्ग, या आई कैन सिंग कपल ऑफ लाइंस. एक हवा का हूं झोंका उड़ता ही फिर रहा हूं, इस गली उस डगर को घूमता फिर रहा हूं, रास्ते ही जिंदगी, क्या है गम क्या है खुशी.

0: दिस वॉज वन सॉन्ग,
1: बहुत बढ़िया.
0: उसकी उसकी एक एक दो लाइनें बहुत सुंदर लाइनें, वो मैंने लद्दाख में पूरा फिल्माया था उसको
1: यहाँ जिक्र कविता का भी चला ना,
0: जी
1: और यादों के गलियारों में इस समय सैर कर रहे
0: जी
1: हैं, तो कोई कविता याद है वो जो उन दिनों में लिखी है, कोई खास कविता?
0: एक एक खास कविता है जो मैं अभी मैंने रिसेंटली एक जयपुरिया स्कूल है लखनऊ में, वहाँ पे बच्चों के सामने भी पढ़ी मैंने, क्योंकि ये लगभग मेरी उस समय की कविता है। अभी मैं कविताएं लिखता हूँ पर मैं वो थोड़ी मुझे लगता है कि सिंप्लीफाइड
1: जी.
0: जीवन क्वेश्चन अपने आप से हरदम होता है ना कि ये जीवन है किस लिए,
1: जी.
0: क्यों जी रहे हैं जीवन, अल्टीमेटली क्यों जी रहे हैं, उसको क्वेश्चन करते हुए मैंने कुछ लाइनें लिखी थी कि मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, बस मैं एक पात हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, बस मैं एक पात हूँ, हवा जो तेज चल गई तो बीती हुई बात हूँ।
1: क्या बात है.
0: इतना ट्रिवियल है ह्यूमन लाइफ। मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, बस मैं एक पात हूँ, हवा जो तेज चल गई तो बीती हुई बात हूँ, जमी से हूँ उत्पन्न मैं, जमी में जाके घुल गया,
1: क्या बात है, वाह.
0: जमी से हूँ उत्पन्न मैं, जमी में जाके घुल गया, देख तेरा लाल माँ तुझे सांझ ढले मिल गया।
1: वाह वाह वाह.
0: ईश्वर माँ है और डाल से बिछड़ने का शिकवा मुझको कुछ नहीं, डाल से बिछड़ने का शिकवा मुझको कुछ नहीं, हूं धन्य मेरी खाद से जो एक फूल खिल गया।
1: क्या बात है, वाह. तो आपके व्यक्तित्व के इतने सारे पहलू उजागर हो रहे हैं, और तो अब यहाँ
0: जी
1: पर एक गाना सुनवाते हैं, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं?
0: गाना आप सुनाइए, रहमान साहब का वंदे मातरम, दैट्स माय वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक्स
1: सुनते हैं यही
0: जी।
1: गाना.

0: अब गाने के बाद विशाल जी, चाय वाली एक कविता
1: जी
0: बड़ी मशहूर हुई है आपकी, तो याद कीजिए और सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी तो मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं क्या जो सिनेमा में मैंने सीखा है, स्टोरी टेलिंग में जो सीखा है, क्या मैं किसी उसको किसी कविता पे अप्लाई कर सकता हूँ।
0: जी
1: तो चाय को एक सेंट्रल कैरेक्टर बना के, यानी चाय को एक हीरो बना के मैंने एक कविता लिखी।
0: जी
1: इसके अंदर वो सब कुछ है, इसके अंदर विलन भी है, इसके अंदर महिमा मंडन भी है, इलेवेशन सीन भी है, जो होते हैं ना फिल्मों के जो
0: जी
1: तीन
0: जी
1: थ्री
0: बिल्कुल
1: स्ट्रक्चर होते हैं,
0: बिल्कुल।
1: तीन स्ट्रक्चर भी
0: हाँ
1: हैं,
0: हाँ
1: फिर रेजोल्यूशन भी है।
0: तो क्या तरन्नुम में भी गाते
1: नहीं
0: हैं?
1: ऐसे नहीं, ऐसे आप
0: हाँ
1: इसमें
0: ठीक है ठीक है, सुनाइए।
1: चाय को मना कौन करता है भाई,
0: चाय को मना
1: चाय
0: कौन
1: को
0: करता है भाई?
1: मना कौन करता है भाई, कत्थई सी रसीली सी नशीली सी, अदरक सी तीखी गुड़ सी मीठी, इलायची सी मोहक रोचक विमोचक, करंट मारती जगाती हंसाती मूड बनाती, मिलने के बहाने सुझाती
0: क्या बात है, वाह
1: मुस्कुराहटें लाती, कड़क रसीली नशीली चाय
0: क्या बात है,
1: होश खोल देती है, इसे मना कौन करता है भाई।
0: वाह वाह, बहुत बढ़िया।
1: कत्थई सी रसीली सी नशीली सी, अदरक सी तीखी गुड़ सी मीठी, इलायची सी मोहक रोचक विमोचक, करंट मारती जगाती हंसाती मूड बनाती, बातें कराती मिलने के बहाने सुझाती मुस्कुराहटें लाती,
0: क्या
1: कड़क
0: बात है,
1: रसीली नशीली चाय होश खोल देती है, इसे मना कौन करता है भाई। लेखक रसपान कर उपन्यास लिख दें, कवि मीठी जुबान लिख दें, फिल्मकार कहानी कर दें, पात्र सब मुंह जबानी कह दें,
0: क्या बात है,
1: पात्र सब मुंह
0: मुंह
1: जबानी
0: जुबानी
1: के
0: कहते हैं।
1: जुबानी कह दें, टपरी पे की कटिंग देती है गुहार, सुगंध छोड़ती है ले आती है बाहर, और कड़वी है कॉफी, यहां से विलेन की एंट्री,
0: कड़वी है कॉफी
1: और कड़वी है कॉफी और चाय की है अपनी ही मिठास,
0: क्या बात है,
1: और कॉफी बोले अंग्रेजी पर अपनी चाय करती है हिंदी में बात,
0: वाह वाह वाह,
1: थकान मिटा देती है, इसे मना कौन करता है भाई। अब ये हो गया, विलन खड़ा कर दिया, अब रेजोल्यूशन है भाई, कॉफी से कोई तकलीफ नहीं है
0: क्या बात है,
1: भाई,
0: वाह
1: कॉफी से कोई तकलीफ नहीं है, उसकी अपनी शान होगी, कोई ऊंची दुकान होगी, होंगे एयर कंडीशन में मोका अमेरिकाने की चुस्की के अपने स्वाद, तुम्हारी कॉफी रहे आबाद
0: क्या बात है, वाह
1: पर अपनी चाय जिंदाबाद जिंदाबाद।
0: वाह वाह,
1: और फिर कांच के कप में मचलती चली आए और कैसी चमक छोड़ती है, इसे मना कौन करता है भाई,
0: वाह
1: से मना कौन करता है भाई, कड़क रसीली नशीली चाय, कड़क रसीली नशीली चाय, कड़क
0: क्या बात है,
1: रसीली।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इतने सारे हुनर आपके सामने आ रहे हैं आज की इस बातचीत
1: जी
0: में। विशाल जी, एक बार फिर आपकी फिल्म की ओर चलते हैं, हनुमान
1: जी
0: अंश
1: जी
0: की ओर।
1: जी
0: इसमें जो कलाकार हैं लक्ष्मी नारायण शर्मा,
1: जी
0: तो ये पात्र कैसे मिले, मतलब कैसे आपने चयन किया कलाकारों का? एक बच्चा है, फिर बड़ा बड़े कलाकार का, सत्य
1: स्वप्न
0: शोभिना
1: सत्य।
0: शोभिना सत्य, कहाँ से मिलेगी?
1: तो मैं एक ही करके बताता हूँ, तो सबसे पहले जिनको आप कलाकार को देख रहे हैं, जिनका नाम है चंदन के आनंद, जिन्होंने डॉक्टर भोसले का रोल प्ले किया है,
0: जी,
1: वो मेरे मित्र थे, एक ही बिल्डिंग में हम रहते थे, पर बहुत समय के बाद में मुझे एक कैरेक्टर चाहिए था, नॉट भोसलेस, मुझे चाहिए था नासिर अली के रोल के लिए, तो मैंने उनको नासिर अली के रोल के लिए चयनित किया था। एक राजीव मिश्रा जी हैं, उनको मैंने सुखी राम के लिए चूज किया था, और हुआ सेट पे ऐसा कि चूंकि मुझे डॉक्टर भोसले जिनको मैं कास्ट करना चाह रहा था, कोई बड़े एक्टर थे,
0: जी
1: वो जब उनका नहीं ही हो पाया आखिरी तक, तो मैंने फिर इनको नासिर अली की जगह डॉक्टर भोसले प्रपोज किया, और जिन जो सुखी राम प्ले कर रहे थे उनको नासिर अली प्रपोज किया, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हो जाएगा, और वो ऐसे फिट हुए दोनों के दोनों, आई हैड एन आइडिया कि ये
0: जी
1: होगा,
0: जी
1: और मेरे दिमाग में था कि अगर ये नहीं होगा तो मैं ये करूंगा, तो चयन तो किसी और कैरेक्टर के लिए, पांच कैरेक्टर्स उस दो सीन के अंदर थे जिनको अपग्रेड किया मैंने, तो जो नीचे वाले रोल पे था ऊपर गया, उसके ऊपर वाले ऊपर पे गया, ऐसे ऐसे करके
0: जी
1: सब
0: जी
1: सबका ऐसा हो
0: जी
1: गया।
0: जी
1: देन जो बच्चा है,

0: विहान शेडगे, जिसने लक्ष्मी नारायण जी का रोल प्ले किया है, बचपन का लक्ष्मी नारायण का रोल प्ले किया है, उसके साथ मैंने एक ऐड किया था पिछले साल, उसके पहले साल, और वो और जो पार्वती जिन्होंने प्ले किया है नेहा परांजपे, उन दोनों दोनों मराठी हैं, और वो मैंने हाँ
1: नेहा परांजपे विविध भारती में कैजुअल अनाउंसर थी,
0: रही हैं। अच्छा, क्या बात, क्या बात है,
1: अभी भी कैजुअल
0: आकाशवाणी करती हैं।
1: जी जी।
0: तो नेहा और इन दोनों ने, मैंने एक मराठी एड किया था और वो इतना पॉपुलर हुआ एड, वो मैं मराठी मैं बोल नहीं सकता, समझता हूँ, मैंने वो महाराष्ट्रीय मराठी एड था और वो इतना पॉपुलर हुआ, ये दोनों ने इतना अच्छा उसमें एक्टिंग की थी और इतने सिंगल टेक एक्टर्स थे लोग, दोनों के दोनों, एक पुणे से आया था और एक यहाँ से आया था, बट इट्स सच अ ग्रेट कॉम्बिनेशन दैट आई ऑलवेज थॉट कि मैं इनको किसी दिन कास्ट करूंगा। तो ये दो कैरेक्टर वहां से आए। फिर जिन्होंने राम बेटी श्रीमती राम बेटी शर्मा जी का, मतलब महाराज जी की पत्नी का रोल प्ले किया है, वो उनको मैंने चयनित किया, उनके ऑडिशंस में वो चयनित हुई। जो चोर का जिसने रोल किया है अभिषेक जो है ना, वो चित्रकूट से ही कास्ट किया उसको मैंने, उसने पहली बार कैमरा फेस किया है। ज्यादातर जो कोतवाली वाले सीन के सारे एक्टर्स जो है ना, वो वहीं से लोकली चयनित किए गए हैं। जो ट्रेन सिक्वेंस में जो इंग्लिश एक्टर्स हैं वो सारे रशियंस हैं, और उसमें तीन जो अंग्रेज बैठे हैं वो तीनों के तीनों एक एल्बिनो हैं, और वहीं के लोकल हलवाई वलवाई पकड़ के लेके आके हमने उनको उनसे एक्टिंग कराई है, जो पता नहीं चलता है आपको। तो बहुत कास्टिंग के लेवल बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। शोभना सत्य जो है ना, वो मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और मेरे लीड कास्ट की तबीयत खराब हो जाती है, और वो नीम करोली बाबा जैसे महाराज जी से दिखता था वो। मैं जब वो पहले दिन मेरे ऑफिस आया था, तो मैं एग्जैक्टली सीधे इमीडिएटली मैंने बोला, अरे तो महाराज जी हैं, और मैं उस पर गुस्सा था कि वो तीन दिन बाद लेट आया था वो। सो आई वॉज एंग्री एट हिम, यार तुम असिस्टेंट डायरेक्टर हो, तुम तीन दिन लेट आ रहे हो। तो मैं गया लेकिन भूल गया, मैं तो बोला रही महाराज जी, बट मेरे लीड एक्टर की तबीयत खराब हो जाती है उन सेट, तो रिप्लेसमेंट के तौर पे मैं इसको टेस्ट करता हूँ मंदाकिनी रिवर पे, तुलसी घाट पे, चित्रकूट के तुलसी घाट पे, जहाँ पे तुलसी जी ने बहुत बहुत सारी चीजें लिखी भी हैं, उसी घाट पे मैं उसका 5 घंटे तक टेस्ट करता हूँ, और फिर वो सुर पकड़ लेता है। जब वो सुर पकड़ लेता है, तो मेरी एक आदत है, आदत नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं एक्टर्स को बहुत ओवर गाइड नहीं करता हूँ, मैं उनको ओवर इन्फॉर्म भी नहीं करता, मैं सिर्फ उनके उनके कैरेक्टर के बारे में बात करता हूँ।
1: अच्छा।
0: मेरी टेक्निक ही है कि मैं सारे एक्टर्स को, चाहे नया हो पुराना हो, उसको उसके कैरेक्टर के बारे में कंसिस्टेंटली बताता रहता हूँ। ह्यूमन माइंड इतना रिसेप्टिव होता है और इतना समझदार है कि जैसे ही वो अपने कैरेक्टर को समझ पाएगा, वो बिहेव करने लगेगा वैसा।
1: बिल्कुल।
0: हम अपने बच्चे के सामने पिता की तरह बिहेव करते हैं, वही हम पत्नी आती है तो मैं दूसरी तरह बिहेव करता हूँ, और मैं माता आती है तो मैं दूसरी तरह बिहेव करता हूँ, दोस्त आता है तो अरे यार करके बात शुरू कर देता हूँ। हम अपने जीवन में जैसे ही हम अपने रोल को समझ पाते हैं, हम इमीडिएटली वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इतने सिंपल प्रोसेस है, मैं किसी भी, जितने भी आपने एक्टर्स देख रहे हैं, उसमें कुछ लोग बहुत तगड़े एक्टर्स हैं, कुछ लोग बहुत वीक एक्टर्स भी हैं, पर उनका एक ही मेरा तरीका है, मैं सब किसी को कैमरे के सामने डांटता नहीं हूं। अगर मुझे किसी एक्टर से बात करनी है, मैं उसको साइड में ले जाऊंगा और फिर से वही बात समझाऊंगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था पहले से। तो इंटरेक्शन विद एक्टर्स, तो यही शोभना के साथ में भी हुआ कि मैंने उसको ओवर इन्फॉर्म नहीं किया। वंस ही कॉट द कैरेक्टर, जब उसने कैरेक्टर पकड़ लिया, डायलॉग्स उसको याद है, हिंदी उसकी अच्छी है, तो मैं क्यों उसको ओवर इंस्ट्रक्ट करूं। और वो फिर बहुत स्मूथ प्रोसेस हो गई कि हमने 22 दिन में रिकॉर्ड टाइम के अंदर हमने 2.5 घंटे की फिल्म शूट करी है।
1: हिट हुई। तो अब यहाँ एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाए।
0: तो मैं चाहूंगा कि आप फिर से हनुमान अंश फिल्म का ही एक गाना प्ले करें, जिसका टाइटल है सासा हाले हसा चाले।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: विशाल जी, संघर्ष के दिनों में आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको कैसे मिलती है? जब आपका संघर्ष चल रहा था, उस समय कौन सी प्रेरणा आपको आगे बढ़ा रही थी?
1: आई थिंक वो एक आपकी जो क्या होता है कि कभी भी अपने जीवन को यदि आप किसी बहुत बड़े उद्देश्य के साथ जोड़ लें तो फिर वो सब चलता रहता है। फिल्म मेकिंग मेरे लिए पैसे कमाने का या नाम कमाने का जरिया नहीं है, मेरे लिए इम्पैक्ट सिनेमा, समाज पे इम्पैक्ट होना, समाज पे क्या असर डालेगा, आप कैसे, चूंकि इंफॉर्मेशन की दुनिया है, इंफॉर्मेशन का एज है, इस एज में इंफॉर्मेशन ही सबको ड्राइव कर रही है। हम ये पानी के बॉटल से पानी पीना चाहिए हमको, ये बेसिस इन्फॉर्मेशन है और यही ड्राइव कर रहा है, तो गलत है सही है वो एक वो बात की बात है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन के दुनिया में आप इन्फॉर्मेशन को कैसे पॉकेट करो और समाज में एक एक एक नई राह पे उनको एक नया नया इंटरेस्टिंग कोई पर्सपेक्टिव दो, ये ड्राइव करता है मुझे, तो वो इसलिए मुझे कभी कभी हुआ नहीं। और मैं बहुत ही, रघु जी जानते हैं बात, कि मैं बहुत मॉडेस्ट लाइफ जीता हूँ, कोई किसी तरह का व्यसन नहीं है और पार्टियां वार्टियां नहीं करता हूँ किसी तरह, कोई खर्चा अदरवाइज है नहीं, जो गाड़ी में पेट्रोल पड़ता है वो, खाने पीना और जो किराए हैं यही मेरे खर्चे हैं, इसके ऊपर किताबें खरीदना और फिल्में देखना ये दूसरे खर्चे हैं जो एक्चुअली जिसे बोलते हैं कि जो लग्जरी है, या कभी टेंटिंग वेंटिंग करने के लिए उस तरह, उसमें बहुत मुझे
0: जी
1: मेरा
0: जी
1: मन करता है कि मैं बाहर जाके मतलब टेंटिंग करूँ और एकांत में जाके, तो ये मेरे शौक हैं, जिस वजह से मैंने काफ़ी अपने जीवन को बहुत ही मॉडरेट लाइफ में, मिनिमल और मॉडरेट लाइफ की तरह से जीता हूँ, तो बहुत आवश्यकताएं जब नहीं होती हैं तो आप किसी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और आपका जीवन चलता रहता है। जीवन जब चलता नहीं है, जब उसमें कांस्टेंट स्ट्रगल होती रहती है और आप किल्लत में हैं, इसमें हैं, उसमें, फिर आप उल्टी सीधी संगत में जाते हैं, फिर आप नए नए रास्ते निकालते हैं जो कि जो सही रास्ते नहीं हैं, तो इनकी वजह से मुझे खास कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं और मैं बहुत वो जो मेरे अंदर है वो बहुत वोकल हूँ उसको लेके मैं, और मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ, तो मुझे इस परिवेश में रहते हुए भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अनसक्सेसफुल हूं या मुझे सक्सेस पानी है। फिल्म बनानी है ये एक डेफिनेटली एक बात थी जो कि हरदम कचोटती थी कि यार सब कुछ कर लिया है, फिल्म ही बन रही है अपनी।
0: जी विशाल जी, रघु का जिक्र आपने किया, रघुविंदर सिंह,
1: जी
0: और फिल्म में इनका नाम भी बाकायदा हम देखते हैं,
1: जी
0: तो इनके बारे में बताइए, इनकी फिल्म में क्या भूमिका है और क्या योगदान रहा है आपकी इस फिल्म मेकिंग में?
1: मुझे लगता है कि जीवन में मतलब काफ़ी मेरे मित्रों के नाम फिल्में हैं और जिसमें से एक फिल्म इंडस्ट्री के एक जो मेरे सबसे क्लोजेस्ट सबसे ओल्डेस्ट फ्रेंड्स में से, मतलब मैं कहूँगा रघु ही एक अकेले फ्रेंड है जो मेरे घर में मतलब घर की तरह से ही रहे हैं, और मतलब ऐसा नहीं कि इनके पास घर नहीं था, ये मेरे घर पे आके टिका करते थे ना, अपना
0: बिल्कुल
1: जॉब करके आ गए तो अपना जागरण में काम करते थे, फिर ये फिल्म फेयर चले गए, तो इनके साथ में एक जर्नी कंसिस्टेंटली जो ना हमारे दोनों के बीच में एक एक वो भी है कि हम एक दूसरे से सलाह भी बहुत लेते हैं, तो मेरे सलाहकार भी हैं बहुत समय से और मैं भी इनका सलाहकार हूँ, ऐसा नहीं कि मैं
0: जी
1: ये सिर्फ सलाह लेते हैं, फिर मैं
0: बिल्कुल

0: डॉक्टर हूँ इनका,
1: जी
0: तो जिनकी तबीयत जब जब खराब होती थी तो जो होता था तो मैं इसका इलाज भी करता, तो मेरे घर पे आके ही फिर मेरा वो इसको हॉस्पिटल बना के उसमें इलाज भी कराते थे।
1: जी
0: लेकिन हमने साथ में काम, शायद मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ काम एज सच किया, अब हम साथ में काम करेंगे भविष्य
1: जी
0: में। लेकिन रघु की जर्नी, रघु का जो जो उसकी बेस्ट उसकी क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं, वो बहुत सारा बहुत सीखता हूँ उससे कि कैसे हाउ टू मेंटेन रिलेशंस, हाउ टू पूरी फिल्म जो इंडस्ट्री है वो पीपल मैनेजमेंट की इंडस्ट्री है। इफ़ यू नो हाउ टू मैनेज, एंड ही नोज इट सो सो वेल, एंड बहुत बैलेंस्ड हैं, बहुत शार्प हैं, बहुत क्लियर थाट प्रोसेस है, क्लैरिटी ऑफ थाट्स है कि ये ऐसा क्यों होगा और ऐसा क्यों नहीं होगा, उसकी क्लैरिटी थॉट है। और हिंदी के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी रहे, तो हमें हिंदी भी बहुत जोड़ती है आपस में।
1: जी
0: मतलब मैं भी अपने आप को हिंदी नाजी मान, नाजी तो नहीं बोलूंगा मैं, मुझे लगता है फ्लैग बेयर हूं मैं, मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही कहना चाहिए इसको। मैं
1: जी
0: बॉलीवुड नहीं कहना पसंद करता हूँ। मेरे ट्विटर वगैरह जहां भी जाएंगे आपको लिखे दिखा मिलेगा फ्रॉम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, नॉट बॉलीवुड। तो वो हमारा
1: वो इलाहाबाद के, आप लखनऊ के,
0: जी
1: ये भी एक रिश्ता है तो,
0: मिले
1: और
0: तो ही
1: उसी,
0: मुंबई में थे, मेरे पेशेंट
1: हाँ
0: थे जब मैं क्लिनिक चलाता
1: अच्छा
0: था, तो ये एक दिन एक मित्र
1: जी,
0: मनीष
1: अभी तो आपके
0: वो
1: बहुत सारे पेशेंट हो गए फिल्म के माध्यम से, जो मुरीद हो गए हैं कि आपसे मिलने के लिए इच्छुक हैं, एक लंबी तादाद। अमूमन लोग एक्टर एक्ट्रेसेस के फैन होते हैं, ये हम पहली बार देख रहे हैं कि एक डायरेक्टर और राइटर के इतने बड़े फैन फॉलोअर्स हो रहे हैं, तो ये आपके लिए शुभकामनाएं और बधाई
0: धन्यवाद
1: के पात्र हैं, आप बहुत
0: धन्यवाद,
1: सारी
0: बहुत बहुत
1: बधाइयां।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: यहाँ हमें, हमारे श्रोताओं को बताइए कि मुंबई में रहते हुए आप लखनऊ रहे और बुंदेलखंड का जीवन जिया है, तो यहाँ उन शहरों को क्या चीज मिस करते हैं, कौन सी बात आप मिस करते हैं?
0: एक तो वो शांति और जो बेफिक्री होती है ना, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा वहां जाते से ही आपको एक एक शांत वो महसूस होता है, जैसे कि जीवन चल रहा है
1: जी
0: उसी पेस पे चल रहा है प्रॉब्ली, जैसे मेरा अंतरंग, मेरा मन चल रहा है, मेरा शरीर चल रहा है। यहाँ पे शरीर और वो सब पीछे रहता है और आप हरदम कॉन्स्टेंटली उसको कोप अप करने के लिए कॉफियाँ चाय दुनिया भर के का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ताकि आप जो है ना उसके साथ कोप अप कर पाओ। लेकिन मुंबई जो है मुझे बहुत सुंदर शहर इसलिए लगता है क्योंकि एक तो यहाँ लोगों के बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं और आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता प्रॉब्लम, तो एक बहुत सिक्योर्ड शहर लगता है,
1: जी बिल्कुल, बहुत
0: ऐसा
1: अनुशासित,
0: अनुशासित है,
1: डिसिप्लिन।
0: लोगों से आपको भय नहीं होता, लोगों ऐसा लगता नहीं कि आपको ये व्यक्ति कुछ बात मांगने पूछने जाएंगे तो वो आदमी मना कर देगा, बहुत सौहार्द रहता है, लोग बहुत हेल्पिंग है। और जिस तरह से महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित शहर है, जिस तरह की भाषा का लोग प्रयोग करते हैं, ऑटो वाला कभी आपको मीटर उल्टा नहीं मारता है, ऐसी हजारों खूबियां हैं शहर के अंदर
1: जी
0: जो वहां पे आपको टेंशन होती है, वहां पे उलझन होती है।
1: जी
0: जिस तरह से लोग जो है ना हर चीज को मतलब ग्रैब करने के लिए दे कॉम्पीट एंड बहुत ज्यादा, तो
1: जी
0: मुंबई में उतना वो मुझे लगता है इस मामले में बहुत रिलैक्स है। लेकिन अदरवाइज अगर आप कहोगे कि सुबह सुबह कहाँ की अच्छी होती है और शाम कहाँ की अच्छी होती है, तो मैं लखनऊ से ज्यादा अच्छी कहीं नहीं होती है।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: बनारस की सुबह और
0: लखनऊ की शाम, अवध की शाम।
1: अवध की शाम।
0: जी
1: जी विशाल जी, एक आखिरी बात जो पहले हमें जाननी चाहिए थी, अब
0: जी
1: मेरे जहन में भी है और वो मैं भी बहुत पसंद करती हूँ, उत्तराखंड की पहाड़ियाँ, कैची धाम जहाँ पर आप रहे हैं, कैची धाम की पहाड़ियाँ तो किस तरह से आपको मोहित करती रही, और फिल्मांकन भी उन्हीं इलाकों में किया है, तो कुछ शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए हमारे श्रोताओं को बहुत संक्षेप में।
0: तो आप चूंकि आप देख के आपको लग रहा है कि वो उत्तराखंड की पहाड़ियां हैं, वो सब चित्रकूट है,
1: ओहो,
0: और
1: चित्रकूट,
0: चित्रकूट है,
1: ओहो,
0: तो जो भी आप उसमें बर्फ की पहाड़ियां देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो सब हमने वीएफएक्स पे क्रिएट किया है,
1: चित्रकूट यानी उत्तर प्रदेश
0: उत्तर
1: चित्रकूट,
0: प्रदेश का चित्रकूट जो है ना
1: वाह क्या बात है, और सब लोग ये समझ रहे हैं कि वो उत्तराखंड है और कैची धाम
0: कैची
1: है,
0: धाम
1: क्योंकि
0: है,
1: आपने कई बार
0: धाम
1: अपनी
0: भी दिखाया
1: छवियों
0: है, जो भी
1: जिक्र
0: आपने
1: भी
0: दिखाया है वो अग्निमर्शन
1: किया
0: कुंड है जहां पे यक्ष का और युधिष्ठिर का संवाद हुआ था, वो धारकुंडी नाम का एक आश्रम है जो चित्रकूट के डीप इन जंगल्स है, जहां पे तेंदुए और
1: जी जी
0: दुनिया भर
1: बिल्कुल
0: के वो सब हमारे यूनिट ने भी देख लिए, तो मतलब वो ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं वहां पे, और अजगर वजगर सब कुछ था वहां पे,
1: घने जंगल हैं
0: घने
1: उस
0: जंगल हैं। तो हमने वहां जाके शूट किया उसको, अग्निमर्शन कुंड में, धारकुंडी आश्रम था वहां पे शूट करना। इसके अलावा चित्रकूट में जितनी भी आप लोकेशन देख रहे हैं, नदियां देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं, सब वो हमने मैच कर दिए। तो फिल्म मेकिंग जो है ना, वो बोलते हैं कि इट्स ऑल अबाउट मैचिंग, इट्स ऑल अबाउट मेक बिलीव, इट्स ऑल अबाउट चीटिंग टू, जिसे बोलते हैं चीट सीन करना। रियल लोकेशन है वो, लेकिन किसी और जगह की है, पर आपको वो ऐसा महसूस कराती है भावनात्मक लेवल पे, आपको ऐसे वहां पहुंच ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो जो भी आप एलिमेंटली जो चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो वहां का,
1: जी
0: वो आप कर लेते हो। इस तरह से हमने किसी तरह से चित्रकूट में ही,
1: जी
0: और चित्रकूट नहीं होता तो शायद ही फिल्म उस बजट में जिसमें उन्होंने बनाई वो बन नहीं पाती।
1: बिल्कुल, अब चलते चलते हमारे जो

0: नए श्रोता है, युवा श्रोता, उन्हें कुछ दो लाइन में संदेश दे सकते हैं तो दीजिए।
1: तो मुझे लगता है कि हम भारतीय जो जो संस्कृति है, जो संत परंपरा है, जिसने धागे की तरह से पूरे पिछले 5-7 हज़ार साल में सारा टेक्स्ट, सारा लिटरेचर और समाज को बांध के रखा है। संत समाज से बाहर निकल जाता है, ना उसका जाति होती है, ना उसका कोई संप्रदाय होता है। संप्रदाय होते हैं पर वो संप्रदाय फिल्म के अंदर आपने उसमें देखा भी, उसी ने
0: बिल्कुल
1: विरक्ति उसको हो जाती है, वो ना नाम से अटैचमेंट रखता है, ना किसी जेंडर से अटैचमेंट रखता है, वो पूरी तरह से ईश्वर का हो जाता है। जब आदमी अपने आप को बिल्कुल बाहर रख के थर्ड पर्सपेक्टिव से, दृष्टा भाव से देखता है, एक संत दृष्टा भाव से ही दुनिया को देखता है, तो सारे जो मैल होते हैं ना, वो सारे मैल आपको दिखने बंद हो जाते हैं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम तीन चीज़ें जो नीम करोली बाबा भी बोलते थे, लव ऑल, सभी को प्रेम करो, फीड ऑल, भूखे व्यक्ति को भोजन जरूर खिलाओ, सबसे पहले खाना पूछो आदमी को, और तीसरा राम राम लिखो, ईश्वर को हरदम याद करते रहो। ये तीन चीज़ें वो सिखा के गए। मुझे लगता है कि जो जेंजी है या जो नई जनरेशन है, वो भी ऐसा ही कुछ सोचती है, जस्ट दैट उनको अलाइन करने की आवश्यकता है। वो भी यही बातें कर रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, यही बातें कर रहे हैं, पर उनको पता नहीं कि ये एक्चुअली कोर है। और
0: जी
1: यही तो, इसलिए नीम करोली बाबा की जो स्टोरी है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जेंजी और जेन अल्फा को सबसे ज़्यादा प्रभावित, जो मैं करना चाहता भी था, करेगी।
0: बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। क्या एक दो लाइन गुनगुनाएंगे?
1: जी, अब ना देर लगाओ देर, अब कृपा करो महादेव, अब ना देर लगाओ देर, बस कृपा करो महादेव, ये दुनिया एक छलावा, तू साचा ठौर है बाबा, के आहवा के जावा, के
0: क्या बात।
1: आहवा गमन मिटा दो भोले शंकर, के आहवा गमन मिटा दो भोले शंकर, हर हर महादेव।
0: महादेव
1: इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द रेयरेस्ट सॉन्ग्स जो मुक्ति चाह रहा है, पर वो हंस के मांग रहा है, इतने ज्यादा फन भाव में, इतने अच्छे सुंदर भाव में, हंसते हंसते बोल रहा है कि आवागमन मिटा दो भोले शंकर।
0: जी। विशाल जी, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी सारी बातें, यादें साझा की, बड़ी दिलचस्प लगी हमें, हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छी लगेंगी हमें उम्मीद है। आपका तहे दिल से शुक्रिया पूरे विविध भारती परिवार की ओर से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा भी तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। मुझे लग रहा है कि मैं ट्रांसपोर्ट हो गया हूँ, मैं 1960s में कहीं बैठा हूँ, ऐसा
0: क्या
1: फीलिंग आ
0: बात
1: रही
0: है।
1: है। नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: धन्यवाद।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हनुमान अंश फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, तकनीकी सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।

0: प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
0: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
0: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
0: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
3: हाँ जी।
2: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
3: हाँ जी, हाँ।
2: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं नहीं, अभी नहीं।
2: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा,
2: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
5: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
0: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
2: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा साया साथ होगा।
6: आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।

सभी विविध भारती सुनने वाले श्रोताओं को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। रंग तरंग की पहली प्रस्तुति। जुबीन नौटियाल की आवाज में मनोज मुंतशिर के शब्द हैं, पायल देव का संगीत। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं इस एल्बम से।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। इस वक्त कार्यक्रम रंग तरंग, शाहिद मालिया और तृप्ति शाक्य की आवाजों में अगला गीत सुनिए, रचना और संगीत के आर वाही का है।

0: कुछ इंतजार है इस एल्बम से ये गजल आपने सुनी भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में। गुलशन मदान का लिखी ये गजल थी और भूपिंदर सिंह ने संगीत दिया था।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें।

0: इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

कुमार विष्णु और स्वरांशी की आवाजों में एल्बम सजा मेरे घर दरबार माँ से आपने सुना ये गीत। रवि चोपड़ा की रचना थी, मीट ब्रदर्स का संगीत। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं भूपिंदर सिंह की आवाज में। ऐश कमल की रचना है, भूपिंदर सिंह का ही संगीत।

ऐश कमल की रचना थी, गायकी और धुन भूपिंदर सिंह की। फाल्गुनी पाठक की आवाज में सुनिए अगला गीत, महबूब की रचना, ललित की बनाई तर्ज़।

0: गदर एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाँ
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम रंग तरंग। सुनिए अगली गजल भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में। इब्राहिम अश्क का कलाम है और तर्ज बनाई है भूपिंदर सिंह ने। एल्बम का नाम मोहब्बत।

ये गजल अभी आपने सुनी विनोद सहगल और सीमा शर्मा की आवाजों में, सईद राही की का लिखा ये गीत था और जगजीत सिंह की तर्ज।

गरबा सॉन्ग एल्बम से ये गीत हमने अभी आपको सुनवाया, शिवांग माथुर और श्रद्धा श्री की आवाजें थी। रुतिका ब्रह्म भट्ट का लिखा ये गीत था, शिवांग माथुर का संगीत। तेरी में प्रेम दीवानी इस एल्बम से फाल्गुनी पाठक की आवाज में, ललित का संगीत है, नवाब आरजू का लिखा गीत।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने ये गजल सुनी, तर्ज बनाई थी गुलाम अली ने। संकल्प जायसवाल की आवाज में, संकल्प जायसवाल की आवाज में हर दुआ एल्बम से सॉन्ग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके मित्र अजीत का नमस्कार जोहार। तो आइए सुनते हैं सुविचार हमेशा की तरह। तो हमें सुविचार भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस उम्दा संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला संदेश। लिखते हैं उद्घोषक विमलेश जी और अजीत जी, नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू और सतीबाई साहू हैं। आपको बताना चाहते हैं कि उमंग एनसीईआरटी का कार्यक्रम बहुत हमें पसंद है। हम सादर आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके लिए प्रकट करते हैं। साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल जी का। लिखते हैं, विमलेश जी, अजीत जी, सादर नमस्कार। 14 सितंबर दिन सोमवार का कार्यक्रम बहुत ही खास और शानदार रहा। टिम टिम तारा बोलो टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा। इस गीत ने मन मोह लिया। पूरा कार्यक्रम बेहद रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक लगा। बच्चों के लिए ऐसी सुंदर और सीख देने वाली प्रस्तुति के लिए आप दोनों को और साथ ही साथ सीआईटी एनसीईआरटी की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। धमथा ग्राम सुखनी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी का। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। और एक संदेश और हमें मिला है, लिखते हैं रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू जी का। एक संदेश और सुनते हैं जिसे लिखा है हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी ने। और आपने लिखा है करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। लिखते हैं, विमलेश जी एंड अजीत जी, गुड मॉर्निंग। इट वॉज ए ग्रेट प्लेजर टू लिसन टू द पोएम द क्रो इन म्यूजिकल मैनर टूडे। What a coincidence it is that I read this poem in my childhood in the textbook and got it listened to it in a musical form. I liked this poem and song very much. Thank you very much. आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो आइए श्रोताओं, अब शुरू करते हैं एक और रोचक आविष्कार की कहानी। श्रोताओं, सच्चाई तो ये है कि हम इंसान भी बड़े अजीब हैं, है ना? जब कोई तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम हो जाती है ना, तो हम भूल ही जाते हैं कि उसने दुनिया को कैसे बदल दिया। अब पेन ड्राइव को ही लीजिए ना, छोटी सी उंगली भर का टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर हमारी पूरी पढ़ाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों तस्वीरें और न जाने कितने वर्षों का डेटा बंद है।

लेकिन श्रोताओ, जिसे आज हम इतनी आसानी से जेब में डालकर घूमते हैं ना, 25-30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी चीज अलमारी भर की भारी भरकम फाइलों को चुटकी में निगल लेगी। आपको याद होगा 90 के दशक का वो दौर, जब कंप्यूटर क्लास या दफ्तरों में हम वो चौकोर पतली काली फ्लॉपी डिस्क लेकर घूमते थे, है ना? जरा सी धूल लगी या बैग में मुड़ी तो सारा काम खत्म। और फ्लॉपी की कुल क्षमता कितनी थी आपको पता है? महज 1.44 मेगाबाइट, यानी MB। यानी आज के दौर में एक MP3 गाने का आधा हिस्सा भी उसमें ठीक से नहीं आ सकता। आज हमारे पास चलता फिरता डेटा बैंक है, यानी पेन ड्राइव। पता है श्रोताओ, इसका आविष्कार हुआ था एक आविष्कारक के भयंकर गुस्से और शर्मिंदगी के कारण। किस्सा है साल 1998 का। इसराइल के एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, नाम था डोब मोरान। उनकी अपनी एक छोटी सी कंपनी थी। वे कंपनी को बड़ा करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कुछ बड़ी धनराशि की जरूरत थी। मोरान अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका पहुंचे। वहां एक नामी निवेशक के सामने उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देना था। तो हुआ ये कि मोरान बड़े आत्मविश्वास के साथ मीटिंग रूम में पहुंचे, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर उनका लैपटॉप चालू ही नहीं हुआ। मोरान घबरा गए। घबरा कर उन्होंने वहां मौजूद दूसरे कंप्यूटर में अपनी फ्लॉपी डिस्क लगाई और फिर वही हुआ जिसका डर हर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को होता है। जानना चाहते हैं क्या हुआ? हुआ ये कि स्क्रीन पर लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर आ गया, डिस्क करप्टेड। श्रोताओं, वो बड़ा निवेशक घड़ी देखता रहा, मोरान पसीने पसीने होते रहे। पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया कि वो फ्लॉपी डिस्क खुल जाए, लेकिन डेटा नहीं खुला। अंत में निवेशक आई एम सॉरी बोलकर चल दिया। मीटिंग रद्द हो गई और मोरान को उस कमरे से सिर झुकाकर बेहद शर्मिंदा होकर निकलना पड़ा। तो साथियों, उस शाम होटल लौटते हुए डॉन मोरान गुस्से और लाचारी से भरे हुए थे। उन्होंने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से एक सवाल पूछा, क्या इंसान ऐसा कोई छोटा मजबूत और भरोसेमंद साधन नहीं बना सकता जो चाबी के गुच्छे की तरह जेब में आ जाए और जिसका डेटा कभी खराब ना हो? बस उनके इसी विचार ने पेन ड्राइव की नींव रख दी। यानी असफलता ही नए विचार की चिंगारी बनी। लेकिन यह हुआ कैसे? श्रोताओं, इसके लिए आपको थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी तकनीकी जानकारी देते हैं। आपको पता होना चाहिए, उस दौर में कंप्यूटर की दुनिया में दो नई चीजें दस्तक दे रही थीं। पहली थी USB पोर्ट, जिसका इस्तेमाल उस समय लोग सिर्फ माउस या कीबोर्ड जोड़ने के लिए करते थे, और दूसरी थी फ्लैश मेमोरी, यानी ऐसी चिप जिसके कारण बिजली चले जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता था। तो डॉब मोरान ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए। मोरान और उनकी टीम ने फ्लैश चिप और USB कनेक्टर को अंगूठे जितने छोटे खोल में फिट कर दिया। ना किसी तार की जरूरत, ना किसी बैटरी की, और उन्होंने उसे कंप्यूटर पर लगाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, कंप्यूटर का कुछ डेटा वहां ट्रांसफर हो चुका था। उन्होंने उसका नाम रखा डिस्क ऑन की, यानी चाबी के छल्ले में लगने वाली डिस्क। आपको पता है श्रोताओं, उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी? अंदाजा लगाइए। शायद आप सोचते होंगे 1 GB या 2 GB, आपके अलग अलग अनुमान होंगे। लेकिन श्रोताओं, आपको बताना चाहता हूं, उसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी मात्र 8 MB, यानी 8 मेगाबाइट। आज तो 8 MB में हमारे फोन से खींची गई एक अच्छी सी फोटो भी नहीं आती। भले ही ये आज कम लगे, लेकिन श्रोताओं, उस वक्त ये 8 MB पूरे 5 फ्लॉपी डिस्क के बराबर थी। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये फर्श पर गिर भी जाए तो इसका डेटा सुरक्षित रहता था। लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है, अमेरिका और पश्चिमी देशों में इसे USB फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव कहा जाता है, तो ये भला पेन ड्राइव कैसे बन गई? इसका नाम पेन ड्राइव कैसे पड़ा? ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। जब ये तकनीक एशियाई बाजारों में आई तो कई कंपनियों ने इसे पतले मार्कर पेन जैसा आकार दिया, जिसमें पीछे एक क्लिप होती थी, और लोग उसे शर्ट की जेब में पेन की तरह रख लेते थे। बस हमारे लोगों ने देखा और झट से नाम रख दिया पेन ड्राइव। और इस नन्ही सी ड्राइव ने ना जाने कितनी चीजों की छुट्टी कर दी। इसने फ्लॉपी डिस्क को सीधे म्यूजियम पहुंचा दिया। जो लोग बैग में CD और DVD के भारी भारी कैसेट लिए घूमते थे, जिन पर जरा सी खरोंच आते ही गाने अटक जाते थे, पेन ड्राइव ने इन सब का नामो निशान मिटा दिया। और आज तो कमाल हो गया है श्रोताओं, 8 MB से शुरू हुआ पेन ड्राइव का ये सफर आज 1 TB और 2 TB तक पहुंच चुका है। यानी पूरी दुनिया का ज्ञान, फिल्में और किताबें एक छोटी सी उंगली के पोर जितनी जगह पर समा सकती है। तो अब जरा सोचिए श्रोताओं, अगर

0: 1998 की उस शाम डोब मोरान की वो फ्लॉपी डिस्क खराब ना हुई होती तो शायद हम आज भी फ्लॉपी डिस्क और नाजुक सीडी के जंजाल में ही उलझे होते। जी हाँ श्रोताओ, यही तो है विज्ञान की खूबसूरती। जब कोई भी इंसान किसी परेशानी से तंग आकर एक बेहतर विकल्प ढूंढने की ठान लेता है तो शुरू होता है नवाचार और दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएं तो 1998 की उस शाम को कभी ना भूलें जिस दिन फ्लॉपी डिस्क खराब हो गई थी और डॉब मोरान ने इस बात को ठान लिया था कि वो इसका विकल्प ढूंढ कर ही दम लेंगे। तो श्रोताओ, आज के लिए बस इतना ही। तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम उमंग और सीखते रहिए नई नई बातें। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आम की गुठली। कक्षा 3 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पौधरोपण का संदेश दिया गया है तथा ये बताया गया है कि मात्र पौधा रोपना ही पर्याप्त नहीं है, पौधे की समुचित देखभाल भी की जानी चाहिए।
1: एक दिन अम्मा बाजार से बच्चों के लिए आम लाई। 1 किलो में 7 आम आए। आम छोटे छोटे और खूब रसीले थे। अम्मा ने उन आमों को धोकर फ्रिज में रख दिया और बच्चों से कहा,
2: शाम को अब्बा दफ्तर से आएंगे, तब तक फ्रिज में आम भी ठंडे हो जाएंगे। रात के खाने के बाद हम आम खाएंगे।
1: मुन्ने को में चले गए। अब 4 साल का शरारती मुन्ना कमरे में अकेला रह गया। उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई ना था। मुन्ने ने मौका पाकर चुपके से फ्रिज खोलकर एक आम उठा लिया और खूब मजे लेकर चूस चूस कर खाया।
3: इतना मीठा आम है, ये आम खाके तो मजा आ गया।
1: फिर मुन्ने ने हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ली और दूसरे कमरे में जाकर दादा दादी के साथ बात। शाम को अब्बा आए। दादा दादी के साथ बैठकर सबने रात का खाना खाया। खाना खाकर अम्मा ने जब फ्रिज से आम निकाले तो 7 की जगह सिर्फ 6 आम थे। अम्मा ने बच्चों से पूछा,
2: क्या आप में से किसी ने 1 आम खाया है?
1: सीमा और समीर ने इनकार में अपनी गर्दनें हिलाई।
3: नहीं अम्मा, हमने तो फ्रिज खोला ही नहीं।
1: मुन्ने को शर्म आ रही थी, फिर भी जी कड़ा करके उसने कहा,
3: नहीं, मैंने तो आम नहीं खाया।
1: अब्बा बच्चों का इनकार सुनकर मुस्कुराए और कहा,
4: आम तो आप लोगों के लिए ही आए थे, अगर आप में से किसी ने 1 आम खा भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इन आमों की गुठलियाँ बहुत छोटी थीं। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर किसी बच्चे ने आम की गुठली भी निगल ली होगी तो आज रात उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होगा।

0: इतना सुनना था कि मुन्ना झट से बोल पड़ा,
1: नहीं नहीं तो बड़ी थी।
0: ये सुनकर उग हंस मुन्ना शर्म से लाल हो गया। पास ही बैठी दादी जान ने कहा,
2: अरे वाह, मेरे मुन्ने ने सच को कबूल करके मेरा दिल जीत लिया।
3: तो बच्चों, आपने सुनी ये कहानी, अच्छी लगी ना? अच्छा, अब आपके लिए कुछ सवाल हैं। ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनकी गुठली फलों के अंदर होती है, उसकी एक फेहरिस्त बनाइए। ऐसे कौन कौन से फल हैं जो सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं, बीज, पत्ती, फूल और फल, इनके आने की सही तरतीब क्या है? आपने कौन कौन से आम खाए हैं, उनके नाम लिखिए। इन सवालों के जवाब आप अपने वालिदैन, दोस्त और अहबाब से भी चर्चा कर सकते हैं।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम आम की गुठली, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। इस कार्यक्रम में भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान बहादुरी से अंग्रेजी साम्राज्य का सामना करने वाले और अपना प्राण न्योछावर करने वाले वीर किशोर जोरावर सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
5: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
6: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
7: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
8: बिल्कुल ठीक है।
7: आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
9: वीर जोरावर की जय! वीर जोरावर की जय! जय जेरापुर, जय भारत!
10: जय जेरापुर, जय भारत!
6: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
11: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
6: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
11: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
12: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
7: ठीक कहते हैं मंत्री।

0: मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
1: जी।
0: वहां के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
1: जी महाराज। महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
0: बिल्कुल।
1: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
0: जी मंत्री जी।
1: जी महाराज।
2: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
3: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
4: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह
2: आइए हमारे दोस्त। तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
0: निजाम साहब हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
2: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
0: देखिए निजाम साहब।
2: जी फरमाइए।
0: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं।
2: जी।
0: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
2: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं।
0: जी।
2: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
5: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
2: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
6: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
1: ए, सुनो। सारी तैयारियां पूरी है ना?
7: बिल्कुल।
1: देखो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
7: हुजूर आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
5: लेकिन जरा होशियारी से।

0: ये क्या है?
1: You are under arrest.
0: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ। आओ सामने।
1: बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियों,
2: हुजूर,
1: बांधो इस बच्चे को जंजीर।

0: say?
1: Show up, Mujer. Hat put lagao, Mujer. Mujse hat hatao. Maine kaha show up, Mujer. Hato yahan se.
0: Shabash, shabash, Saral Jan. Main khush hua. Tumhe mota inaam dilwaunga.
2: Huzur.
3: Acha. तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: जाओ, ले चलो इसको।
1: चलो मुझे, चलो, छोड़ो मुझे।
4: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
5: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
6: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
3: अप्पा ये नहीं हो सकता।
6: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
3: ये नामुमकिन है।
6: Why?
3: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे।
6: yeah.
3: अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
6: तो नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा
3: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
6: Actually, you are a fool.
4: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
5: काला पानी की सजा?
4: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
5: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
4: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
3: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
5: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
7: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने

0: मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अरशद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आपने सुना एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम मीडियम वेव
3: दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

इस संदेश से पहले आपने गीत सुना आरजू फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल थे, तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म प्रिंस से, लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में। हसरत जयपुरी के ही बोल हैं, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: अनाड़ी फिल्म से मुकेश की आवाज में ये गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
3: दिल तो पागल है,
1: दुश्मन
4: चिट्ठी न कोई संदेह,
1: गदर एक प्रेम कथा,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
1: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
6: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाँव,
1: एक उत्तम जीवन की कहानी।

0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और हम आपको सुनवा रहे हैं शंकर जयकिशन के संगीत पर ये गीत, क्योंकि आज है इस संगीतकार जोड़ी के शंकर का जन्मदिन। शादा की आवाज में सूरज फिल्म का गीत, हसरत जयपुरी के बोल, तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवें।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूँ मैं पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम की इबारत हमने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दी है और आप सभी ने वो पढ़ भी ली है और आपके संदेश भी हमें मिलने लगे हैं। हम आपको इबारत पढ़ के सबसे पहले सुनाएंगे और उसके बाद गीतों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो इबारत है कुछ इस तरह, सुन रही सखी तीनों लोक की रानी के कदमों में सिर झुकाने को जी चाहता है। हाँ तो चल, काजल सजा, मेहंदी लगा के दुल्हनिया बन, डोली में सवार हो चल, और देख जरा ख्याल रखना वहां कोई भवरा बेईमान ना मिल जाए जो कली कली चूमता फिरता है। उसकी उड़ती जुल्फों को देखकर कहीं पागल मन व्याकुल ना हो उठे। अच्छा, कहीं कोई मंत्र फेरा तो उस पिया संग नैना लागे तो नाना दैया रे पराई है ऐसी जुस्तुजू ना कर। अरे सुन ना, हम तो उस गांव पे सदके जहां वो मिल जाए जिसके इश्क की तोहमत उठाने को जी चाहता है। उसके इश्क में दुनिया लुटा के हम भी देखेंगे। क्या बात है, अब देखिए आपको ही बूझना है कि आज के गाने कौन से हैं और बताइए कि इश्क जिसे तोहमत कहती है दुनिया उसे उठाने के लिए क्यों हर किसी का मन व्याकुल होता है। इबारत के साथ हमने ये प्रश्न भी इस इबारत में डाल दिया है। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के बारे में ही आज सबसे पहला गीत हमने लिया है, तो शुरू करते हैं कार्यक्रम का सफर और सुनवाते हैं आपको ये पहला गीत।

सुहाग फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। आनंद पक्षी के बोलते लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। श्रोताओं, नवरात्रि का त्योहार और गरबा डांडिया की थाप ना हो, कदम ना थिरके, ऐसा कैसे हो सकता है। माँ की भक्ति से सराबोर माहौल, ढोल की गूंज और रंग बिरंगे परिधानों में सजे धजे लोग, कितना खूबसूरत होता है ना नवरात्रि का ये उत्सव। तो देखिए, अब आपसे हम जो प्रश्न पूछना चाह रहे थे उससे पहले हमने गीत सुना दिया, लेकिन फिर भी हम जानना जरूर चाहेंगे आपसे कि जब नवरात्रि के आने का इंतजार आप करते थे तो कैसा उत्साह आप में रहा करता था, पारंपरिक परिधान का, गहनों का, या दोस्तों के साथ गरबा खेलने की योजनाओं का। और ये भी बताते चलिए कि गरबा और नवरात्रि से जुड़ी आपकी कोई खूबसूरत याद हो, कोई ऐसा खास किस्सा हो जिसे याद करके बड़ा मजा आता है, चेहरे पर मुस्कान छा जाती है, तो हमारे साथ उसे जरूर साझा कीजिए।

तब तक लेते हैं हम आपके संदेश। जी हाँ, श्रोता कह रहे हैं कि हमारे कि नवरात्रि शुरू होते ही मैंने अपनी सखी यानी कि अपनी धर्मपत्नी से कहा कि तीनों लोगों की रानी माता वैष्णो देवी के कदमों में फिर से सिर झुकाने को जी चाहता है। क्या बात है। तो वो कह रहे हैं कि माता रानी की भवन जम्मू कश्मीर में, जबकि अगस्त 2026 में भी हम दोनों बच्चों के साथ दर्शन करने को गए थे, तो सखी का जवाब था, आप जल्दी ट्रेन की टिकट रिजर्वेशन करवाइए, सभी को छुट्टियों के हिसाब से जाने को मिलेगा। क्या बात है। बहुत सारे श्रोताओं ने हमें नवरात्रि के पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी है। आप सभी को भी हमारी तरफ से और विविध भारती के परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी एक श्रोता कह रही है कि आज तो मधुर गीतों का रेला लगने वाला है, इश्क सृष्टि को संचालित करने का छुपा हुआ जरिया है, इसके तार बस साहित्य कला और समाज से नहीं मनोविज्ञान जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान तक जुड़े रहे, इसीलिए इससे कोई बच नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक श्रोता कह रहे हैं कि समर्पण का आनंद अपने पिया या महबूब के सामने खुद को पूरी तरह लुटा देने, सब कुछ न्योछावर कर देने में जो आत्मिक सुख और सुकून मिलता है वह दुनिया की किसी और चीज में नहीं। दिल का पागलपन, इबारत में जैसा कहा गया है कि पागल मन व्याकुल हो उठे, मोहब्बत में एक ऐसा मीठा दर्द और दीवानगी होती है जहां बदनामी भी एक अनमोल तोहफा लगने लगता है। जी हाँ, एक श्रोता ने कहा है कि आज आपने रंग तरंग प्रोग्राम में बहुत ही मन को सुकून देने वाला माता रानी की भक्ति रचना को सुनाया, गरबा गीत भी सुनाए, ऐसे भक्ति पदों से हम आनंदित होते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम भी आपका धन्यवाद करते हैं कि रंग तरंग कार्यक्रम से अब तक आप हमारे साथ बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। एक श्रोता कह रहे हैं आखिर इश्क तो वही है जिसे दुनिया इल्जाम समझती है और दिल अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। जी हाँ, इश्क कोई साधारण भावना नहीं बल्कि रूह की वह अनकही पुकार है जो तर्कों की सीमाओं को लांघकर सीधे हृदय में उतर जाती है। दुनिया की नजर में इश्क भले ही एक तोहमत हो मगर प्रेम करने वाले के लिए यही उसकी सबसे अनमोल दौलत है। यहाँ हरा कर भी जीतने का सुकून है, बिछड़ कर भी जुड़े रहने का विश्वास और बिना किसी वादे के उम्र भर किसी का होकर रहने का जुनून। बिल्कुल सही। तो श्रोताओं, अभी हमने आपसे पूछा है कि नवरात्रि और गरबा का जो उत्साह है वो आप में किस तरह बना रहता था और आप क्या तैयारियां करते थे, और कोई यादगार किस्सा हमसे आप साझा कीजिए। इस गीत के बाद हम आपके ये संदेश लेने वाले हैं। और देखिए, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार सुनने और देखने का मन करता है। अच्छा, आप बताइए कि ऐसा कौन सा गीत है वो आपके लिए, है ना। और साथ ही जो गीत हम आपके

के सामने पेश करेंगी। उस गीत की अदाकाराओं के नाम हमें आप बताएंगी जो महफिल में अपनी अदाओं और अंदाजों से समा बांध देती है। आवाजों का मुकाबला हो, नोक झोंक हो, अदाओं का जादू हो, तो फिर क्या ही कहने।

कर ले।

मुगले आजम फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शमशाद बेगम साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीत बद किया था नौशाद ने। देखिए हमारे श्रोताओं का जवाब भी आ गया है। हमने पूछा था कि इस गीत में जो अदाकाराएं हैं उनके नाम आपको बताने हैं, तो श्रोताओं के जवाब हमें मिल गए हैं, मधुबाला और निगार सुल्ताना। बिल्कुल सही जवाब आपने दिए हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और हमने इस गीत से पहले जो गीत सुनाया था माँ शेरोवाली का और उससे संबंधित जो भी प्रश्न हमने पूछा उसके जवाब भी आ गए और हम उसी जवाब को अब लेने वाले हैं, आपके उन्हीं संदेशों को पढ़ने वाले हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि गरबा की ऊर्जा और दुर्गा पूजा की भव्यता मिलकर भारत की अनूठी विविधता को दर्शाती है। एक तरफ जहां डांडिया की खनक से पूरा माहौल झूम उठता है, वहीं दूसरी तरफ शंख की गूंज और भोग के खिचड़ी लबड़ा का स्वाद मन को तृप्त कर देता है। सच कहें तो गरबा अपनों के साथ हंसने, सजने संवरने और बिना किसी फिक्र के झूमकर जीवन का जश्न मनाने का एक खूबसूरत बहाना है। क्या बात आपने कही है, जो हमें अपनों के संग खुशियों के अनमोल पल बिताने का मौका देता है। जी बिल्कुल सही। एक श्रोता ने कहा है कि हम हर साल नवरात्रि में खंडेला के पास पहाड़ी पर चामुंडा माता के मंदिर जाते हैं, वो हमारी कुल देवी है। साथ ही एक श्रोता कह रही हैं कि नवरात्रि से तो बचपन से नाता रहा है, अभी भी हम जुड़े हुए हैं और डांडिया का तो क्या ही कहना, फिर सजना सवरना भी तो कितना प्यारा सा है, क्या बात है। एक श्रोता तो हमें बुला रहे हैं कि आइए गुजरात और बहुत मजा आएगा नवरात्रि में झूमने का। जी बिल्कुल हम कोशिश करेंगे आने की, बहुत धन्यवाद। और एक श्रोता कह रही है कि पूजा जी आप और सभी श्रोताओं को वो नमस्कार कर रही हैं। नमस्कार करते हुए उन्होंने कहा है कि इश्क छुपाए नहीं छुपता, इश्क पर किसी का जोर नहीं, लाख तोहमत लगा ले, मन करता है पिया संग नैना लड़े, जी चाहता है इश्क में दुनिया लुटा के देख लेंगे, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। उन्होंने इबारत से ही कुछ पंक्तियां उठाकर अपने संदेश में सजा दी है। और एक श्रोता ने कहा है कि माता रानी का प्यारा गीत जो हमने इस कार्यक्रम के पहले आपको पहला गीत आपको सुनवाया उसी के बारे में ये कह रही हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सुहाग का सदाबहार गरबा सॉन्ग मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले की आवाजों में। और एक श्रोता कहते हैं कि नवरात्रि के आते ही चारों ओर डांडिया और रास गरबा की धूम मच जाती है। गुजरात में माता जी की आराधना करने का ये बहुत ही खूबसूरत माध्यम है, जिसमें गरबा को माता जी का स्वरूप मानकर सभी भक्तजन चनिया चोली और घेड़िया और रंग बिरंगे वस्त्रों में सज धज कर गोल घेरा बनाते हुए गरबा खेलते हैं, बड़ा मस्त समा होता है। साथ ही हमारे एक श्रोता हैं जो हमें धुनों की जानकारी हमें हमेशा कार्यक्रम के दौरान देते रहते हैं। यादों की महफिल की समाप्ति के बाद कौन है जो सपनों में आया झुक गया आसमान, इस तरह से उन्होंने हमें जानकारी दी है। और इस कार्यक्रम के पहले कोई प्यार से देखे जादू भरे कोहिनूर, क्या बात है, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो श्रोताओं अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर और साथ ही हम आपको बताते हैं कि अब जरा माहौल को बदलने की ओर हम बढ़ रहे हैं और इस नोकझोंक से निकलकर चलते हैं शादी के सपने देखने वाली दुल्हनिया के इस गीत की ओर, जहां सपने हैं साज श्रृंगार की बातें हैं सखी से बातें हो रही हैं। इस गीत की फिल्म का नाम हमें आप बताएंगे, ठीक है, लेकिन आप बताइए कि ऐसा कौन सा गीत है, ये भी साथ में बताइए, जो शादी तय होते ही हमारे मन में उभर आता है, सपने दिखाता है। और ये भी बताइए कि जब किसी भी शादी का माहौल हो तो वो कौन सा गीत होता है जो अचानक बजाए जाने पर आप झूमने से खुद को रोक नहीं पाते।

जी हाँ श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था कि ये किस फिल्म का गीत है। वैसे इस गीत को गाया है आशा भोसले ने, गुलजार ने लिखा है, राहुल देव बर्मन ने संगीतबद्ध किया है। अब फिल्म का नाम हमारे श्रोताओं ने हमें जवाब भेजे हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने भेजे हैं, खुशबू है इस फिल्म का नाम। अब शादी के माहौल में धूम ना मचे ऐसा होता है कभी? अब ये कल्पना कीजिए कि शादी या किसी त्योहार का वक्त हो और गली मोहल्ले के गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो एक मेला सा लग जाता है ना? और ऐसे में उनसे जो दिल का नाता होता है वो हो सामने तो क्या होता है बताइए। बिल्कुल सही, शुरू होती है हंसी मजाक ठिठोली और जवाब देने की होड़, है ना, जो कि सुर और गीत के ताने बाने में बुन जाती है और बातों ही बातों में होता है दिलचस्प मुकाबला। अगले गीत की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले ले लेते हैं ये संदेश कि हमारे एक श्रोता कह रहे हैं, सुन री सखी मोहे विविध भारती बुलाए, जाना है गीतों की नगरिया, करना है सुरीला सफर, चुन चुन के लाई है पूजा पुष्प गीत विविध भारती के संग्रहालय से, मत देर करो कहीं एक ना बच जाए, हमें जाना है विविध भारती की नगरिया। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। और एक श्रोता कह रहे हैं कि तेरी गलियों में जो बदनाम हुए तो क्या हुआ, कम से कम इस बहाने हमारा नाम तो हुआ। बिल्कुल, एक श्रोता कह रही है कि कार्यक्रम की बढ़िया शुरुआत सुहाग फिल्म के भक्तिपूर्ण गरबा नृत्य से। धन्यवाद। सुंदर आगाज सुहाग माँ के इस गाने पर हम सब ने गरबा डांस किया था। बिल्कुल सही, ये गीत तो है ही सदाबहार गरबा गीत। एक श्रोता ने कहा है कि नवरात्रि शुरू होते ही मैंने अपनी सखी यानी कि अपनी पत्नी से कहा कि तीनों लोगों की रानी, ये संदेश तो हम ले चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने यात्रा की योजना

बना ली माता वैष्णो देवी के कदमों में सिर झुकाने के लिए। क्या बात है, जरूर जाइएगा। और हमारे एक श्रोता ने तो हमें लिखकर भेजी है हमारे ही इबारत की कुछ पंक्तियां गीतों से सजी हुई, ठीक है। और कुछ एक और श्रोता कह रहे हैं कि इश्क वह खूबसूरत गुनाह है जिसे हर इंसान बार बार दोहराना चाहता है क्योंकि इसमें जो सुकून मिलता है वह अनमोल है। बिल्कुल, हमने इबारत में ये सवाल भी तो आपसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि हर दिल इस इश्क के लिए, इस तोहमत को उठाने के लिए इतना मजबूर सा रहता है, है ना। तो बिल्कुल ये सुकून ही तो ढूंढ रहा होता है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो चलिए श्रोताओं, अब हम इस शादी की धूम वाले गीत से आगे की गीत की ओर बढ़ने जा रहे हैं। और देखिए इस गीत में होता क्या है, एक दिलचस्प मुकाबला। एक पक्ष कोई बात कहता है तो दूसरा पक्ष भी उसका जवाब उसी अंदाज में देता है। क्या आपने भी ऐसा मुकाबला अपने मोहल्ले, गांव या शहर में होते देखा है तो हमें जरूर बताइए।

0: नया दौर फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी ने इस गीत की रचना की थी और तर्ज बनाई थी ओपी नैयर ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम सुरीला सफर और अब लेते हैं एक संदेश। वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार।

हम लोग बचपन में बहुत दिखाया करते थे, लेकिन टीचर की डांट से ही हमने सीखा कि ये शरारतें हमें कैसे और कब नहीं करनी चाहिए, है ना? एक श्रोता ने कहा है कि गरबा खेलने का शौक बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी खूब होता है। मेरी 4 साल की नातिन रोज गरबा खेलने के बहाने डांस करती है और इस नवरात्रि के त्योहार का आनंद लेती है। क्या बात है। एक श्रोता ने कहा है कि नया दौर, दिलीप कुमार, वैजंती माला, ओपिनयर जी, उन्होंने इस गीत की डिटेल हमें भेजी है। एक श्रोता कह रहे हैं कि हाँ, उन्होंने हमें गीत लिखकर भेजे हैं जो हमारी इबारत से आज उन्होंने बूझ लिए हैं। जी हाँ, ऐसे ही हमारे और भी कई श्रोता हैं जिन्होंने गीतों को बूझ लिया है और हमें लिखकर भेज रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारी एक श्रोता कह रही है कि गरबा मेरे शहर वडोदरा की शान है, वडोदरा की सांस्कृतिक पहचान और उसकी आत्मा को दर्शाता है, जिसे गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। नवरात्र के 9 दिनों के दौरान यह उत्सव परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम पेश करता है, जहां भव्य कमर्शियल ग्राउंड्स और पुरानी गलियों के पारंपरिक गरबे दोनों ही देखने को मिलते हैं। संक्षेप में, यह त्योहार बड़ोदरा के नागरिकों को एकता और आस्था के सूत्र में पिरोता हुआ वाकई शहर की आन बान और शान साबित होता है। बिल्कुल नवरात्रि का त्योहार ही ऐसा है जो हम सबको एक सूत्र में बांध देता है। ऐसे ही हमारे और भी श्रोता हैं जिन्होंने गीत की डिटेल्स हमें भेजी है, नया दौर। जी हाँ, और इसी तरह अगली जो हमारे श्रोता है वो कह रही हैं कि नया दौर, दिलीप कुमार, वैजंती माला, इस गाने में वैजंती माला जी ने जो लहंगा चोली पहने हैं, वह लहंगा का चोली के डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया। क्या बात है जी, हमें भी जब भी हम देखते हैं वैजंती माला जी को, हमें तो उनका अंदाज बहुत पसंद आता है। इसे कच्छिया सिंधी कढ़ाई बोलते हैं, ऐसा भी उन्होंने बताया। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोता, अब देखिए ऐसे माहौल में क्या होता है कि कभी कभी ऐसे अलबेले भी मिल जाते हैं जो शरारत करते हैं, छेड़कानी के अपने अंदाज से सबका मन बहलाते हैं। ऐसे चंचल, अलहड़ और शरारती मिजाज वालों से थोड़ा सावधान तो रहना ही चाहिए, है ना, क्योंकि वो बेईमानी भी इसी रंगीन अंदाज में कर जाते हैं। ऐसे भंवरों से तो जरा बच के ही रहना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, भंवरा जो कलियों के पास जाता है, ये तो उसका व्यवहारिक काम है, क्या इंसानों को ऐसी बेईमानी शोभा देती है? अच्छा, जो गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसमें बात तो भंवरे की ही हुई है। ये जो एक सखी है दूसरी सखी को ये बता रही है कि इस भंवरे से थोड़ा बच के, पर तुझे कैसे बताऊं। अच्छा, जो ये गीत हम बजाएंगे, बताइए इस फिल्म का नाम क्या है और कौन है वो भंवरा इस गीत में जिनका जिनका अब जिक्र आप हमसे करने वाले हैं।

हमारे श्रोताओं ने उन सवालों के जवाब भी हमें भेजे हैं जो हमने नहीं पूछे, लेकिन हमें तो आपका ये अंदाज भी बड़ा पसंद आता है। आपने फिल्म का नाम और संगीतकार गीतकार के नाम भी हमें लिखकर भेजे हैं। जी हाँ, ये था मंचली फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। एक श्रोता कहते हैं कि इश्क उम्र और शक्ल सूरत देखकर नहीं होता, पता नहीं चलता कि कब हो गया है। और इसी तरह से कई श्रोताओं ने हमें फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम भी लिखकर भेजे हैं, जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया। इसी तरह एक श्रोता कह रहे हैं कि बहुत अच्छा गीत है, लता जी की आवाज़ में बहुत दिनों के बाद सुनने को मिला यह गाना, तो अच्छा लग रहा है। हमें यह फिल्म का नाम तो नहीं पता, लेकिन हमारे श्रोताओं को अवश्य पता होगा, तो हमने अभी अभी तो नाम लिया है, अब तो आपको पता चल गया है, है ना। इसी तरह हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उन्होंने भी ये जानकारी हमें दी है कि मंचली कली है लीना चंदावरकर और भवरा है इसमें संजीव कुमार। क्या बात है, हमने तो यही पूछा था कि भवरा कौन है, और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब हमें लिखकर भेजा है कि कली कौन है और भवरा कौन है। जी हाँ, संजीव कुमार इस गीत में भवरा है, जिसकी बात कर रही है लीना चंदावरकर जी। ऐसे ही कुछ श्रोता कह रहे हैं कि गरबा के गीत शुरू होते ही बच्चे तो नाचते ही हैं, बुजुर्गों के पैर भी बैठे बैठे ही मस्ती में थिरकने लगते हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि इश्क के लिए दुनिया से ये तोहमत लगाती है कि जो इश्क करे वो पछतावे और जो इश्क ना करे वो भी पछतावे। दुनिया वालों के लिए मेरा तो यह विचार है कि सच्चा इश्क जरूर करें, वो भी सिर्फ एक से, जो हम सफर भी हो और मरते दम तक उसी से इश्क करते रहें। क्या बात है, बहुत ही शानदार आपने ये संदेश सबके साथ साझा किया है। इस तरह एक श्रोता ने कहा है कि फिल्म नया दौर के इस गाने तथा अन्य गानों में नृत्य निर्देशन यानी कोरियोग्राफी के गीतकार और बाद में संगीतकार बने श्री प्रेम धवन जी ने, जिन्होंने संगीतकार ओपी नैयर को अपने मुंबई के शुरुआती दिनों में अपने घर में रखा था। बहुत धन्यवाद इस जानकारी को साझा करने के लिए। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, जो है शरारत और बेचैनी से आगे बढ़ते हुए इश्क के उस सुकून की ओर हमें लेकर जाता है, जहां हम सच में कह ही बैठते हैं कि हाँ, नैना तो लड़ ही गए हैं। अब ये गाना तो है उमंग से भरा, प्रेम और इश्क को समर्पित। आप बताइए, इस गीत में कई सारे त्योहार और नृत्य के रूप दिखाए गए हैं, तो आप बताइए कि आपको कौन सा त्योहार सबसे ज्यादा पसंद है।

जी हाँ, ये गीत था गाइड फिल्म से, लता मंगेशकर के स्वर में। शैलेंद्र के बोल थे एस डी बर्मन का संगीत। श्रोता कह रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज में। एक श्रोता कह रहे हैं कि गाइड फिल्म का ये गीत भारतीय फिल्मों में सबसे बढ़िया फिल्माए गीतों में शुमार है। लता जी की वहीदा रहमान जी का अभिनय देखने लायक है। मेरी लिस्ट का चौथा गीत शामिल हो गया है, क्या बात है। एक श्रोता ने कहा है कि वाह, ये तो मेरा पसंदीदा गीत है, अभिनेता देवानंद और अभिनेत्री वहीदा रहमान का फिल्म गाइड का गीत। जी बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कह रहे हैं कि मुझे बिना शोर शराबे वाले त्योहार पसंद है। जी तो श्रोता, अगले गीत की ओर हम बढ़े, उससे पहले आपके कुछ कमेंट्स और ले लेते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि साहिबा को कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए हार्दिक बधाई, हार्दिक आभार, धन्यवाद। नवरात्र में हम बिहार के कस्बे में बाला त्रिपुर सुंदरी के मंदिर जाते हैं। भारी संख्या में हमारे बिहार में भी कुछ नगरों में अब गरबा नृत्य का आयोजन होने लगा है। तो इसी प्रकार कई श्रोताओं ने हमसे साझा किया है इस गीत की डिटेल्स को, और साथ ही अपना नवरात्रि का त्योहार वो किस तरह मनाते हैं, किस उमंग के साथ में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं।

हमारे श्रोता कह रहे हैं कि अभिनेत्री फिल्म का ये गीत है और हेमा मालिनी और शशि कपूर इसमें अभिनेत्री और अभिनेता हैं। बिल्कुल सही जवाब। हालांकि हमने तो कोई प्रश्न ऐसा पूछा नहीं, लेकिन आप उसके बावजूद भी जब अपने जवाब इस तरह से गीत की डिटेल हमें भेजते हैं तो हमें सच में बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद। हमारी एक श्रोता ने कहा भी है कि मेरा भी कमेंट शामिल कीजिए। तो देखिए, आपका कमेंट भी शामिल हो गया है। आपने इस गीत की जानकारी हमें भेजी है कि ये फिल्म अभिनेत्री से गीत है। एक श्रोता कह रहे हैं कि ये सभी गीत मेरी युवावस्था के हैं। उस समय मन कोमल होता है और गीत को अपने मन में समा कर अपने आप को ही नायिका समझ लेती थी और आंख बंद कर डूब जाती थी। क्या बात है। एक श्रोता गाने का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि वह क्या बात है, लता दीदी के गाए इस बेहतरीन गीत के लिए उन्होंने हमें धन्यवाद भी कहा है और हम भी आपको धन्यवाद कह रहे हैं हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए पेश करने जा रहे हैं, सुनिएगा।

जी हाँ, यही था हमारी इबारत का आखिरी गीत। और इस फिल्म का नाम हमने पूछा तो हमारे श्रोताओं ने भी हमें सही जवाब लिख भेजे हैं। दिल ही तो है, यही है फिल्म का नाम। आशा भोसले और साथियों के स्वरों में ये गीत, साहिल लुधियानवी की रचना, रोशन का संगीत। देखिए, कार्यक्रम का वक्त भी तो हो चला है। अब आज्ञा दीजिए पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

आज की त्रिवेणी में सेहत की बातें। आज की भागम भाग वाली आधुनिक जीवन शैली में सेहत एक जरूरी मुद्दा बन गया है। दरअसल हमारे जीवन शैली में आगे निकलने की प्रतियोगिता बढ़ी है, तनाव बढ़ा है, जिसका सबसे खराब असर हमारी सेहत पर पड़ता है। लेकिन अब लोग अपनी सेहत को लेकर पहले से ज्यादा सचेत रहने लगे हैं, इसलिए अक्सर लोगों को पार्कों में घूमते, टहलते, दौड़ते और व्यायाम करते देखा जा सकता है। तो चलिए हम भी चलें।

सेहत का ध्यान रखना एक चुनौती जरूर है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि किया ना जा सके। कुछ छोटी छोटी बातों पर यदि ख्याल रखें तो हम हमेशा फिट बने रह सकते हैं। यदि हम सुबह जल्दी उठें, ताजी हवा में टहलें और कुछ देर सूरज की किरणों के सामने बैठे रहें, साइकिलिंग करें, दौड़ लगाएं, नृत्य करें, सीढ़ियां चढ़ें और जिन बातों से स्ट्रेस होता है उनसे दूर रहें। इस तरह अपने भीतर की खुशी को अभिव्यक्त करते हुए हमारी जीवन की गाड़ी चल पड़ेगी।

0: नहीं जा रहा।
1: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल,
0: सिग्नल को तोड़ो बाद वाली सिंबल।
1: देखो बेल बॉटम गालों पे डिंपल, हल्का सा गालों पे है एक पिंपल।
2: मनु भाई प्यारा बड़ा अच्छा भैया, खोपड़ी की जेल में काले काला
3: भैया। तत्त तत्त तरक सुन कुंजी दिक्कत खो थोड़ा इंगत तरक सुन सुन।
0: ए

0: हल्ला मचाएंगे, हल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बाजेगा ढम ढम ढम। हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम।
1: आज हम न चाहकर भी कई प्रकार के मशीनों से घिरे हुए हैं, चाहकर भी हम मेहनत नहीं कर पाते। लेकिन स्वयं को यदि फिट रखना है तो व्यायाम के अलावा भोजन, स्वच्छता और विश्राम पर ध्यान देना होगा। रोज हमें उचित समय पर भोजन और 6 से 8 घंटे की नींद के लिए समय निकालना ही होगा।
2: ऐसे बहुत अच्छा।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। 2:15 का समय होने वाला है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के

0: देश को बरकरार रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। श्री शाह ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। हिमालय क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने लास वेगास में आयोजित अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालतसी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिमसरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसके विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
1: यहाँ के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में ग्रीन हाउस खेती को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब 11,000 ग्रीन हाउस हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए जनजातीय समुदाय को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के जीवन को फिर से संवारने, उन्हें सहायता देने और सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प था कि हम 31/3/2026 के पहले पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करेंगे। मुझे आनंद है आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका, मगर नक्सलवाद समाप्त होने से 5 दशकों की पीड़ा को हम समाप्त नहीं कर सकते। वो पीड़ा ने जहाँ जहाँ गांव दिया है वहाँ हमें मरहम लगाना पड़ेगा, उनको खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा और वो सम्मान के साथ जीवन जी पाए इसकी व्यवस्था कर।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय भाषाओं से संबंधित कार्य समूह की बैठक आयोजित की। ये बैठक हाइब्रिड कार्यशाला के रूप में हुई, जिसकी अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने की। श्रीमती चोपड़ा ने बैठक को संबोधित करते हुए जनजातीय समुदायों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में भाषा के महत्व पर जोर दिया। बैठक में देशभर के प्रमुख भाषाविदों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और जनजातीय समुदायों के भाषा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि हिंदू धर्म से इस्लाम या अन्य गैर हिंदू धर्मों में धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पिछड़े वर्ग के

0: अंतर्गत आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि पूर्व के सामाजिक पिछड़ेपन को धर्मांतरण के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक रिपोर्ट।
1: न्यायालय ने कहा कि गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्मांतरण स्वतः किसी अधिसूचित पिछड़े वर्ग समुदाय की सदस्यता प्रदान नहीं करता। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत वैधानिक लाभ केवल किसी व्यक्ति की धर्मांतरण पूर्व स्थिति के आधार पर नहीं दिए जा सकते। न्यायालय ने दोहराया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। ये फैसला मार्च 2024 के तमिलनाडु सरकार के एक आदेश से संबंधित याचिका के जवाब में आया है, जिसमें दूसरा धर्म अपना चुके लोगों को आरक्षण लाभ देने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी धार्मिक निकाय वैधानिक अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं और हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र तथ्य आधारित विशिष्ट सत्यापन की आवश्यकता होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
2: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड हैव सीन एंड ऑफ वॉर। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है, तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इन्होंने कूटनीतिक निंदा के बजाय सक्रिय कार्रवाई करने के राष्ट्र के दृष्टिकोण में निर्णायक बदलाव को दर्शाया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवाद के हर स्रोत तक पहुंचकर उसका खात्मा करना है। श्री सिंह ने सीमा पार आतंकवाद पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान से होने वाली किसी भी आतंकवादी गतिविधि का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक के कारवार स्थित कदम नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी पोत समर्थक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला पहला स्वदेशी बहुद्देशीय पोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
3: भारत सरकार के एक प्रमुख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में पानीपत से की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेल्फी विद डॉटर के जनक जींद जिले के बीबीपुर गाँव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वजह से बेटियों की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है।
4: अगर हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से पहले हरियाणा का लिंगानुपात कम था, हरियाणा में लड़कियों की साक्षरता दर कम थी, हरियाणा की लड़कियां विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन अगर आज हम देखें तो हरियाणा की लड़कियां करीबन 75% साक्षरता है, जो कि करीबन 64% 2014 से पहले होती थी। उसके साथ ही अगर हम बात करें लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर, कुपोषण को लेकर, वो दर भी लगातार घट रही है। इसके साथ ही हम खेलों में लड़कियों की भागीदारी देखें तो 6200 सभी गांवों में आज के दिन खेल नर्सरियों में लड़कियां पहुंच रही हैं, तो खेलों में लड़कियों की भागीदारी करीबन 60% ज्यादा बढ़ चुकी है। लिंगानुपात जो 879 हरियाणा का

0: होता था वो 920, 925, 930 तक आज के समय चला जाता है। और खास बात ये रही कि कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगी है।
1: उल्लेखनीय है कि सुनील जागलान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा से देश सेवा की भावना के साथ शुरू किए गए सेल्फी विद डॉटर अभियान का बेटियों के प्रति नजरिया बदलने में बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को राष्ट्रव्यापी अभियान में बदल दिया। दूरदराज क्षेत्र से निकला यह अभियान अब एक वैश्विक अभियान बन चुका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 से पहले विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
3: महिलाएं पीछे रह जाते थे आर्थिक रूप से, केवल परिवार का देखभाल, परिवार का सहयोग ही करते थे, छोटे छोटे चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे, लेकिन आज वो आत्मनिर्भर बन गए। केवल आत्मनिर्भर नहीं, दूसरों का भी और सहारा देने वाले बन गए। ये केवल उनके इनकम नहीं है, ये देश का आर्थिक समृद्धि, देश का महिलाओं का विकास भी ये समाहित है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने ये बात कही। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 21 तारीख तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में सोमवार तक तेज वर्षा का अनुमान है। इस बीच जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका के लास वेगास में आज पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में विश्वजीत को मामूली अंतर 12-13 से जॉर्जिया के कोबा कारूमित्ज़े से हार का सामना करना पड़ा। श्री रामचंद्र मोर अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन के फाइनल में पहुंचने और पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: ये गीत अभी आपने सुना फंटुश फिल्म से आशा भोसले की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल थे, तर्ज बनाई थी एसडी बर्मन ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया, जंगली है इस फिल्म का नाम, शैलेंद्र के बोल हैं और तर्ज शंकर जयकिशन की।

अब सुनिए मोहम्मद रफी को घराना फिल्म के इस गीत में। शकील बदायूनी ने इस गीत की रचना की है और संगीतबद्ध किया है रवि ने।

की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक

0: डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी, उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
3: पेंटर बाबू
2: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
4: दिल तो पागल है,
2: दुश्मन
5: चिट्ठी न कोई संदेह,
2: गदर एक प्रेम कथा,
6: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
2: पिंजर दास्तान, बेमिसाल संगीत की
7: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव,
2: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, एसएच बिहारी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, फिल्म का नाम कश्मीर की कली।

बड़ा आदमी इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत की रचना की है प्रेम धवन ने, संगीत पद किया है चित्रगुप्त ने और आवाजें हैं उषा मंगेशकर और कमल बारोट की।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं जो कि है कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति CID फिल्म से। गीता दत्त की आवाज में मर्जू सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

सीआईडी फिल्म से गीत आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को, नमस्कार।

0: सखी सहेली सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। मेरे सामने बैठी हैं हंसती मुस्कुराती सी आरती।
1: मंदाकिनी जी आपको और साथ में सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसी हो आरती?
1: बहुत बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि इस समय नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, पूजा पाठ और साथ में इतना बढ़िया जो गरबा सब तरफ हो रहा है, चकाचौंध रोशनी ही रोशनी है, झालरें लगा रखी है, लोगों ने सजावट इतनी अच्छी कर रखी है हर सोसाइटी में हर घर में कि मतलब बहुत अच्छा लगता है। और जो हवन की जो सुगंध आती है ना, सच में एकदम बहुत अच्छा लगता है।
0: सबसे बड़ी बात तुमने कहा कि जो हम जब पूजा या अर्चना करते हैं, जैसे कहते हैं हम एक विश्वास किसी शक्ति को मान के जब चलते हैं और पूजा अर्चना में लीन होते हैं, तो एक अदम में शक्ति हमें प्राप्त होती है और हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं, ऊर्जावान हो गए हैं। नहीं तो जिंदगी कई बार बड़ी सुस्त सी चलने लगती है, लेकिन इन दिनों हर इंसान जो है अपने आप में एक अलग ही एनर्जी महसूस कर रहा है,
1: क्योंकि त्योहार की जो एक खासियत है ना वो यही है कि आपको एक अलग सी एनर्जी एक अलग सी ऊर्जा से भर देता है वो। आप बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं, नौ व्रत रखते हैं कुछ लोग तो लेकिन ऐसा लगता है ना कि उनके अंदर एनर्जी की ऊर्जा की कोई कमी नहीं बल्कि और आ गई ऊर्जा
0: बढ़ गई है। बिल्कुल सही बात कहा आपने कि 9 दिनों तक जब हम किसी तरह का उपवास करते हैं और माता को याद करते हैं और हमें लगता है कि जो रोजमर्रा का भोजन है उसे थोड़ा सा हम त्याग देते हैं और फलाहार की ओर बढ़ जाते हैं, तो एक अलग किस्म की शांति का।
1: और हम तो यही कहेंगे आप फलाहार ही ले, बहुत ज्यादा तला भुना, क्योंकि रहता है ना कि जब व्रत है तो बहुत तली तली चीज ऐसी चीजें बनती हैं, आलू भी बनाएंगे तो तल तल के एकदम से बनाएंगे तो वो बहुत ज्यादा तला चीजें मत खाइए, इससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है।
0: कई बार क्या होता है फलाहारी आटे की हम पूड़ियां तल लेते हैं, मछलियां बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, और बाजार में भी कई शहरों में बाजार में भी फलाहारी मिर्ची बड़े फलाहारी समोसे मिलते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई व्रत है तो इन दिनों इन्हें ही खाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने व्रत किया उपवास किया है तो थोड़ा सा इन चीजों से दूरी बनाए रखिए और फलाहार करिए,
1: इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे पूरे और एक ऊर्जा भी आपको बहुत अच्छी से महसूस होती रहेगी। तो क्योंकि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है, तभी हम इस त्योहार का मजा भी ले सकते हैं और डांडिया खेल सकते हैं, खूब मजे से गरबा खेल सकते हैं।
0: सही बात है, जो है सब तरफ जो है डांडिया की धूम मची हुई है
1: जी हाँ,
0: और बड़ा अच्छा लग रहा है इन दिनों। और अब अच्छा लगेगा हमें ये जानकर कि आज हमारे श्रोताओं के साथ हम क्या बातें करने वाले हैं।
1: तो आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है, पहले तो हम लेके आए हैं माता पिता से दूरी बनाते हुए बच्चे, जो आजकल ट्रेंड सा चल गया ना कि बच्चे भी जहां थोड़े से टीनेज में भी यहां तक ही आ जाते हैं, 17-18-19 साल के हुए नहीं कि उनको लगता है अब हम अकेले रहे, अब हम क्यों किसी बंदिश में रहे, उनको लगता है माता पिता के साथ रहना यानी बंदिश में रहना, तो अलग रहने की उनको इच्छा होने लगती है कि हम अलग रहें अपने तरीके से रहें और बाहर हम अपना जॉब करें या कुछ भी करें। तो ये जो आज देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा ऐसा देखने को मिल रहा है, और साथ ही हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री की, उसके अंदर हम लेकर आएंगे आज बीरू बाला रभा जी के बारे में बात करेंगे, हम उनकी चर्चा करेंगे
0: जो समाजसेविका है,
1: बिल्कुल समाजसेवा में जिनका नाम है, और साथ ही हम बात करेंगे मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे अपने ग्रामीण अंचल लोकोक्तियां, तो हम बहुत सारी जानते हैं लेकिन जो ग्रामीण ठेठ ग्रामीण वाली जो होती है वो लोकोक्तियां कौन सी है।
0: अरे तो हमारे ग्रामीण श्रोता जो हमें सखियां सुन रही है वो तो बता देंगे,
1: बिल्कुल बताइए
0: किस तरह की लोकोक्तियां बोली जाती है,
1: कौन से गाँव में, या बहुत सारे लोगों को मालूम होता है ना कि कौन की गाँव की जो लोकोक्ति है बहुत प्रसिद्ध है, उनको ऐसी कौन सी पता है जो बहुत प्रसिद्ध है, उसके बारे में आप बताइए। और साथ ही हम बात करेंगे उपयोग

0: टिप्स की, क्योंकि देखिए त्योहार चल रहे हैं और जब गरबा होता है ना तो जब सब महिलाएं ऐसी सुंदर सुंदर लड़कियां सब इतनी सुंदर सुंदर सच के आती हैं, तैयार होकर आती है ना, लगता है कि सब अप्सराएं जमीन पर उतर आई हैं। तो वो उसके लिए हम लेकर आए घरेलू नुस्खे जो रखेंगे सुंदर त्वचा आपकी।
1: अरे आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता है ना। तो कैसे रखें इस त्वचा को खूबसूरत, इस पर कुछ उपयोगी टिप्स हमारे श्रोता हमें देंगे।
0: बिल्कुल बताइए आप हमें अपने, क्योंकि उनको पता है भाई गर्भा में ऐसे ही थोड़ी ना अपनी शांति
1: चमकती त्वचा के साथ जब हम जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही होता है ना। तो चलिए अब एक गाना हम सुन,
0: बिल्कुल एक भक्ति भावना से भरा हुआ गीत सुनते हैं,
1: आइए।

0: बहुत अच्छा गीत था आरती। और माता का ध्यान तो हम इन दिनों कर ही रहे हैं। वैसे तो हर दिन माँ हमारे ख्यालों और ख्वाबों में रहती ही है ना, लेकिन इन 9 दिनों में खास अर्चना हम करते हैं। और देखिए, तुमने कहा कि आजकल जो बच्चे हैं वो माता पिता से दूरी बना रहे हैं, या उनके मन में एक समय बाद आता है कि वे अलग रहना चाहते हैं, दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, तो ये चीजें थोड़ा सा माता पिता के मन को तोड़ देती हैं।
1: बिल्कुल, उनको लगता है ना कि अब हम अपने जो अपने हमारे बच्चे हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे हर वक्त, क्योंकि बचपन से उनको पाला, उनको उनके साथ में,
0: और उनका अधिकार होता है उन पर, उनके लिए एक फर्ज बनता है, बच्चों के लिए, बच्चों के मन में होना चाहिए कि माता पिता के साथ हमें रहना है। और भले ही उनका विवाह हो गया है, पत्नी हो गई है, पत्नी आ गई है, बच्चे हो गए हैं, लेकिन अगर वो माता पिता से अलग रहने का सोचते हैं तो माता पिता की जो सारी ख्वाहिशें हैं, जो बच्चों के लिए बुने हुए ख्वाब होते हैं, वो टूट जाते हैं, है ना। तो कहते हैं कि दुनिया में सबसे निस्वार्थ रिश्ता जो है माता पिता का होता है, और ये ऐसा रिश्ता है जिसमें बच्चे की एक मुस्कान के लिए माँ अपनी थकान भूल जाती है, और जो पिता है वो अपनी परेशानियों को अनदेखा करके परिवार की खुशियों के लिए भी निकल पड़ते हैं सुबह से शाम तक। और जिस बच्चे की पहली आवाज पर माँ दौड़ी आती है, आज उसी बच्चे की आवाज सुनने के लिए माँ को कई बार फोन करना पड़ता है।
1: बिल्कुल, और जिस पिता की उंगली पकड़कर बच्चा चलना सीखता है, उम्र के एक पड़ाव पर उसी पिता को बच्चे के साथ 2 कदम चलने के लिए उससे समय मांगना पड़ता है। और कभी कभी तो घर में सब साथ में रहते हैं लेकिन बातचीत केवल इतनी होती है, खाना खा लिया, हाँ पैसे चाहिए, भेज दीजिए, बस बातचीत खत्म। रिश्ता ऑनलाइन और भावनाएं ऑफलाइन।
0: बिल्कुल सही कहा आरती। आज की दुनिया पहले से बहुत बदल गई है। पढ़ाई की बात करें, नौकरी, प्रतियोगिता, महानगरों की जो भागदौड़ है और फॉरेन में बसने की जो ये चाहत है, इन सब ने परिवारों की जो जीवन शैली है उसको बिल्कुल ही बदल दिया है। पहले कई पीढ़ियां एक ही घर में रहती थी, दादा दादी की कहानियां होती थी, माँ की रसोई के किस्से, पिता की सीख और भाई बहनों की नोक झोंक और रोजमर्रा की जिंदगी का ये हमारा हिस्सा होता था। लड़ाई झगड़ा, मैं बच्चे भाई बहन, इतनी चिल्लपों,
1: लड़ते झगड़ते हम लोग बड़े हो रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: और वो चीज एक अलग ही होती थी। और आज जो छोटे परिवार हैं, बच्चे पढ़ाई और नौकरी के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हैं, ऐसे में माता पिता से जो दूरी हो जाती है ना, वो हमेशा भावनात्मक दूरी का संकेत नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप, हो सकता है कि आपको पढ़ाई करने के लिए या किसी चीज के लिए जाना पड़े, लेकिन वो दूरी सिर्फ ऐसी होनी चाहिए कि हाँ आप गए लेकिन मन से दूर नहीं हुए। लेकिन आजकल क्या है ना कि बच्चे मन से भी दूर होते जा रहे हैं। कई बच्चे दूर रहकर भी अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखते हैं। आज मोबाइल पर हमारे सैकड़ों संपर्क हैं, सोशल मीडिया पर हजारों मित्र हैं, लेकिन कभी कभी अपने माता पिता के पास बैठकर 10 मिनट बात करने का भी हमारे पास समय नहीं होता।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। और हम दुनिया भर की तस्वीरों पर अपनी राय देते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, खुश होते हैं, लेकिन माँ की बात पर सिर्फ इतना कहते हैं, मम्मी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ, बाद में बात करता हूँ। खासतौर से बेटे, उनके लिए ज्यादा हम कहेंगे कि वो बात कब आता है उनका, इसका तो जवाब न तो माँ के पास होता है, न उस बच्चे के पास होता है। और एक बड़ा घरों में एक आरती और बड़ा दिलचस्प दृश्य भी देखने को मिलता है कि माँ कहती है, बेटा जरा मेरे पास बैठ जा, तुझसे कुछ बात करनी है, तो बेटा कहता है, मम्मी 5 मिनट बस।
1: और मजे की बात यह है कि माँ के 5 मिनट में जो माँ मांगती है, 5 मिनट में चाय भी बन जाती है, 2 बार गैस बंद हो जाती है, पड़ोस की खबर आ जाती है, लेकिन बेटे के 5 मिनट में मोबाइल की बैटरी 10% और कम हो जाती है। और जब माँ पूछती है किससे इतनी बातें कर रहे हो, तो जवाब मिलता है, बस दोस्तों से। माँ मनी मन सोचती है, काश मैं भी अपने बेटे की दोस्ती होती।
0: हाँ, दोस्त बनते हैं माता पिता, लेकिन बच्चे जो हैं कहाँ बात करना पसंद करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है।
1: बिल्कुल,
0: और ये बातें सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकती। अक्सर माता पिता कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम हमारी बात भी नहीं मानते। तो इन बातों के पीछे जो है उनकी चिंता है, उनके अनुभव है, सुरक्षा की भावना है, ये छुपी होती है। मगर जब बातचीत बार बार शिकायत या में बदल जाती है, तो बच्चे भी अपनी बात कहना बंद कर देते हैं। ये दूसरा सिक्के का दूसरा रूप है।
1: बिल्कुल,
0: कि कई बार ऐसा भी होता है।
1: जी बिल्कुल, और याद रखिए, प्यार में अधिकार हो सकता है लेकिन संवाद में सम्मान भी बहुत जरूरी है। बच्चों को स्वतंत्रता चाहिए और माता पिता को भरोसा। दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हर नई पीढ़ी का अपना अपना समय होता है, अपनी चुनौतियां होती हैं और अपने सपने होते हैं। उसी तरह माता पिता के पास जीवन का अनुभव होता है, जिसे अनसुना करना भी अच्छा नहीं है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है। और समस्या पीढ़ियों के अलग होने में नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने की जो कोशिशें हम बंद कर देते हैं ना,
1: हाँ।
0: वो बहुत दिक्कत है। रिश्ते में दूरी झगड़े से नहीं है, जो दूरी है हमेशा झगड़े से नहीं आती है। कई बार क्या होता है, सब कुछ सामान्य दिखाई देता है लेकिन बातचीत धीरे धीरे कम हो जाती है। बच्चे अपनी खुशियों में परेशानियों में माता पिता से साझा करना उस बात को बंद कर देते हैं और घर में एक सन्नाटा सा पसर जाता है।
1: बिल्कुल। और माता पिता अपनी भावनाएं बताने के बजाय चुप रहना शुरू कर देते हैं और फोन पर बातचीत केवल जरूरी कामों और पैसों तक सीमित हो जाती है। परिवार के जो सदस्य हैं एक साथ होते हुए भी एक दूसरे के लिए समय नहीं निकालते। छोटी छोटी बातों पर संवाद करने के बजाय क्या करते हैं, वो नाराजगी होने लगती है, गलत फहमियां बढ़ने लगती हैं। और हालांकि इन संकेतों का अर्थ ये नहीं कि हर परिवार में रिश्ता बिगड़ ही रहा है।
0: हाँ नहीं, ऐसा नहीं, रिश्ता नहीं बिगड़ रहा, लेकिन खुशियां भी नहीं आ रही, मन खुश नहीं रहता है, मन भारी रहता है। तो कभी पढ़ाई का तनाव हो सकता है, कभी नौकरी का दबाव हो सकता है, व्यक्तिगत परेशानियां हो सकती है, पुराने मतभेद भी जो है हमारे संवादों को बातचीत को प्रभावित करते हैं आरती। इसलिए तुरंत आरोप लगाने के बजाय प्यार से हमें पूछना चाहिए कि क्या बात हो गई, सब ठीक तो है ना, क्या तुम किसी परेशानी से निकल रहे हो, गुजर रहे हो, या मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। कभी कभी किसी को समाधान नहीं, सिर्फ एक सुनने वाला चाहिए होता है, जो हमें नहीं मिलता।
1: बिल्कुल। और इन छोटे सवालों में अपनापन छिपा होता है। दूरी को केवल किलोमीटर से मत मापिए कि वो उतनी दूर है, उतने किलोमीटर दूर है। और बच्चे दूसरे शहरों या देशों में रहते हैं, वो नियमित फोन कॉल, वीडियो कॉल, त्योहारों पर मुलाकात और स्वास्थ्य या रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखकर अपने माता पिता से जुड़े रह सकते हैं। जरूरी है माता पिता भी अपनी व्यस्तता को बनाए रखें।

0: कि ऐसा नहीं कि बस आप खाली बैठे रहें, तो फिर आपको और चिंता होने लगेगी और लगेगा कि कोई आए साथ में. तो अपने मित्रों से मिलना, रुचियों को अपनी जो आपके शौक हैं उसको समय देना, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना और अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है.
1: बिल्कुल,
0: अपने आप को बिजी रखना.
1: बिजी रखना, लेकिन वही है आरती कि बिजी रखने के चक्कर में भी कई बार हम रिश्तों से दूर हो जाते हैं. हमें लगता है हम बिजी हैं, हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है. तो इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए कि हम अपना जीने का अंदाज खो दें या जो सुख शांति है. ठहराव भी जिंदगी में बहुत जरूरी है ना, ठहराव होना बहुत जरूरी. तो बच्चों में क्या हो गया, ठहराव नहीं रहा तो जुड़ाव भी नहीं रहा, नहीं ना. अपनी पूरी खुशी केवल उनकी अपने बात पर निर्भर रहती है कि वो किससे खुश रहते हैं. तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी रिश्ते में डर नहीं होना चाहिए, अपमान या लगातार नियंत्रण करना. किसी को हम नियंत्रण में कर लेते हैं, हाँ. कंट्रोल में करना जिसे कहते हैं, या हम दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये साथ रहने से रिश्तों की सफलता नहीं मानी जा सकती. बल्कि एक दूसरे की रिश्तों में क्या होता है कि उनकी सीमाओं का ध्यान रखना, उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना, ये सभी ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है.
0: बिल्कुल. और जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर ये सोचते हैं कि माता पिता तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हाँ. उनकी शिकायतें, उनकी सलाह, उनकी आवाज, सब कुछ हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहेगा. लेकिन सच ये है कि समय किसी के लिए भी ठहरता नहीं है. और बचपन में जो हाथ हमें गिरने से बचाते थे, उन्हें उम्र के साथ हमारे धैर्य और सहारे की जरूरत भी हो सकती है. और जो माता पिता कभी हर सवाल का जवाब देते थे, वो भी आज के बदलते समय में अकेलापन, असुरक्षा या अपनी उपयोगिता को लेकर चिंता महसूस कर सकते हैं.
1: बिल्कुल सही कहा आपने. और इसी तरह बच्चों को भी समझे जाने का, सम्मान पाने का और अपने फैसले लेने की जगह होनी चाहिए. इसलिए रिश्तों को बचाने का केवल क्या तरीका है कि त्याग या उनकी बातों को मानना नहीं है, बल्कि संवाद करना, संवेदना जताना, प्यार मोहब्बत है ना जिसे कहते हैं ना, सहानुभूति, ये सभी होना चाहिए. और बच्चों, माता पिता को भी बच्चों की दुनिया को समझना होगा और बच्चों को भी समझना होगा कि माता पिता का प्यार केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि उनके जीवन का एक जरूरी हिस्सा भी है. तो दोनों तरफा ये समझना पड़ेगा. महंगे उपहार देने से कभी रिश्ते नहीं बनते हैं, आपसी प्यार सम्मान देने से वो रिश्ते कायम रहते हैं. लेकिन प्यार से पूछा गया एक सवाल कि आप कैसे हैं, सब अच्छा है, मैं आपकी क्या काम आ सकती हूँ या मुझे क्या करना चाहिए, ये हमारे दिलों में जो दूरियां हो गई हैं उसे हम कम कर सकते हैं. तो हम तो हर बच्चे से, हर माता पिता से यही कहेंगे कि एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है. अपने रिश्तों में करीबी लाएं, है ना, दूरी नहीं लाएं.
0: बिल्कुल. और अभी हम अपने श्रोताओं को और करीब लाते हैं एक प्यारा सा गीत सुनवा.

0: हाँ, तो बहुत ही पुराना गीत और बहुत ही प्यारा गीत था ये।
1: बुझ मेरा क्या नाम रे।
0: हाँ, नदी किनारे नाव रे, क्या मतलब पुराने गीतों की बात करें तो सुनते ही रह जाते हैं।
1: मतलब अपना पूरा पता भी उन्होंने बता दिया कि नदी किनारे गांव उनका।
0: बिल्कुल, और हमारे भी जो श्रोता है, हमने उनसे भी कहा था कि उनके गांव में कौन कौन सी लोकोक्ति प्रचलित है,
1: हाँ,
0: है ना, उसका जिक्र उन्हें हमारे साथ करना भी है।
1: जी हाँ।
0: तो अभी हमारे श्रोता लिखते हैं आरती कि माता पिता और बच्चे, वयस्क संतान जो है, उनके बीच बढ़ती दूरी का मुख्य कारण भावनात्मक अलगाव, विचारों का अंतर और संवाद की कमी है। जीवन शैली और उम्मीदें पुराने समय से काफी अलग हैं। बच्चे अब केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं बल्कि मानसिक शांति और बराबरी का सम्मान चाहते हैं। कई बार माता पिता बच्चों की भावनाओं को समझे बिना उन्हें नियंत्रित करने या बार बार सलाह देने लगते हैं, जिससे बच्चे हस्तक्षेप या अविश्वास मानते हैं। बच्चे चाहते हैं कि उनकी बात माने बिना किसी बिना रोक टोक के सुनी जाए, लेकिन कई बार माता पिता अपनी पुरानी बातों या अपने संघर्षों का हवाला देकर बच्चों की बात को अनसुनी कर देते हैं। तो माता पिता अक्सर बच्चों को यह याद दिलाते हैं कि उन्होंने उनके लिए कितना त्याग किया है, जिससे नई पीढ़ी ऐसा नहीं मानकर माता पिता का प्राथमिक कर्तव्य मानती है। डिजिटल और अत्यधिक व्यस्त जिंदगी, गैजेट्स और भागदौड़ वाली जिंदगी ने भी परिवार के सदस्यों के बीच के वास्तविक संवाद को बहुत कम कर दिया है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि माता पिता से दूरी होने के बाद बच्चे जो अक्सर है वो डिप्रेशन, अकेलेपन और एंजाइटी यानी घबराहट के शिकार हो जाते हैं। जब बच्चों को घर में भावनात्मक सहारा नहीं मिलता तो वो बाहर सहारा ढूंढते हैं और कई बार गलत दोस्तों या व्यसनों की गिरफ्त में आ जाते हैं। ये दूरी भविष्य में बुढ़ापे में माता पिता की उपेक्षा का कारण बनती है, जिससे पारिवारिक रिश्तों का ताना बाना बिखर जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल बच्चों और माता पिता के बीच बढ़ती जो दूरी है वो एक आम समस्या बनती जा रही है। इसके मुख्य कारण, इसे कम करने के उपाय बहुत सारे इन्होंने लिखे हैं कि पीढ़ी का अंतर है, संवाद की कमी है, डिजिटल लत है, व्यस्तताएं हैं, स्क्रीन टाइम शेयर करते हैं, मोबाइल की लत के कारण बच्चे भावनात्मक रूप से माँ बाप से कटते जा रहे हैं। और इस दूरी को कम करने के उपाय भी कहते हैं कि आप जो है बच्चों की बात को बिना बीच में काटे तुरंत बचाव की मुद्रा में आए, सुने, उनकी भावनाओं को समझे, उनकी सीमाओं का सम्मान करें, दोषारोपण छोड़ें और समय और बदलाव को अपनाएं। ये जरूरी है, तभी जाकर ये दूरियां थोड़ी सी पार्टी जा सकती हैं।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जिन परिवारों में माता पिता के बीच लगातार झगड़े या तनाव का माहौल रहता है, वहाँ बच्चे मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे माहौल से बचने के लिए वो बाहरी दोस्तों या डिजिटल दुनिया की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अक्सर माता पिता बच्चों पर डॉक्टर, इंजीनियर या टॉपर बनने का भारी दबाव डालते हैं। उनकी अपनी क्षमता या पसंद, जैसे किसी को आर्ट पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, तो उसको नजरअंदाज करने और हर समय दूसरों से तुलना करने के कारण बच्चे मानसिक तनाव में आ जाते हैं और अपने माता पिता से कतराने लगते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जरूरत से ज्यादा बच्चों को कंट्रोल में करने की जो माता पिता

0: की आदत है ना, वो भी जो है बच्चों को एक समय बाद दूर कर देती है। बच्चे अभी तो क्या होते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, बाद में जब उन्हें मौका मिलता है तो वो दूरी बना लेते हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि माता पिता से बच्चों का दूरी बनाना आज के समय में एक गंभीर और संवेदनशील विषय है। अक्सर टीनेज में बच्चे पेरेंट्स से दूरी बना लेते हैं, उनसे कुछ कहना या अपने दिल की बात शेयर करना तो दूर, वे कई बार ठीक से बात भी नहीं करते। ऐसे में पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्या है। कई बार तो पेरेंट्स इतने चिंतित हो जाते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प तक लेने लगते हैं। बेशक हर पीढ़ी की सोच अलग होती है, लेकिन बच्चों को समझना जरूरी है कि उनके सबसे बड़े शुभचिंतक माता पिता ही हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना बहुत जरूरी है बच्चों के अंदर एक विश्वास को लेकर आना। और एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में माता पिता और बच्चे दोनों ही अपनी व्यस्तताओं यानी कि कोई काम में, कोई पढ़ाई में, कोई कोचिंग में उलझे हुए हैं, और घर पर भी लोग बातचीत करने के बजाय स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और गेमिंग में व्यस्त रहते हैं, जिससे आपसी संवाद जो है वो खत्म होता जा रहा है। नई पीढ़ी के विचार, उनका पहनावा, करियर के चुनाव और जीवन जीने का तरीका पुरानी पीढ़ी से काफी अलग है। जब माता पिता पुरानी सोच या पुराने नियमों को थोपने की कोशिश करते हैं तो बच्चे खुद को असहज महसूस करने लगते हैं और उनसे दूर होने लगते हैं।
0: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम माता पिता को दूर करके बाहर कहीं भगवान को ढूंढने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, परंतु देखा जाए तो माता पिता ही भगवान रूप में हमारे घर में विराजमान है।
1: बिल्कुल,
0: उनकी सेवा अगर हम करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा और आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, कभी करके तो देखिए, ये लिखते हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में माता पिता और बच्चे दोनों ही अपनी व्यस्तताओं के कारण उलझे हुए हैं। घर पर भी लोग बातचीत करने के बजाय, जैसा कि अभी आपने कहा, इन्हीं विषयों पर बातचीत भी करते रहते हैं।
1: बिल्कुल, श्रोता जो लिखते हैं कि माता पिता से दूरी बनाते बच्चे बड़ा मुद्दा है। बच्चे के पास बैठकर बातें भी नहीं करते हैं, वो अपने मोबाइल, वीडियो कॉलिंग, चैट पर ही लगे रहते हैं। माता पिता अपने अपने व्यवसाय में चले जाते हैं। हमारे यहाँ जब से पापा की मृत्यु हुई तब से भाई और बहन माँ के पास ही रहते हैं, और मतलब मम्मी नजदीक ही रहती है, कोई फोन आया तो तुरंत उसका जवाब देते हैं। हमारा तो फोन टूट गया, इसलिए बहन के फोन से ये संदेश साझा कर रहा हूँ। असल में जो इतना मतलब वो फोन बता रहे अपना, उनका गिरा तो उसका डिस्प्ले चला गया था। तो माता पिता अगर किसी के हैं साथ में तो बच्चों को उनके साथ बातें करनी चाहिए, और मतलब उनको अकेले उस पे नहीं छोड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता से दूरी बनाते बच्चे दिल से दूर नहीं होते, दूरी होती है वे काम के कारण, क्योंकि उन्हें अपना काम धंधा संभालना होता है, जिंदगी चलानी होती है। और एक बात है कि माता पिता बच्चों पर जरूरत से ज्यादा पाबंदी लगा देते हैं, क्या उनके जीवन के हर फैसले को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो इसका बच्चों पर बुरा प्रभाव है और उन्हें घुटन महसूस हो सकती है। इसलिए उन्हें उच्च विचारों से भरे पंख लगाकर उड़ने के लिए एक विशाल गगन में आजादी देने की जरूरत है।
1: बिल्कुल, और माता पिता, ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता से बच्चों का दूरी बनाना आज के समय में एक गंभीर संवेदनशील विषय है, और अक्सर टीनेज में बच्चे पेरेंट्स से दूरी बनाने लगते हैं, उनसे कुछ कहना या अपने दिल की बात शेयर करना तो दूर, वो कई बार ठीक से बात तक नहीं करते। ऐसे में पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार तो पेरेंट्स इतने चिंतित हो जाते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प तक लेने लगते हैं। बेशक हर पीढ़ी की अपनी सोच होती है, अलग होती है, लेकिन बच्चों को समझना आवश्यक है कि उनके सबसे बड़े शुभचिंतक जो है उनके माता पिता ही हैं। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि माँ बाप ने अपनी हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, अब जब उनके कदम धीमे पड़ने लगे तो उन्हें अकेला ना छोड़ें, उनका हाथ थामकर कुछ दूर चल लेना भी प्यार जताने का बहुत सुंदर तरीका है।
0: बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद और शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस विषय को उठाया और ये साबित कर दिया कि माता पिता और बच्चों को आपसी तालमेल और समन्वय रखना कितना जरूरी है ना।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आरती, अब वक्त है एक अंतराल का।
1: बिल्कुल, अंतराल लेते हैं।

0: हाँ तो आरती,
1: हाँ हम बात करते हैं पद्मश्री की जो सेगमेंट हमारा है उसमें हम बात कर रहे हैं बीरूबाला राभा जी की। देखिए मंदाकिनी जी, समाज जो जो समाज सेवा होता है ना उससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती है ना। और मानवाधिकार जो यानी उसके लिए कोई काम करता है ना तो समझिए बहुत ही बड़ा वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसी ही थी बीरूबाला जी।
0: बीरूबाला जी की आज हम बात कर रहे हैं। तो बीरूबाला राभा जो है असम की एक महान समाज सेविका और मानवाधिकार कार्यकर्ता थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं के खिलाफ प्रचलित बहुत सी कुप्रथाओं, अंधविश्वास और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सामाजिक अत्याचारों को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था।
1: बिल्कुल। और जिस समाज में किसी महिला को दुर्भाग्य या बीमारी का कारण बताकर प्रताड़ित किया जाता था वहां बीरूबाला ने साहसपूर्वक लोगों को जागरूक किया और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने का प्रयास किया।
0: हाँ बिल्कुल। उनका जन्म 1954 में असम के गोलपाड़ा जिले के ठाकुरविला गाँव में हुआ था और उनका संबंध जो है राभा जनजाति समुदाय से था। तो उनका बचपन जो है आर्थिक कठिनाइयों के बीच में बीता। जब वो लगभग 6 वर्ष की थी तभी उनके पिता का निधन भी हो गया था।

0: एक स्थानीय झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति ने बीमारी को अलौकिक शक्तियों से जोड़कर भय पैदा कर दिया और उनकी और उस बच्चे के जीवित रहने को लेकर भी निराधार भविष्यवाणी की थी उसने।
1: ओहो, फिर?
0: और फिर उसके बाद बेटे की, लेकिन उन्होंने इस बात को माना नहीं और उसका इलाज करवाती रही वो। तो इस भविष्यवाणी के जब के बेटे के ठीक होने के बाद जब वो ठीक हो गया अपने दवाइयों को लेकर के, तो बीरूबाला ने महसूस किया कि अंधविश्वास और झूठे दावों के कारण लोगों को कितना नुकसान पहुंच सकता है कि लोग इलाज कराने के बजाय झाड़ फूको इन सब चीजों में लगे रहते हैं। तो यही घटना उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुई और उन्होंने तय किया कि वो लोगों को अंधविश्वास से मुक्त करने और ऐसी मान्यताओं के कारण प्रताड़ित होने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए वो काम करेंगी।
1: बहुत बड़ी बात। अक्सर लोग जो है इसी में लगे रहते हैं कि किसी तरह की जो है अंधविश्वास और कुरीतियों की बातों में आ जाते हैं और जान भी गंवा देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो असम में कुछ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कुप्रथा के नाम पर महिलाओं को बीमारी, मृत्यु या फसल खराब होने या उनके अन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए दोषी ठहराया जाता था। तो ऐसी महिलाओं को सामाजिक बहिष्कार और धमकियां और हिंसा का सामना भी करना पड़ता था। आरती,
0: बिल्कुल, बहुत वो उस समय का जो समाज था बहुत रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और बीरूबाला ने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को समझाया कि किसी बीमारी या दुर्भाग्य के लिए किसी महिला को जादू टोने का दोषी ठहराना गलत है और बीमारियों के लिए वैज्ञानिक सोच और उचित चिकित्सा की जरूरत है, न कि अंधविश्वास की।
0: बिल्कुल। और उनका संघर्ष आसान नहीं था क्योंकि लोगों की सोच बदलना बहुत मुश्किल होता है। कोई चीज को आप चीजों को बदल सकते हैं लेकिन लोगों की सोच नहीं बदल सकते,
1: बदली जा सकती।
0: तो बहुत ही मुश्किल था उनका संघर्ष। उन्हें सामाजिक विरोध, अपमान और धमकियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें भी कुप्रथा का नाम देने की कोशिश करी, उस कुप्रथा का नाम देने की कोशिश करी उनको, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य से समझौता नहीं किया। वो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करती रहीं और संकट में फंसी महिलाओं की मदद करती रहीं।
1: बीरूबाला ने अपने गांव में महिलाओं को संगठित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और मिशन बीरूबाला नाम के संगठन की एक शुरुआत भी कर दी। और इस संगठन में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, वकील और पीड़ित महिलाओं की भागीदारी रही। और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? महिलाओं के प्रति कुप्रथा और अंधविश्वास के विरुद्ध जन जागरण जगाना।
0: बिल्कुल। और झूठे आरोपों से पीड़ित महिलाओं की सहायता करना, जरूरतमंद महिलाओं को सुरक्षा और न्याय दिलाने का प्रयास करना, गांव में वैज्ञानिक सोच और मानवाधिकार के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का साहस देना, उनके प्रयासों से अनेक महिलाओं को सहायता मिली और समाज के अन्य लोग भी इस अभियान से जुड़े जिनकी वो सोच बदलने में कामयाब हो गई थी, तो उन्होंने भी इससे जुड़ना स्वीकार किया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और बीरूबाला राभा ने संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक जो डायन कुप्रथा के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को मजबूत करने में योगदान दिया। कैसी कैसी कुप्रथाएं थी।
0: बिल्कुल।
1: और स्त्रियों को कितने अत्याचार सहने पड़ते थे आरती। और 2015 में असम सरकार ने असम विद हंटिंग जो है एक्ट जो है पारित कर दिया था।
0: बिल्कुल। जो ये विच हंटिंग का प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन जो एक्ट जो था ना, बहुत मील का एक पत्थर माना जाता है। बिल्कुल। उसकी वजह से बहुत सारी चीजों में महिलाओं को बचाव मिला कि जो उस समय उनको जान से कभी कभी हिंसा का भी सामना करना पड़ता था। और इस कानून का उद्देश्य किसी को भी डैन बताकर कुछ कुप्रथा का नाम देकर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने, बदनाम करने और उसके विरुद्ध हिंसा करने जैसी गतिविधियों को रोकना था, इस कानून का काम। और ये कानून वर्ष 2018 में लागू हो गया और बीरूबाला और उनके सहयोगियों के लंबे अभियान ने इस सामाजिक समस्या को सार्वजनिक चर्चा और कानूनी सुधार के केंद्र में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1: बिल्कुल सही कहा। जब कोई कानून आ जाता है तो उससे बहुत ज्यादा जो है फायदे जो हमें दिखते हैं वो दिखने लगे उस दौरान। और उनकी प्रमुख सम्मान और उपलब्धियों की अगर हम बात करते हैं तो 2015 में उनके सामाजिक योगदान के लिए गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। साथ ही उनके कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी मिली।
0: और वर्ष 2018 में उन्हें विमेन वर्ल्ड समिट फाउंडेशन का सम्मान मिला। 2005 में महिलाओं के अधिकार और अंधविश्वास के विरुद्ध उनके संघर्ष को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क नामक महिला संगठन ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित भी किया था, नामांकित किया। और इन सब के साथ भारत सरकार ने उन्हें सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया।
1: क्या बात।
0: और फिर 13 मई 2024 को गुवाहाटी असम में लंबे समय तक वो बीमार पड़ गई थी और बीमार रहने के बाद उनका निधन हो गया। और उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए केवल उच्च शिक्षा या आर्थिक शक्ति आवश्यक नहीं होती है, संवेदना, साहस और दृढ़ संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है।
1: सबसे बड़ी बात कि उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं की थी और आर्थिक रूप से भी वो मजबूत नहीं थी। ग्रामीण किसान के परिवार में वो उनका विवाह हुआ था लेकिन उनमें संवेदनाएं थी, साहस था और दृढ़ संकल्प की जो शक्ति थी उसने उन्हें पद्मश्री तक पहुंचा।

0: हाँ मंदाकिनी जी, अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ लोकोक्तियों की जो ग्रामीण अंचल में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं।
1: अच्छा, हमारे श्रोताओं ने लिखी
0: बहुत सारी भेजी हैं, बहुत सारी उन्होंने एकदम भर भर के भेजी हैं।
1: अच्छा।
0: तो हम लेते हैं श्रोता उनका लेते हैं कमेंट। तो लिखते हैं कि ग्रामीण अंचल में रची बसी लोकोक्तियां बड़ी ही बेमिसाल हैं, और यहाँ हमारे यहाँ तो डांडिया नृत्य का पंडाल लगा हुआ है। जैसे कि एक है, उन्होंने लिखा है, एक है बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज, मतलब इस तरीके की जो रहती है लोकोक्तियां वो है। और एक मारवाड़ी कहावत है, एक हमारे जो श्रोता है लिखते हैं कि जीना रा मर जा बादशाह रुलाता फिरे बजीर, अर्थात जब घर का मुखिया का ध्यान तो जाए तो परिवार बिखर जाता है, मतलब इसका ये कहना है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि मालवी भाषा में कहावतों को केवाड़ा या ओखाड़ा कहते हैं। मालवा क्षेत्र के लोक साहित्य और आम बोलचाल में इन केवाड़ों का बहुत बड़ा और समृद्ध भंडार है। मालवी केवाड़ा के कुछ उन्होंने उदाहरण दिए, जैसे कि आंदा के आगे रोणो ने अपना दीदा खोना, यानी किसी संवेदनहीन व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोकर समय बर्बाद करना।
0: अच्छा।
1: है ना। एक लिखते हैं, आंदो उठे ने घर का ने कूटे, अपनी परेशानी में अपने करीबियों या स्वजनों को जो तंग करता है और

0: बांधो कुकड़ो घट्टी दोरो, किसी एक ही जिद या काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना और एक लकड़ी के दो बटका यानी आपस में फूट पड़ना या परिवार का विभाजन हो जाना।
1: अच्छा, तो काफी मतलब अनसुनी, ये सुनी भी नहीं है,
0: ये हमने नहीं सुनी है। वाकई आपने बहुत अच्छी लोकोक्तियों को हमारे सामने रखा है, क्योंकि हम ये तो कुछ चीजें तो हमारे यहाँ बोली जाती है, लेकिन आपने जो अभी कहावतें लिखी है वो शायद हमने नहीं सुनी है, है ना?
1: जी, तो हमारे एक और साथी है जो लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी लोकोक्तियां बोली जाती है, लेकिन ये लोकोक्ति बहुत प्रचलित है। चैत मीठी चीमरी, बैसाख मीठो मट्ठा, जेठ मीठी डोबरी, आषाढ़ मीठो डटा। इसका अर्थ है कि चैत में ककड़ी यानी चिमरी, बैसाख में मठा यानी कि छाछ, और छाछ जेठ में महुए की डोबरी और आषाढ़ में महुए का लाटा सबसे मीठा और उत्तम लगता है। बिल्कुल ही अनसुनी ये भी दिया ना।
0: वही चौथा लिखते हैं कि ग्रामीण लोकोक्तियां केवल कहने सुनने की बातें नहीं है, बल्कि पीढ़ियों के अनुभवों का सार है। इनके माध्यम से बुजुर्ग बिना लंबा उपदेश दिए बच्चों को जीवन की बड़ी सीख दे देते हैं, और इनमें हास्य भी है, व्यंग्य भी है, सीख भी है, और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की सीख भी होती है। बहुत सी मशहूर लोकोक्ति इन्होंने लिखा है, गई भैंस पानी में, यानी किसी काम का बिगड़ जाना या मेहनत पर पानी फिर जाना, और ऊंट के मुंह में जीरा अपन कहते हैं ना, और घर का भेदी लंका ढाए, और दूर के ढोल सुहावणे, अदजल गगरी छलकत जाए। ये सारी कविताएं जो लोकोक्तियां हैं वो इन्होंने बताई हैं।
1: बिल्कुल, एक हमारे और श्रोता जो लिखते हैं कि अगर गुजरात की बात करें तो उतावले आंबा न पाके, आंबा मतलब आम के पेड़ पर समय आने पर ही आम पकते हैं, ना बोलवा मना गुड़, मतलब चुप रहने में ही नौ गुड़ समाये हैं, और जाजा हाथ रलिया मणा, मतलब मिलजुल कर काम करने से काम जो है वो आसान और झड़पी होते नहीं तुरंत होता है, और टीपे टीपे सरोवर भराए, मतलब बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और वही एक श्रोता लिखते हैं कि ग्रामीण अंचल में बसी लोकोक्तियां अलग अलग प्रदेश की जीवन शैली से जुड़ी होती हैं। अगर गुजरात की बात करें तो उतावले आंबा न पाके, जैसा अभी आपने पढ़ के बताया था, तो ये बड़ी अच्छी इन्होंने लिखी है लोकोक्ति। और देखिए हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं,
1: और साथ ही हमें एक श्रोता जो लिखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोकोक्तियां होती हैं ये उनके यहाँ तो मतलब जो होती हैं, लेकिन जहाँ शहरी लोग हैं वो भी उनका बहुत बहुत उपयोग करते हैं, वो तो करते ही गाँव वाले, और वो इतनी अच्छी और चीजों को सिखाने वाली होती है कि उसका उपयोग करने के बाद हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, और बहुत सी चीजों को हम कम शब्दों में कहना सीख जाते हैं, और शब्दकोश भी होती है ये जिससे शब्दों का भंडार हमें मिलता है, तुम्हें बताया कि कैसे कैसे उसका उपयोग होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आगे नाथ जानवरों के मुंह में लगाए जाने वाली जो रस्सी है, न पीछे पगा से गाय बैल को बांधा जाने वाली रस्सी, ये आज भी गांव के घरों में उपयोग होता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि घर परिवार की जिम्मेदारियों से स्वतंत्र हैं या परिवार में इनका कोई नहीं है, यानी आगे नाथ और न पीछे पगा, इनके परिवार में कोई है, कोई नहीं है, ये अकेले हैं, इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसका अर्थ ये होता है। बिल्कुल नई लोकोक्ति है ये हमारे लिए।
1: और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि गांव के चौपालों और रोजमर्रा की बातचीत में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है इन लोकोक्तियों का, और खेती किसानी और मौसम से जुड़ी हुई ये कहावतें हैं, ये लोकोक्ति हैं कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान, कृषि को सबसे उत्तम कार्य, व्यापार को मध्यम, और नौकरी को अधम या सबसे पीछे माना गया है, और इस लोकोक्ति के अनुसार। और अब पछताए होश का जब चिड़िया चुग गई खेत, घाघ ग्रामीण जीवन में मौसम और कृषि को लेकर काफी कवि घाघ की कहावतें बहुत रची बसी हैं। जब बरसेगा उत्तरा नाज न पावे कुत्रा, यदि उत्तर में नक्षत्र में बारिश हो, उत्तर नक्षत्र में बारिश हो तो अनाज इतना होता है कि मतलब कुत्ते में लेकिन जानवर भी नहीं खा पाते हैं, और भैंस के आगे बीन बजाय भैंस खड़ी पगुरा, ये तो सभी जानते हैं।
0: तो बहुत अच्छी कहावतें हमारे लोकोक्तियां जो हैं, हमारे श्रोताओं ने हमें उन नई लोकोक्तियों से परिचित करवाया है जिनका प्रयोग हम कम से कम शहरों में नहीं करते
1: हैं।
0: तो अब एक गीत सुन लिया जाए,
1: सुनते हैं।

0: भाई कोई माने या ना माने, आरती तुम्हारी त्वचा तो बहुत ही चमकदार लगती है मुझे।
1: जी, तो हम बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, बहुत सारे हमारे लिए नुस्खे लेकर आए हैं घरेलू, तो हम ले लेते हैं उनको। हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि कच्चे दूध में शहद मिलाकर लगाना, इससे भी त्वचा में निखार आता है। और मसूर की दाल को दूध में भिगाकर और इसको पीसकर पेस्ट कर पर चेहरे पर मास्क की तरह लगाएं तो उसे बहुत फायदा मिलता है। और बहुत सही लिखा है इन्होंने, ऐसा मैंने आजमाया भी, बहुत अच्छा नुस्खा है उनका।
0: अच्छा,
1: तो गरबा में बिल्कुल आप ही आप दिखाई देंगे, मन रख लीजिए।
0: तो मैं भी आज इस नुस्खे को
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: गरबा में जाकर नृत्य करती हूँ। और वही एक श्रोता लिखते है कि एलोवेरा जेल जो है, ताजे एलोवेरा के पत्ते से जेल निकालकर सीधे चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें, त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है और नई कोशिकाओं के विकास को भी बढ़ा देता है। और बेसन और हल्दी का पैक भी लगा सकते हैं, बेसन चुटकी भर, हल्दी, थोड़ा सा गुलाब जल या दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगाकर सामान्य पानी से धो लें, और ये नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है। लेकिन हल्दी को लगाने के बाद क्या है, हमें थोड़ा धूप में कम जाना चाहिए।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमारे जो साथी लिखते हैं कि एक चम्मच फिल्टर कॉफी, एक चम्मच दही में 2-3 बूंदे नींबू के रस की डालकर अच्छी तरीके से मिला लीजिए। इस पेस्ट को चेहरे पर, गर्दन पर लगाइए, थोड़ा सा सूखने पर हाथों से मसाज करें और पानी से धो लें, त्वचा साफ सुथरी हो जाएगी। और साथ में एक और दूसरे श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मुल्तानी मिट्टी जो बहुत ही ज्यादा बहुत ही अच्छी होती है, मुल्तानी मिट्टी हल्दी, दूध, दही, बेसन, नींबू, पपीता, संतरे के छिलके त्वचा के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इनसे कई तरह के उपटन बनाए जाते हैं, फेस पैक बनाए जाते हैं। तो इन्होंने बालों के लिए भी बता दिया कि रीठा, शिकाकाई और आंवला बहुत लाभदायक होता है। बहुत अच्छे अच्छे टिप्स लेकर भेजे,
0: बहुत अच्छी बात है। तो सभी को हम शुक्रिया कहते हैं और एक आखिरी गीत और सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल, सुनते हैं गीत।

0: तो
1: दिल दे के देखो मैं दिल तो दिया हुआ है हमने, मंदाकिनी जी को भी दे रखा है और साथ ही अपने सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को, सखाओं को दे रखा है
0: बिल्कुल, और तुम्हारा दिल भी हमारे पास है
1: बिल्कुल
0: जी। तो अब इन्हीं बातों के साथ जो है कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग और संगीत की मिठास घुली होगी, है ना? तो आइए आज फिर सजाते हैं गीतों की ये महफिल आपकी बातों और आपकी पसंद के साथ। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: मैं जिला रामपुर तहसील स्वार ग्राम समोदिया यूपी उत्तर प्रदेश से इलियास पाशा बात कर रहा हूँ। मैम आपसे तो मेरी पहली बार बात हो रही है। मैम आपकी आवाज बहुत प्यारी लगती है, आपका प्रोग्राम पेश करने का अंदाज बहुत बेहतरीन है। मैम
0: आपका सुनने का अंदाज भी बेहतरीन होगा तभी आपको हमारा प्रोग्राम बेहतरीन लगता है ना?
1: जी मैम, काफी दिनों से ट्राई कर रहा, काफी दिनों में फोन लगा मेरा, कम से कम 2 साल में आपको लगा। आपकी आवाज सुनते हैं घर में, बच्चे सुनते हैं, मैडम सुनती हैं, अम्मी सुनती हैं, तो बहुत खुश होती है कि मैम की आवाज में मिठास बहुत है।
0: आपके सुनने में भी मिठास होगी। और बताइए क्या करते हैं आप?
1: मैम यहाँ समोदिया चौराहे पर हमारी चावलों की दुकान है, हम हर वैरायटी का चावल बेचते हैं। मैम
0: तो बताइए आपकी दुकान में कौन कौन सी वैरायटी के चावल?

0: हैं।
1: मैम हमारे पास हर वैरायटी का चावल है, बासमती है, 1121 है, 1509 है, 26 है, सरबती है, बहुत सारी वैरायटी आती है मैम, एक दो नहीं है, कम से कम 15-20 वैरायटी का चावल बेचते हैं मैम।
0: फिर तो आपकी दुकान बहुत फेमस होगी।
1: जी बिल्कुल मैम, इस महीने में तो ज्यादातर बहुत बिक्री होती है क्योंकि मुस्लिम धर्म के तरह से 11वीं शरीफ होती है हुजूर गौस आजम के नाम की, तो ज्यादा बिक्री होती है मैम।
0: अच्छी बात है, वो हर जगह ये होता है कि हम अपने अपने त्योहार मनाते हैं और खास पकवान बनते हैं, तो लगता है कि भाई कहीं चावल है कहीं गेहूं है।
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा इलिया जी, ये बताइए कि जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर बड़ी खुशियों का इंतजार करते हैं, है ना, लेकिन क्या
1: जी।
0: आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ऐसी छोटी सी बात होती है जो हर दिन आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है?
1: जी जी मैम, अगर जैसे हमारा थोड़ा बहुत मूड खराब होता है ना, आकाशवाणी विविध भारती सुनते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है मैम।
0: अरे वाह, तो आपने अपनी थकान मिटाने का तरीका विविध भारती में चुना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत अच्छी बात है। चलिए आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
1: फिल्म का नाम है प्रेम रोग और गीत केवल है मेरी किस्मत में तू नहीं, शायद क्यों तेरा इंतजार करना।

0: ये फौज के बारे में मोटिवेशन इतना कुछ नहीं था, एक
1: जी
0: जमींदार फैमिली से
1: जी
0: होने के नाते कॉलेज से भागकर,
1: अच्छा,
0: फर्स्ट
1: फिर
0: ईयर कॉलेज से
1: कॉलेज।
0: भागकर हम आर्मी के अंदर ज्वाइन किया।
1: जी
0: और अपना मोटिवेशन यही था कि हम आर्मी के अंदर
1: जी
0: किस प्रकार से नौकरी करें।
1: जी सर, आप एक जमींदार, एक किसान परिवार से आते हैं, आपके पिताजी किसान थे, तो आपका किस तरीके से वो परिवेश रहा, और अचानक फिर ऐसे आपके दिल में जो जज्बा आया फौज ज्वाइन करने के लिए, फौज में भर्ती होने के लिए, तो ये कहाँ से मोटिवेशन, जैसे आपने बताया कि हमने
0: ये
1: इस तरह
0: बहुत
1: से।
0: ही एक अजीब सी बात है कि
1: जी
0: ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इतनी जल्दी नौकरी करूं।
1: अच्छा
0: बट जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ी

0: रहा था गवर्नमेंट स्कूल गढ़ी आश्रू में,
1: जी
0: उस समय मेरा इंगेजमेंट हो गया
1: अच्छा
0: और इंगेजमेंट से डर के शादी नहीं करें
1: अच्छा।
0: अभी, कॉलेज से भाग करके और बगैर बताए पेरेंट्स को हमने आर्मी ज्वाइन कर ली।
1: अरे वाह।
0: और आर्मी ज्वाइन करने के बाद जब पता पड़ा हमारे पिताजी को कि
1: जी,
0: हम
1: तो बहुत
0: फौज में जा
1: नाराज
0: रहे हैं तो पूरा परिवार बहुत नाराज था
1: जी।
0: और पिताजी ने आकर के काफी कुछ कोशिश की, क्योंकि जो मेरी वाइफ जो शिक्षा भारद्वाज
1: जी
0: जो अभी नहीं है
1: जी।
0: वो उनके ताऊ जी वहां पे हेड क्लर्क पोस्टेड थे
1: अच्छा
0: सोल्जर बोर्ड में, और गुड़गांव में जब मैं भर्ती हुआ
1: जी
0: तो मेरे फादर जो है वो उनके ताऊ जी के पास पहुंच गए और मेरी कंप्लेंट की कि भर्ती होके जा रहा है, इसकी शादी वगैरह अरेंज कर रहे थे तो इसको रोको। तो
1: अच्छा।
0: मैंने बड़े रौब से बगैर ज्यादा कुछ बोलते हुए अपने
1: जी
0: फादर का बहुत रिस्पेक्ट करता था और
1: जी
0: गर्दन नीचे करके और अपने जो वुड बी फादर इन लॉ को भी ये बोल दिया कि जी फौज में जाना मेरे को अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू गो एंड ज्वाइन द आर्मी ओनली।
1: जी तो
0: तो
1: आप
0: मैं
1: डिटरमिन्ड रहे, आप मजबूत रहे कि मुझे तो आर्मी ज्वाइन करनी ही है।
0: एक्चुअली ये था कि टेंथ करके अगर कॉलेज में आगे नहीं पढ़ना है
1: जी
0: और जोश था कि आर्मी ज्वाइन करें,
1: जी
0: क्योंकि आर्मी उस टाइम पे नंबर वन प्रोफेशन होता था आज के जमाने को ना कहते हुए,
1: जी
0: एंड आई हैड द इंसिस्टिंग टू माई सेल्फ इन दैट फीलिंग
1: जी
0: कि इससे बढ़िया नौकरी कुछ नहीं हो सकती।
1: अच्छा सर, वो कौन सा साल था जब आपने ज्वाइन किया?
0: इट वॉज 1961 या, एंड आई वॉज पोस्टेड रादर फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर,
1: अच्छा
0: और वहां पे इतना ज्यादा तगड़ा हुआ
1: अच्छा
0: और जो मेरे वुड बी फादर इन लॉ थे उसने जाते समय वार्निंग दे दी थी कि अगर जा ही रहे हो बगैर हमारे बताए मर्जी के
1: जी
0: तो वहां जाकर के फिर ये मत बोलना कि आप हमारा नाम कटवा
1: अच्छा
0: दो।
1: अच्छा अच्छा मतलब ऐसा नहीं कि आप पीछे हट जाएं।
0: और जिस काम से मैं भागा था
1: जी
0: जिससे शादी ना करने के डिले
1: जी
0: करने की शादी से भागा था, जब मैं रिक्रूट की ट्रेनिंग कर रहा था
1: जी
0: तो मेरे को 10 दिन की छुट्टी बुला करके और मेरी शादी भी हो गई।
1: अच्छा
0: व्हेन शी वाज 14 इयर्स एंड आई वाज 18 इयर्स ओनली।
1: ओके
0: बिकॉज आई ज्वाइंट द आर्मी व्हेन माय एज वाज ओनली 17 इयर्स 216 डेज।
1: अच्छा आप पूरे 18 के भी तब तक नहीं हुए थे
0: जी,
1: और आपने अपनी सर्विस जो है नेशन के लिए, आर्मी के लिए, फोर्स के लिए देना शुरू कर दिया था।
0: जी
1: जी तो सर, शुरुआत किस तरह से हुई? आप इन्फेंट्री में रहे, राजपूताना राइफल्स में रहे, तो यही शुरुआत थी या इससे पहले भी आपने किसी और जगह भी काम किया आर्मी में?
0: एक्चुअली जब सिग्नल्स के अंदर हम जवान थे
1: जी,
0: तो वहां हमारी पोस्टिंग हो गई ट्रेनिंग वगैरह खत्म करने के बाद में।
1: अच्छा।
0: जालंधर,
1: ठीक,
0: जालंधर अलायंस कोर सिग्नल रेजिमेंट, उसके अंदर पोस्टिंग हो गई। एंड व्हेन आई वाज देयर 1962 का चाइना के साथ वार
1: अच्छा,
0: हुआ,
1: जी जी,
0: सो दैट टाइम हम जवान थे।
1: अच्छा।
0: तो पूरी रेजिमेंट के अंदर काफी तहलका मचा हुआ था और हम एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग जवान बन गए थे वहां पे। और 62 का ऑपरेशन के बाद में
1: जी
0: इमरजेंसी कमीशन स्टार्ट हुआ।
1: अच्छा।
0: तो इमरजेंसी कमीशन के दौरान
1: जी
0: मेरे को स्पेशली एक अच्छा जवान सेलेक्ट करके,
1: अच्छा,
0: और कमांडिंग ऑफिसर के साथ में कुछ एक कैंडिडेट से जिनका इंटरव्यू कैंडिडेट करके, और कर्नल साहब को जो हमारे सीओ थे उस समय
1: जी,
0: उनको स्क्रीन आउट करना था कि इनको हम आगे एसएसबी के लिए रिकमेंड करें।
1: अच्छा।
0: सो वो बड़ा एक अच्छा इंसिडेंट है विच यू वुड लाइक टू नो।
1: जरूर सर, जरूर। हमारे लिसनर्स,
0: मेरे को ये ड्यूटी दी गई कि सबको बारी बारी कमांडिंग ऑफिसर साहब के अंदर ऑफिस में भेजते रहिए और इनके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके एंड डू दैट फुल
1: जी।
0: सो सीओ साहब 1:30 बजे लंच ब्रेक के लिए घर चले गए और जाते समय बोल गए कि मैं 3 बजे वापस आऊंगा और 3 बजे के बाद में बाकी कैंडिडेट्स का हम इंटरव्यू करेंगे।
1: अच्छा।
0: 3 बजे वो सही डॉट 3 PM वापस आ गए तो फर्स्ट कैंडिडेट को हमने बोला कि आप अंदर जाइए, तो वो अंदर गए तो उन्होंने जाते ही अंदर जाते ही बोला गुड मॉर्निंग सर।
1: अच्छा।
0: तो सीओ आस्क्ड हिम कि व्हाट इज द टाइम, 3:05 सर।
1: अच्छा।
0: तो वाई आर यू सी मी गुड मॉर्निंग सर, तो ही सेड के सर वी हैव बीन टोल्ड इन द सिविल इफ यू मीट समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम यू मस्ट विश हिम गुड मॉर्निंग। बोलता इफ देयर इज एनी हार्म इफ यू विश मी गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, बट सर वी हैव बीन टोल्ड द सिविल लाइक दैट। ही पुट अप सम अदर क्वेश्चन टू हिम ऑल्सो, सो ही वॉज नॉट एबल टू रिप्लाई इट प्रॉपरली। Then he called for me.
1: जी.
0: I in turn saluted him and he put up all those questions to me and straightway यही, और कुछ ऐसे सवाल सारे मैं फटाफट जवाब दिया।

0: तो कर्नल साहब ने मेरे को तो चेयर ऑफर कर दिया और उसको बोला थैंक यू.
1: अच्छा,
0: कैरी ऑन.
1: और आपको
0: एंड ही इंसिस्टेड मी और रादर मोटिवेटेड मी, यू ट्राई फॉर कमीशन, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर कमीशन. आई सेड सर आई एम नॉट ग्रेजुएट, आई एम मेट्रिकुलेट ओनली, आई एम नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन टू अप्लाई फॉर द इमरजेंसी
1: क्राइटेरिया.
0: एंड ही टोल्ड मी दैट ओके क्राइटेरिया नहीं है अभी, तो आप ACC अप्लाई करिए, यू अप्लाई फॉर आर्मी कैडेट कॉलेज एंड आई सी दैट यू गेट सिलेक्टेड. And mind you, after that I never looked back.
1: Achha.
0: There were 63 candidates from my regiment, those who appeared for initial Army Cadet College.
1: Jee.
0: All the test and all that. I was the first one to get selected out of three candidates out of 63, jo ke SSB tak pahunche.
1: To ye motivation sir aapko
0: ye motivation, mila. Motivation that way I got motivated.
1: Jee.
0: And after that I never looked back. I had very good career throughout my Army Cadet College, then IMA, and when I passed out from there, you asked me like, how you got into infantry, that to Rajputana Rifle.
1: जी.
0: So on that I just tell you कि वहाँ पे जो मेरे कंपनी कमांडर थे IMA के अंदर, वो राजपूतान राइफल से मेजर शर्मा साहब थे.
1: अच्छा.
0: जो कि वार वेटरन थे और VRC डेकोरेट थे.
1: अच्छा.
0: So I was very outstanding. Mind you, I must be proud of telling you also.
1: बिल्कुल sir.
0: I have played volleyball national level,
1: national
0: and basketball
1: level,
0: step down, and I was good boxer and cross country runner of the top class.
1: क्या बात है.
0: In academy.
1: Volleyball, so, boxing और running.
0: और running.
1: क्या बात है.
0: And volleyball national level
1: national
0: is something
1: level
0: very.
1: Volleyball.
0: So he was so impressed and he wanted me to go to his regiment only.
1: अच्छा.
0: And that's why, where is my CO? That time who got me selected for ACC,
1: he
0: wanted me that I should join signals. But
1: achha.
0: I got into Rajputana Rifles and I was mighty happy to be with the Rajputana Rifles.
1: So sir, aapko zyada maza kis mein aaya? Matlab aapko lagta hai ki Rajputana Rifles hi aapke liye jo hai ek dream tha?
0: Dekhiye, aisa main bataye ki army join karna as a matter of pride.
1: Bilkul.
0: And to become an army officer as a double matter of pride. And if you get into infantry,
1: जी.
0: Nothing like that.
1: Achha.
0: And among infantry, Rajputana Rifles
1: top.
0: Is at top.
1: Achha.
0: And I was very proud of this, that oh, I got into Rajputana Rifles.
1: क्या बात है sir?
0: You know, my elder son is also from Rajputana Rifles.
1: Yes sir.
0: And
1: जी.
0: That boy also, because Rajputana Rifles is one of the very good regiment.
1: जी.
0: And he is the one.
1: जी क्या बात है सर. हम आगे सर आपसे बात करेंगे और हम 62 जैसे आपने बताया, हम 71 की बात करेंगे क्योंकि आप वॉर वेटरन रहे 1971 वॉर के, तो हम उस पर भी बात करेंगे और कुछ आपसे इंटरेस्टिंग कहानियां भी जानना चाहेंगे. तो आगे बढ़ेंगे हम और अपने लिस्टनर से बताना चाहेंगे, आप हमें मैसेज कर सकते हैं. 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप हमारे आज के हमारे खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज जो सेना मेडल सम्मानित हैं और 1971 वॉर वेटरन हैं, उनसे आप सवाल कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं और हमें आप सुन सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर. आप बने रहे हमारे साथ, यह है देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स. आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ.

0: 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और आज हमारे हैं खास मेहमान कर्नल कमर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित 1971 वॉर वेटरन। सर, एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के हमारे इस शो में।
1: वेलकम, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया आज हमारे साथ। आप जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें बता रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही अनोखी भी हैं और बहुत ही खुशी देने वाली भी हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि आपने बचपन से ही किस तरीके से आपके मन में था कि आपको फौज में भर्ती होना है और आपने किसी की परवाह नहीं की और आपने वो मकाम बनाया जो हर इंसान के लिए, सर, मैं समझता हूँ कि आसान नहीं होता, जाहिर है बिना मेहनत के फल नहीं मिलता, तो वही आपने अपनी लाइफ में वो किया, अपने करियर में आपने जो अचीवमेंट्स हासिल की, वो जो मकाम आपने बनाया, तो इसके बारे में आपके कुछ, सर, कुछ शब्द मैं चाहूंगा कि आप कहना चाहेंगे अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं?
1: आई थिंक ऊपर वाले ने जो दिया है
0: जी,
1: जितना हम एक्सपेक्ट करते थे उससे भी बहुत अच्छा मिला है। और जो 71 वॉर के बारे में
0: जी,
1: मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं बड़ा यंग ऑफिसर था एंड आई वाज मेजर रैंक था मेरे पास में
0: जी,
1: आई वाज कमांडिंग वन ऑफ द कंपनी ऑफ 9th बटालियन राजपूतान राइफल
0: जी
1: इन पुंछ सेक्टर,
0: पुंछ सेक्टर में
1: जी।
0: तो सर 1971 वॉर वेटरन हैं आप, तो उसके, सर, हम उस वॉर के बारे में जानना चाहेंगे जिसका आप हिस्सा रहे हैं, तो वो किस तरीके का, सर, दौर था, वो क्या हालात थे और जब वो जंग थी तो उस पर आपका और जो जो नेशन उस वक्त जो देश पर में चल रहा था उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
1: देखिए उस समय जो हालात थी
0: जी,
1: वो

0: मुक्ति वाहिनी वगैरह बहुत पहले से मूवमेंट शुरू हो चुके थे
1: जी
0: ईस्टर्न सेक्टर में, बट नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर पुंछ एरिया स्पेशली उस
1: जी
0: साइड के अंदर कोई ज़्यादा इतनी चहल पहल नहीं थी, लड़ाई की
1: जी
0: तैयारियां नहीं थी, लेकिन लकली वी हैड ए जनरल ड्यू कमांडर मेजर जनरल कुंदन सिंह,
1: जी
0: ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम राजपूत राइफल्स एंड ही हैपन टू बी ए वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग जनरल हु रिटायर्ड एज एम एस लेफ्टिनेंट जनरल. ही वॉज द वन हु पुल्ड अप द कंप्लीट डिवीजन एंड वी वर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी और एनी वॉर टाइप थिंग एट दैट टाइम.
1: जी
0: सो ही वॉज द वन एंड आई वॉज विद द ब्रावो कंपनी कमांडर इन पुंछ सेक्टर वेयर पुंछ इज अदर साइड ऑफ द पुंछ रिवर एंड वी वर द अदर साइड ऑफ द दिस साइड ऑफ द पुंछ रिवर एंड अदर साइड
1: थे
0: हम इस साइड में थे.
1: अच्छा.
0: और पुंछ के थोड़ा सा आगे चलने के बाद में
1: जी
0: पाकिस्तान बॉर्डर स्टार्ट होता है.
1: अच्छा.
0: एंड आई वॉज फेसिंग द पाकिस्तानीज अपोजिट माई पोस्ट अक्रॉस द रिवर पुंछ रिवर.
1: मतलब आमने सामने की
0: आमने सामने थे
1: बिल्कुल.
0: और उनके पास में वहां पे आरसीएल गन लगी हुई थी.
1: अच्छा,
0: और
1: एमएमजी
0: लगी हुई थी.
1: ओके.
0: वो डायरेक्टली हमारे अंडर व्यू थी. दे कुड फायर एट अस एंड वी कुड फायर एट देम.
1: अच्छा, बिल्कुल आमने सामने.
0: आमने सामने
1: लगी हुई थी
0: फ्रॉम दैट टॉप एंड आई हैड यू नो कंपनी वॉज डिप्लॉयड ऑन थ्री पोस्ट.
1: अच्छा.
0: एंड आई वॉज ऑन द मिडिल पोस्ट. फ्रॉम मिडिल पोस्ट जो पहाड़ी का था
1: जी
0: उससे हम पूरी कंपनी को अपना कंट्रोल करते थे.
1: ठीक है.
0: और सामने से फायर वगैरह आते थे. चार
1: अच्छा.
0: तारीख दिसंबर 4th of December
1: जी
0: फायरिंग स्टार्ट हो गया. तो फायरिंग स्टार्ट होने के बाद में पूरी रात हम लगभग लड़ाई लड़ते रहे. और जो ही फायरिंग स्टार्ट हुआ तो माई एक्शन वॉज कि मैंने पूरे जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाना है. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली व्हेन द फायरिंग वॉज गोइंग ऑन आई नेवर बॉदर्ड. फर्स्ट आई वेंट टू अदर पहाड़ी अदर जो कि जहां मेरी पिकेट थी
1: जी
0: ऑलमोस्ट अबाउट किलोमीटर अदर साइड.
1: अच्छा.
0: ऑन द अपहिल ऑफ द माउंटेन.
1: अच्छा.
0: एंड आई मेट ऑल द पर्सनल एंड जवानों का जवानों का हौसला बढ़ाते बढ़ाते. देन आई वेंट टू द अदर पिकेट एंड देन टू माई ओन पिकेट एंड कंप्लीट नाइट आई वॉज एक्टिव विद दैट
1: मीटिंग
0: द पीपल.
1: पूरी रात रही एंड
0: वेन आई
1: वेट करते रहे वेन आई
0: यू नो वी हैव द कमांड पोस्ट.
1: अच्छा.
0: एंड कमांड पोस्ट इज सॉर्ट ऑफ ए वेरी वेरी सॉलिड बंकर फ्रॉम वेयर यू कुड ऑब्जर्व एंड देन डायरेक्ट द फायरिंग एंड अदर थिंग ऑल्सो एंड कमांड योर कंपनी ऑल्सो.
1: बिल्कुल.
0: सो फ्रॉम द कमांड पोस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग इट वॉज गोइंग टू बी डे लाइट आई गॉट आउट फ्रॉम माई कमांड पोस्ट and was going for a pee place
1: ji
0: to a toilet
1: ji
0: and the toilet was you know all temporary
1: ji bilkul
0: tin set tin ke no tarmacated tin hote hain drum usko cut karke ek bade se patthar ke sath mein
1: usko banaya jata hai
0: banaya gaya
1: hai theek hai
0: temporary type
1: ji
0: so I was going to that one so you know bunker to bunker or we have the communication trenches trenches are the you know sort of say about 5.5-6 feet deep.
1: अच्छा.
0: Now through which you can walk.
1: उसके बीच में से आपको गुजर के जाना होता है.
0: चल के जाना होता है
1: जी.
0: सो वेन आई वॉज वॉकिंग टू टॉयलेट एंड देन क्लाइम अप एंड गेट आउट फ्रॉम दैट वन
1: जी
0: दैट टाइम देर वॉज ए साउंड ऑफ ए आरसीएल फायर.
1: अच्छा.
0: वेन द आरसीएल फायर केम तो माई ऑपरेटर वॉज विद मी
1: जी
0: एंड ही वॉज कमिंग आउट विद मी के मेजर साहब कहाँ जा रहे हैं
1: जी.
0: तो वो मेरे साथ जो ही निकला एंड उसने सुना कि अब फायर हो गया आरसीएल
1: जी
0: और इसने मेरा हाथ पकड़ के और पीछे गिरा दिया.
1: अच्छा.
0: और बोला अरे सब बढ़ोगे एंड इन द मीन टाइम द आरसीएल बम हिट दैट टॉयलेट वॉज इट वॉज थ्रोन अप इन पीसेज एंड द बिग द रॉक ओवर देयर इट वॉज ऑल ब्लोन अप एंड वी वर really in danger and it was a good luck of mine.
1: कुछ seconds
0: thank
1: कहीं सिर्फ
0: yes
1: आप मतलब वो जो
0: naturally
1: होने वाला था
0: it would have been entirely different thing. I would have been pieces not sitting in front of you today.
1: बिल्कुल.
0: So that was the one. Then what happened next day early afternoon we got a order that you have to move out.
1: अच्छा.
0: To another battalion. That is Banwat sector and defend a company of other chesik which was in danger which was attacked that night.
1: Acha, to aapko unki madad
0: next night they were to be attacked
1: ji
0: so that

0: one of the FDL behind, that is number, FDLs were numbered at 405, 406.
1: Achha.
0: So 406 was in danger. It was in, okay, encircled by the enemy.
1: Achha.
0: So I was told that your company will go and reinforce that.
1: Reinforce.
0: 405 picket, so G. that you, we could fight back the enemies. So I moved my company before last light
1: G.
0: to the that side towards Punch. We had to Achha. Go across the Punch River.
1: G.
0: Then Punch township is there.
1: G.
0: Pass through that place and they climb up almost about 2,000 square feet, I say.
1: G.
0: And the brigade headquarters was at the Punch River.
1: Achha.
0: Punch headquarter, the brigade one.
1: Ji, ji.
0: So there was a Jhula bridge which was to be crossed.
1: Achha.
0: By we people. The Jhula bridge on Punch was Achha. The one which was a wooden type and you know, it was only for two wheelers.
1: Achha. Or paddle
0: chal ke jaane ke liye.
1: Ji, ji.
0: So I was called by the battalion commander for the briefing. So with my two escort and operators.
1: Ji.
0: We went to the battalion commander and he briefed me that you have to go and do this work. Chesik was the battalion which was deployed that side at 405, 406. And Ji. You have to go and clear the saddle between Black Rock, between these two FDLs.
1: Achha.
0: Okay.
1: Ji.
0: And then join the company which is fighting, which is likely to fight this night.
1: Reinforce karna hai.
0: So after bathing, I got a RCL jeep.
1: Achha.
0: I with my escort and all that got into RCL jeep while moving down towards that bridge.
1: Achha.
0: The traffic was too much because that time there were all convoys loaded with the ammunition, all that artillery convoys. Those were all lined up on the road. Mm-hmm. And my jeep was not able to get through. So I got on my feet
1: with my escort
0: and all that.
1: Achha.
0: And I went around, say, 3 to 5 kilometers walking. When I reached to the Jhula bridge, I found my company was stuck over there. They were all in position.
1: Mm.
0: And firing was going on from both the sides.
1: अच्छा जिस वक्त आप पहुंचे उस वक्त भी ये सब फायरिंग
0: मेरी जो कंपनी थी वो पुंछ रिवर के इस तरफ झूला ब्रिज के इस तरफ अदर
1: झूले के उस तरफ झूला ब्रिज के उस तरफ जी
0: पुंछ के परली तरफ से भी फायर आ रहा था और इधर से ये लोग भी फायर कर रहे थे सो आई हैड टू सबाल्टर्न टू यंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट वार्डने एंड लेफ्टिनेंट मल्होत्रा
1: जी
0: एंड जेसीओज वर देयर कंपनी जैसे से मैंने पूछा कि रंजीत साहब ये फायर क्यों हो रहा है
1: जी
0: रंजीत साहब ये फायर क्यों हो रहा है
1: जी
0: तो उन्होंने बताया सर उधर सामने से फायर आ रहा है मैं क्या फायर क्यों किया बोल सर ऐसा है झूला ब्रिज के ऊपर से 3-4 लोग आए थे
1: अच्छा
0: और जब वो आने लगे उतर रहे थे तो हमने उनको चैलेंज किया तो उन्होंने पासवर्ड नहीं दिया और वो भागने लगे तो भागने लगे तो हमारे जवान ने फायर कर दिया मैंने बोला तुम्हारे को बताया था ऐसे तो हरकत नहीं करना वहां जाके कंपनी को पोजीशन दे देना मैं आके ज्वाइन करूंगा आपको तुमने फायर क्यों खोला बोले सर हमने सोचा एनिमी है तो जवानों ने फायर खोल दिया मैं क्या ऑर्डर किसने दिया बोले साहब मैंने दिया था मैं चलो कोई बात नहीं है देन आई कॉन्टेक्टेड द ब्रिगेड BM
1: अच्छा
0: आई सेड माई कंपनी टू क्रॉस झूला ब्रिज एंड गो टू बनवट सेक्टर टू हेल्प आउट सेसिक एंड हु इज फायरिंग फ्रॉम अदर साइड देयर वॉज 80 कंपनी 80 company, those who are, you know, with the animals, mules and all that. They thought there is an enemy to other side.
1: Achha.
0: And they were firing this, towards us and we were firing that side.
1: जी सर मैं एक चीज यहाँ पर जानना चाहूंगा जब ये सिचुएशन आप देख रहे थे अपने सामने तो क्या फीलिंग्स होती हैं आप फायरिंग के बीच में जब जा रहे हैं दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और वो वॉर का समय है तो क्या वो जो सिचुएशन होती है उसको किस तरह से फेस करते हैं
0: जो फीलिंग होती है जो फीलिंग होती है
1: जी
0: वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है हम तो इतने जोश में होते हैं कि कुछ हमको लगता ही नहीं है हम तो को पता है हम जीतेंगे हम मारेंगे अपने जो भी हमको ऑब्जेक्टिव मिला है जो टास्क मिला है उसको पूरा करेंगे अभी बताता हूँ आगे क्या क्या हुआ तो BM साहब ने बोला और 80 वाले मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपना कंपनी को लेके क्रॉस करिए और आप पहुंचिए जल्दी से सो You know, climb was quite big. When the firing stopped,
1: Achha.
0: I moved my company, crossed the Jhula Bridge, then started climbing up. So climbing up all that, toward the Malhotra platoon.

0: बस लीडिंग एंड वेज वी कम इन सिंगल लाइन
1: अच्छा
0: ट्रैक के ऊपर जैसे पहाड़ों के चढ़ते हैं
1: जी
0: तो सिंगल लाइन पे जा रहे थे. एवरीबॉडी वॉज टायर्ड एंड इट वॉज गोइंग टू बी अर्ली मॉर्निंग बट बिफोर फर्स्ट लाइट आई वॉज टू रीच.
1: पूरी रात को आपको चढ़ाई चढ़नी थी.
0: हाँ बिफोर फर्स्ट लाइट आई वॉज टू डू द ऑपरेशन ऑल्सो दैट वॉज माई टास्क. डे लाइट देन आई वुड बी एबल टू डू द नीडफुल.
1: बिल्कुल. तो क्लाइंबिंग के बाद आपको ऑपरेशन भी अपना शुरू करना
0: कंप्लीट करना था.
1: बिल्कुल.
0: सो वेन वी आर नियरिंग दैट ऑब्जेक्टिव
1: जी
0: बिफोर आई मीन 405
1: जी
0: द 405 वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ चेसिक एंड द सीओ वॉज देयर एंड ऑल द पीपल दोज टेल में जो कंट्रोल करते हैं. तो मेरे को उनको जाके ब्रीफिंग लेना था. उनसे ब्रीफिंग लेने के बाद मेरे को ऑपरेशन करना था. सो टाइम वॉज रनिंग शॉर्ट. तो व्हेन आई फाउंड के आगे से वो बैठ गए सारे
1: जी
0: तो मैंने जाके जवानों से पूछा क्या हुआ. मोल साहब मल्होत्रा साहब आगे बैठ गए. आई कॉट होल्ड ऑफ मल्होत्रा फ्रॉम हिज नेक एंड आई टोल्ड हिम व्हाट्स द रॉन्ग विद यू व्हाई यू स्टॉप्ड. बोले सर टायर्ड. मैं कहा यू गेट बैक एंड आई वॉज द वन टू लीड द कंपनी रीच टू द 405 FDL
1: जी
0: एंड आई मेट द सीओ. सीओ ब्रीफ्ड मी. आई रिक्वेस्टेड सीओ के सर गिव मी टू स्कॉट दोज हु कैन टेल मी के वेयर फ्रॉम वेयर द फायर इज कमिंग
1: जी
0: सो दैट माई जवान्स कैन अटैक दैट वन एंड आई डोंट सफर कैजुअलिटीज.
1: जी
0: सो वेन ही टोल्ड मी दैट ओके मेजर स्वाइन इज द कंपनी कमांडर एंड यू टेक टू जॉन्स फ्रॉम हिम दे विल टेल यू के फ्रॉम वेयर द फायर इज कमिंग. सो वेन आई वेंट टू हिम मेजर स्वाइन सेट नो आई एम ऑलरेडी अंडर द अटैक आई विल नॉट बी एबल टू गिव एनी थिंग. सो आई वॉक बैक टू कमांडिंग ऑफिसर
1: जी
0: ऑफ चेसिक एंड आई सेट सर योर कंपनी कमांडर इज नॉट गिविंग मी स्कॉट. देन ही सेट के द टास्क इज गिवन टू यू. मैं कहा वेल कर्नल सोनसो यू आर टॉकिंग टू द कंपनी कमांडर ऑफ 9th बटालियन ब्रावो कंपनी एंड आई विल सी दैट माय टास्क इज कंप्लीटेड बिफोर द फर्स्ट लाइट एंड आई एम गोइंग. सो हिज एडजुटेंट केम रनिंग विद मी एंड ही आस्क्ड दैट मेजर स्वाइन टू गिव मी स्कॉर्ट एंड आई पुट अप एन अटैक सॉर्ट ऑफ थिंग आई शुड से के वी हैड टू गो डाउन. We had to go down in the what do you call valley,
1: acha,
0: and climb up again, and then there was a black rock. From there, the MMG and LMG of Pakistan, they were firing. There were number of mules; those were killed, and one of the casualty was there. Other people were also injured in that valley.
1: Ji.
0: But before the first light, I was able to climb up, and that the enemy left his. That location,
1: Achha,
0: leaving some ammunition in one of the.
1: They
0: ran away from there.
1: Ji.
0: And I joined Major Punjab and Major Padda over there. And there were 36 Pakistanis, those were killed by that company that night itself. So next morning, we picked up all those dead bodies of them. I had breakfast, a hot breakfast with the Major Punjab and all.
1: Achha.
0: And then next task was given to me to go to help out other company because I was one of the outstanding company commander and outstanding company in the complete division
1: Ji.
0: With my young Jose and all that. And I had stood first in one of the competition which was conducted at the Div level at the Div headquarters at Rajouri. And Achha. The Div commander himself has given this praise to of mine that Bravo Company Commander Major K.S. Kamar Bhardwaj is one of the outstanding officer in this what do that competition training we had in the Div Battle School.
1: जी
0: सो दैट वॉज द रेपुटेशन ऑफ दैट थिंग.
1: बिल्कुल सर. आपकी आपकी वो जोश और जज्बे से भरा हुआ वो जो मोमेंट रहा उसमें आपने इतना बड़ा उसमें जो है कॉन्ट्रीब्यूशन दिया रोल प्ले किया तो वो वाकई यादगार है. और जैसे कि आपने बताया कि वो आपकी यादों में जुड़ा हुआ है हमेशा के लिए और वो आपके कहीं ना कहीं मस्तिष्क में हमेशा के लिए वो जुड़ा हुआ
0: जो
1: है.
0: अभी आप बात कर रहे हैं अभी वैसा जोश आ रहा है अभी भी मैं उसी लड़ाई उसी पहाड़ और उसी ब्लैक रॉक जिसको मैंने जाके कैप्चर किया
1: कैप्चर किया
0: और वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि सामने अभी मैं फिर से
1: सर
0: जवान हो जाओ।
1: आप उन यादों में पहुंच गए और मैं आपके साथ उन यादों के साथ ही वहां पर पहुंच गया आपकी बातों में। कि मुझे महसूस हो रहा था कि मैं वहीं आपके साथ पीछे पीछे चल रहा हूं आपकी बातों में और आपकी यादों में जहां आप वॉर फ्रंट पर

0: ऑन द डे वन
1: जी
0: फिजिकल साइड हैड बीन माई द बेस्ट आई से माई स्ट्रेंथ एंड देन माई मोटिवेशन माई एम एंड डिटर्मिनेशन ऑल दोज थिंग्स टूडे आई कैन से अगेन दैट आई सेल्फ मेड मैन इज इन फ्रंट ऑफ यू ठीक है फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ऑफ ए फार्मर फैमिली एट माई ओन विदाउट एनी सिफारिश और विदाउट एनी रिकमेंडेशन और ब्राइब और एनी थिंग आई वॉज द वन टू डू ऑल दिस थिंग
1: बिल्कुल आपने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरुआत की और आपने जो अचीवमेंट हासिल करी वो आपकी अपनी अर्न की हुई है अपनी मेहनत से आपने वो जो एक मकाम हासिल किया
0: यू विल बी प्राउड टू टेल यू दैट मैंने जब बटालियन में कदम रखा
1: जी
0: तो अपने आप को बटालियन में किसी जवान से कम नहीं समझा मेरे फिजिकल में इतना दम था कि जवान भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते ऑफिसर की तो बात ही छोड़ दी
1: क्या बात है सर
0: और मैंने जब बटालियन जामनगर आ गई तो उस समय मैंने बटालियन में बॉक्सिंग टीम रेज की वॉलीबॉल टीम रेज की और वो वॉलीबॉल नेशनल लेवल के प्लेयर बनाए और जो बॉक्सर सेलेक्ट किए थे उसमें फर्स्ट टाइम 4 बॉक्सर कमांड लेवल तक बॉक्सिंग किया एंड माई क्रॉस कंट्री रनिंग और दे लॉट ऑफ अदर कंपटीशन आई यूज टू कैरी इवन द हैवी लोड ऑफ आरसीएल और
1: आरसीएल सर बहुत भारी
0: उसको कैरी करना पड़ता है एमएमजी कैरी करनी पड़ती है 3 पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं
1: अच्छा उसको
0: तो उसको लेकर के हमको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो ऐसे लंबी दौड़े लगानी पड़ती है
1: अच्छा
0: सो आई यूज टू बी लीडिंग अमंग द जवान्स ऑल्सो विद ऑल दोट एंड माई सीओ एंड माई टू आई सी एंड माई बटालियन यूज टू कॉल मी रनिंग हॉर्स
1: क्या बात है सर
0: सो दैट वॉज
1: जी
0: एंड माइंड यू दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो मैरिड एंड फादर ऑफ वन डॉटर देन सन वॉज ऑल्सो बॉर्न देयर ओनली जामनगर
1: क्या बात है सर
0: कर्नल आफ्टर दैट आई हैड गॉन टू द वॉर
1: जी कर्नल कमर भारद्वाज की बात सुनकर के हम भी जोश से पूरी तरीके से भर गए हैं और यहां पर मैं जरूर कर्नल कमर भारद्वाज जो सेना मेडल सम्मानित हैं 1971 वॉर वेटरन है हमारे साथ मौजूद है संदेश टू सोल्जर्स में उनको सर मैं आपको ये गाना डेडिकेट करना चाहता हूं जो आपकी पसंद से मैंने गाया था ब्यूटीफुल ट्रैक घर से निकलते ही आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर शाहिद के साथ आप हमें संदेश टू सोल्जर्स में कर्नल कंवर भरद्वाज से आप बात कर सकते हैं सवाल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107007 पर और जो मैसेजेस सर आ चुके हैं मैं उनको आपको पढ़कर सुनाऊंगा इस गाने के बाद

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और आज के हमारे खास मेहमान हैं आज के शो में कर्नल कंवर भारद्वाज सेना मेडल से सम्मानित वॉर वेटरन हमारे साथ आज मौजूद हैं और हम उनकी कहानी सुनकर के खुद भी जोश से अपने आप को भरपूर महसूस कर रहे हैं। सर यहां पर मैं आपसे जो भी अभी अब तक मैंने बात की आपके बारे में बात की लेकिन सर एक ऐसी एक शहीद की बात भी मैं यहां पर करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी देश के लिए बलिदान दिया जान की आहुति दी और वो थे कैप्टन उमंग भारद्वाज आपके सुपुत्र जिनको उनके साथी प्यार से टाइगर बुलाया करते थे। तीन सक्सेसफुल ऑपरेशंस उन्होंने किए जिन तीन ऑपरेशंस में उन्होंने 15 ड्रेडेड टेररिस्ट को मार गिराया था। उसके बाद चौथा ऑपरेशन था वो एम्बुश था 18 और 19 नवंबर 2002 की मिडिल नाइट में। उस दौरान सर 6 टेररिस्ट मार गिराए गए जिनमें से 2 को अकेले उमंग भारद्वाज ने ही मौत के घाट उतारा और सर उसी ऑपरेशन के दौरान उन्होंने बलिदान दिया शहीद हुए वो और उनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी नवाजा गया था। सर वो मोमेंट था एक प्राउड मोमेंट भी था लेकिन बहुत ही यंग एज थी उनकी जब उन्होंने शहादत पाई और टेररिस्ट का मुकाबला करते हुए उनको मार गिराया और अपनी भी जान की आहुति दी देश के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर कैसे याद करते हैं आप?
1: ओह माय गॉड कैसे याद करते हैं। जैसे उसका नाम था ना उमंग
0: जी
1: ही वाज ऑलवेज ए लाइव वायर आई टेल यू हे मेरे लाइफ का वो इतना चाहता बेटा था
0: जी।
1: ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड ही वाज माय बेस्ट गाइड ही वाज माय बेस्ट फादर एडवाइजर व्हाट सो यू कॉल बिकॉज इट हैपेंड सो कि वो बड़े भाई से 7 साल छोटा था।
0: अच्छा
1: जो उस समय मेजर थे और एनएसजी में इंस्ट्रक्टर थे मेजर राजेश भारद्वाज
0: जी
1: और सबसे बड़ी विशिष्टता जो है उनकी वो डॉक्टर सविता है।
0: अच्छा
1: सो उमंग वाज फुल ऑफ जोश ऑल द टाइम एंड वी नेवर वांटेड टू सेंड हिम टू आर्मी बट ही गॉट सिलेक्टेड इन रिटर्न एंड देन ही वाज टू गो फॉर एसएसबी दैट टाइम आल्सो माई सेल्फ और मेरी और उसकी मम्मी शिक्षा भारद्वाज ने काफी कोशिश की है कि हम इसको नहीं भेजें बट उसने हमारे को परस्यू करके और उस लाइन पे ले आए कि नहीं मेरे को फौज में जाना है और मैं पहले जाता हूँ एसएसबी में अभी हम क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे देखते हैं कितना दम है हमारे अंदर। तो वहाँ एसएसबी में गया एंड ही गॉट सिलेक्टेड बिकॉज पहले तो बोला था मैं ठीक है 5 साल के लेगा जाएंगे तो शॉर्ट सर्विस में चले जाएंगे and he got in merit and he got regular
0: जी
1: to join CSD IIM में join करके।
0: अच्छा
1: तो कमांड डिफेंस सर्विस ज्वाइन क्लियर करके
0: जी
1: और SSB वगैरह क्लियर करके IIM से पास आउट हो गया। दैट टाइम आई ट्राई टू गेट हिम इन द ASC और AOC।
0: अच्छा
1: सो दैट टाइम आई वेंट टू आर्मी हेडक्वार्टर one of the officer over there with my friend I had gone to him and I said ki bhai beta pass ho raha hai to major hudda was there
0: ji
1: he said ki sir usko hum armored core to aur mechanized infantry nahi de payenge rajdeep de dete hain I told him main keh raha hu wo mere pe ehsaan nahi kar rahe aap
0: bilkul
1: theek hai to usko main keh humne rajdeep nahi chahiye।

0: उसको तो राजीव, तो उसका फादर बाप है, उसका भाई है, तो वो
1: जी
0: तो उसका पेरेंटल हक है, वो तो मिलेगा.
1: बिल्कुल
0: बट वी वॉन्ट हेम टू गो टू नेवी, व्हाट यू कॉल, एएससी और एओसी, बिकॉज दैट टाइम देर वॉज सम हिच इन माई माइंड एंड माई वाइफ माइंड कि इसको कहीं खतरा है. पता नहीं क्यों ऐसा ही
1: आपको
0: पहले ही
1: जी,
0: लग रहा था.
1: लेकिन सर उस उनमें उमंग में आपका वाला ही वो जोश था, अपने पिताजी का वो जोश और जज्बा, इसीलिए उनके साथ ही उनको टाइगर कहकर
0: आई एम
1: पुकारते थे
0: कमिंग टू दैट वन. तो
1: जी।
0: उसको व्हेन ही पास्ड आउट एंड व्हेन ही केम टू नो कि ये मेरे को एसी मिली है,
1: जी
0: तो मैंने वो उसको वो फोन पे बड़ी मुश्किल से बातचीत किया एंड ही वॉज
1: जी
0: क्राइंग ऑन फोन कि डैड मेरे साथ आपने अच्छा नहीं किया, वाई यू गॉट मी इन एसी. आई सेड बेटे आपको 3 साल मिलेंगे अटैचमेंट के लिए, उसमें आप हमारी राजीव मेरी पलटन के साथ या भैया की पलटन के साथ में आप अटैचमेंट पे आना. अगर आपको राजीव ही चाहिए तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट, अदरवाइज मैं क्या, राजरिप अगर मिल जाती है या इन्फेंट्री मिल जाती है, उससे बाहर निकलना मुश्किल होगा. सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट आउट फ्रॉम देयर एंड वी वॉन्ट टू यूज जज अबाउट यूर सेल्फ.
1: जी
0: ही सेड नथिंग डूइंग एंड मेरे ऊपर कोई मेहरबानी मत करना भी, जहाँ मेरी पोस्टिंग आती है मेरे को जाने दीजिए.
1: अच्छा
0: ही ज्वाइंट सेवन जाट एंड सेवन जाट के अंदर गया
1: जी
0: तो ही वॉज पोस्टेड इन महेंद्र सेक्टर एंड नाउ कमिंग टू द ऑपरेशन. ही
1: अच्छा
0: वॉज सच ए जॉली फेलो एंड फुल ऑफ जोश ऑफ द टाइम. ही
1: बिल्कुल
0: कंडक्टेड 3 ऑपरेशन विच यू ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट,
1: जी
0: और 3 ऑपरेशन के अंदर उसने 5 मार दिए थे.
1: जी
0: इसमें एक इंसिडेंट और बताऊंगा,
1: जी
0: एक डी के शाह उसी कोर्समेट, ही वॉज ऑल्सो विद द सेवन जाट एंड देर इज ए घातक प्लाटून.
1: जी जी
0: तो दिस बॉय उमंग वॉज डूइंग घातक प्लाटून कमांडर फॉर 1 ईयर एंड ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन ही हैज किल्ड 15 टेररिस्ट
1: जी
0: एंड दीज 4 ऑफिसर दोज ज्वाइन टुगेदर सेवन जाट दे हैड टेकन ए सॉर्ट ऑफ प्लेज दैट जब तक हमारी पलटन यहाँ है और हम यहाँ पर हैं,
1: जी
0: कोई टेररिस्ट हमारे एरिया से
1: जिंदा नहीं जा सकेगा,
0: जिंदा नहीं जा सकेगा, अंदर घुस नहीं
1: घुस
0: सकेगा.
1: नहीं सकेगा।
0: एंड दैट ही डिड. कैप्टन डी के झा सेक्रीफाइस्ड अबाउट 2.5 मंथ्स अर्लियर देन दैट इन दैट सेम एरिया
1: अच्छा
0: एंड उमंग वॉज डूइंग एडिडेंट. उमंग टोल्ड मी इन द नाइट अराउंड मिड नाइट,
1: जी
0: ही टोल्ड मी दैट डैड डी के इज नो मोर. आई से व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग, बोलते वो तो छोड़ो मेरे से ऊपर क्या गुजर रही है. वट उसके ब्रदर हैं दिल्ली के अंदर एंड हिज बॉडी विल बी कमिंग टू एयरपोर्ट एंड उसके ब्रदर को आपके उसके साथ भेजना पड़ना. एंड नेक्स्ट नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 आई विल कॉल यू एंड गिव मी रिपोर्ट. दैट वॉज अ सॉर्ट ऑफ ऑर्डर फॉर माई यंगर सन एंड द ब्रेव बॉय. एंड नेक्स्ट आई डिड ऑल द थिंग्स बिकॉज ही टोल्ड मी कि उसके पास पैसा नहीं होगा, उसकी टिकट वगैरह कर दीजिए और डेड बॉडी के साथ वो उधर से लेके जाएंगे उसे. सो दैट वॉज डन. देन
1: जी
0: उमंग का जो बताया ऑपरेशन,
1: जी
0: ही वॉज डूइंग एडजुटेंट फॉर 2 ईयर्स. ही वॉज पोस्टेड आउट, पोस्टिंग आ चुका था. ही केम ऑन
1: जी
0: 10 डेज लीव एंड 10 डेज लीव के वापस जब वापस गया सो ही रीच देयर ऑन द 17th इवनिंग
1: जी
0: रादर 18th इवनिंग
1: जी 18th और 19th
0: 18th इवनिंग ही रीच देयर
1: जी
0: एंड ही वॉज देयर टू हैव हिज फेयरवेल पार्टीज एंड ऑल दैट एंड पिकअप ए ट्रॉफी एंड गेट आउट फ्रॉम द बटालियन डूइंग गुड जॉब. दैट टाइम देर वॉज सम इन्फॉर्मेशन ऑन न्यूज एंड ऑल दैट दैट देर आर सम टेररिस्ट दोज हुआ क्रॉसिंग द बॉर्डर. सो ही वेंट टू द सीओ एंड रिक्वेस्टेड हिम दैट आई वॉन्ट टू गो फॉर द ऑपरेशन. तो सीओ टोल्ड हिम नो, यू सेंड समबडी, यू विल
1: अच्छा
0: नॉट गो, यू आर ऑलरेडी पोस्टेड आउट एंड यू हैव टू गो, दैट इज इनफ फॉर यू. सो दिस बॉय इंसिस्ट ऑन हिम एंड थर्ड टाइम ही गॉट रेडी, टुक सम पीपल विद हिम एंड वेंट फॉर द ऑपरेशन हिमसेल्फ. देन सीओ वार्न्ड हिम दैट गो अप टू सो एंड सो लोकेशन एंड कंडक्ट द ऑपरेशन, टेक
1: जी
0: केयर, अपना ध्यान रखो.
1: जी
0: बट दिस बॉय फुल ऑफ जोश एंड
1: और
0: वेन
1: ये
0: ही वेंट विद द एम्बुस पार्टी एज एम्बुस कमांडर,
1: जी
0: ही पुट द एम्बुस ओवर देयर एंड अलाउड द 6 टेररिस्ट टू गेट इन टू द एम्बुस एंड देन ही ओपन द फायर. फर्स्ट टेररिस्ट वॉज किल्ड बाई हिज फायर, देन अदर पीपल पर्सन एंगेज द एम्बुस टेररिस्ट. वन टेररिस्ट वॉज रनिंग बैक टूवर्ड्स द

0: one of the जो ढारा इज द यूनोखंड टाइप ऑफ मकान पहाड़ों में जिनमें डंगर उंगर बांधते हैं, तो उसमें वो शेल्टर लेने के लिए भाग रहा था. उमंग रेन पेरल टू हेम एंड शॉट एट हेम ऑल्सो. उमंग ऑल्सो गॉट ए शॉट फ्रॉम साइड फ्रॉम दिस फेलो और एनी टेररिस्ट दोज हु आर स्टिल अलाइव.
1: आमने सामने की लड़ाई थी उस टेररिस्ट के साथ
0: फ्रॉम 6 मीटर इटसेल्फ.
1: अच्छा.
0: Each other shouted at each other and he said kafir and all that. He said bloody fool, I'll kill you, and he shot him down over there. And he told his operator ke Ramkishan apne CEO sahab ko bolo maine apna kaam pura kar diya hai, jawanon ko fire jari rakhe, koi bach ke nahi jana chahiye aur mere shayad kahin lag gayi hai. So by that time the operator approached him, Umang was no more.
1: Acha. So to us moment par उमंग भारद्वाज ने शहादत पाई उस ऑपरेशन के दौरान.
0: जी.
1: 6 टेररिस्ट जो मारे गए,
0: जिसमें 15 पहले मार चुके थे, 21 टेररिस्ट.
1: जी. तो आज हम शौर्य चक्र से सम्मानित मरणोपरांत कैप्टन उमंग भारद्वाज को याद करते हैं, उनकी बहादुरी, उनकी वीरता, उनके शौर्य के लिए, अदम्य साहस के लिए. हम यहां पर, समय बहुत कम बचा है, मैं चाहूंगा कि जो मैसेजेस हमारे पास बहुत समय से आ गए थे उनको मैं आपको पढ़ करके बताऊं.
0: जी.
1: गुड आफ्टरनून का मैसेज है हितेंद्र दास का असम से आपके लिए, और उसके बाद यह मैसेज है, गुड आफ्टरनून टू कर्नल रेस्पेक्टेड सर एन आरजे सर, आई एम राइटिंग फ्यू वर्ड्स टू आर इंडियन आर्मी. आई बो माय हेड विद इमेंस रेस्पेक्ट एंड प्राइड फॉर आर बिलवड इंडियन आर्मी. यू प्रोटेक्टेड आर बॉर्डर्स विद अनवेवरिंग करेज. यू सर्व द नेशन विद सेल्फलेस डेडिकेशन एंड यू इंस्पायर एवरी इंडियन विद योर सैक्रीफाइसेस. बिकॉज ऑफ यू वी लिव इन फ्रीडम एंड पीस. सो एंटायर नेशन इज फॉर एवर इंडेबटेड टू यू इंडियन आर्मी. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. ये हैं सर शंकर लोध फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली से.
0: थैंक यू वेरी मच.
1: और आर्मी ऑफिसर को और आरजे सर को नमस्कार. जय हिंद, जय भारत. यशवंत आडमुटे धारा शिव हैं सर, ये महाराष्ट्र से, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार. भारद्वाज साहब से मिलने में बहुत खुशी है जी. वेलकम टू द शो. श्रीकांत हैं सर ये टोलगेट त्रिची तमिलनाडु से.
0: वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम. थैंक यू वेरी मच.
1: चरण कुमार हैं सर ये, सन ऑफ श्री ब्रिजेश कुमार, विलेज बरकतपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, स्टेट यूपी से. और कर्नल भारद्वाज जी को मेरी ओर से जय हिंद, जय भारत ये कह रहे हैं आपको सर.
0: हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत सबको, हमारे साथियों को, सबको, आपके परिवार को बहुत बहुत मुबारक.
1: जी. और सर हैं ये शांतचारा बादीगार कोकानूर हरिहार से, देवनागरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका. रिस्पेक्टेड सर, संदेश टू सोल्जर्स इज अ वेरी मीनिंगफुल एंड हार्ट टचिंग प्रोग्राम. यू प्रेजेंट इट ब्यूटिफुली, रिमाइंडिंग अस ऑफ द सैक्रिफाइसेस, सर्विसेज, करेज एंड पैट्रियटिज्म ऑफ ब्रेव सोल्जर्स हु प्रोटेक्ट अवर नेशन डे एंड नाइट एट द बॉर्डर्स. सोल्जर्स स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्रीमैन. देयर डेडिकेशन एंड सेल्फलेस सर्विसेज आर ट्रूली कमेंडेबल सर ये कह रहे हैं. हार्टफेल्ट थैंक्स टू यू फॉर ब्रिंग सच अ मीनिंगफुल प्रोग्राम टू अस. थैंक यू सो मच, आपने हमें सुना और आपने हमें मैसेज किया. और हैं सर ये कर्नल कमर भारद्वाज जी, जय हिंद. 71 आमने सामने के वार का विवरण सुनकर मन उत्साह से भर गया है. कमर जी का आज भी वही जज्बा महसूस हो रहा है सर, आपकी बात सुनकर के ये कह रहे हैं.
0: थैंक यू सो मच
1: जी. और नाम शुभ संध्या, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, शायद राजेश भल्ला एडवोकेट कंकर खेड़ा मेरठ से हैं ये. और ये है मैसेज, नमस्कार मेरठ से वीरू बख्शी, आपके टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी मेहनत करी आपने, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना. जय भारत माता की जय, वंदे मातरम. और भी सर बहुत सारे मैसेजेस हैं. okay. और समय बहुत कम हमारे पास बचा
0: अभी,
1: है ये.
0: अभी कुछ एक बार पूछ लो और ना.
1: जी सर, अब हम मैसेजेस बहुत सारे, मैं सब नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि समय है बहुत कम हमारे पास. मैं सर बस चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा रिटायरमेंट के बाद की लाइफ आपकी और आपके जो फैमिली है उसका किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, अब आप किन चीजों में इन्वॉल्व हैं सर रिटायरमेंट के बाद.
0: इनफैक्ट रिटायरमेंट के बाद में हमने एक स्कूल खोला था
1: जी,
0: बाय द नेम ऑफ कर्नल पब्लिक स्कूल, माना हुआ पब्लिक स्कूल है, CBSE 10+2
1: जी.
0: एंड आवर वॉलीबॉल टीम हैव बीन अंडर 19, अंडर 17
1: जी
0: not only national champion, international champion.
1: जी.
0: And I had a hostel also in the school itself for the boys.
1: आप सब आप social services में भी जुड़े हुए हैं, आप लोगों की मदद करते हैं और आप जो लोग होते हैं जिनको मदद चाहिए सोशल सर्विसेज में, आप भी और आपका परिवार भी इसमें
0: सोशल सर्विस के उमंग के जाने के बाद में
1: जी.
0: हमने अपना ध्यान लगाया सोशल सर्विस एंड अदर थिंग्स के अंदर, जिसके अंदर के वन रैंक वन पेंशन ये
1: अच्छा.
0: हमारा पूरा फाइट था
1: जी.
0: और आज हमारे पुराने फौजियों को खास करके वार वीडियोज एंड वीडियोज को
1: जी.
0: जो फायदा मिला है और हम सबको वो बहुत ही महत्वपूर्ण है.
1: और सर उसमें आपने पूरी मेहनत की,
0: उसमें सारा जो प्रोटेस्ट था बहुत आई वॉज लीडिंग वन एंड ऑल द प्रोटेस्ट वॉज मी माई वाइफ मिस जाखड़ इज वाइफ. एंड दूसरा एक मैंने बहुत बड़ा ये टोल का यहाँ पे होता था बिटवीन दिल्ली एंड गुड़गांव एमबीएस मॉल के पास में, जहाँ दो दो ढाई ढाई घंटे ट्रैफिक जैम होता था और इवन एम्बुलेंस और प्रेग्नेंट वुमेन वर नॉट एबल टू गेट थ्रू एंड इन दैट वी आई वाज एबल टू गेट इट रिमूव्ड परमानेंटली फ्रॉम दैट.
1: आपने ये सब काम किए और
0: बिकॉज
1: ऑफ भी आप आगे रहते हैं कुछ ना कुछ
0: बिकॉज ऑफ मोटिवेशन ऑफ उमंग एंड माई सेल्फ इज फुली आई मीन इन्वॉल्व इन ऑल दी थिंग एंड डिवोटेड टू व्हाट्स एवर मैक्सिमम आई कैन डू आई मस्ट डू टिल आई एम एबल टू डू समथिंग.
1: बिल्कुल सर, बहुत ही जोश भरी आपसे हमने बातें की आज और हमने याद भी किया कैप्टन उमंग भारद्वाज को भी, जिनको शौर्य चक्र से नवाजा गया मरणोपरांत उनकी बहादुरी के लिए. सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए. कर्नल कमर भारद्वाज सेना मेडल सम्मानित 1971 वॉर वेटरन, सर बहुत बहुत धन्यवाद.
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. आपको और पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय,
1: भारत माता की जय. और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, आपने हमें अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे. और 102.6 देश के नंबर वन रेडियो पर प्रोग्राम जारी रहेंगे. आगे है सैटेलाइट्स, मीना के साथ शायद को दें इजाजत.
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया.
3: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर. शाम के 5 बजे हैं. प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम युववाणी.

समय बदलता है, रास्ते बदलते हैं और दोस्त भी अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों के साथ बिताई हुई शामें मन में हमेशा कहीं न कहीं बची रहती हैं। कुछ यादें तस्वीरों में नहीं होती, वे बस दिल में दर्ज रहती हैं। वर्षों बाद भी किसी पुराने दोस्त के साथ बैठकर वही शाम याद आ जाए तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसीलिए जिंदगी की दौड़ में थोड़ा ठहरना भी जरूरी हो जाता है। दोस्तों के लिए समय निकालना सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि रिश्तों को जीवित रखने की खूबसूरत आदत भी है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। कार्यक्रम युववाणी में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो साथी रानी राजश्री। दोस्तों, जिस देश की सेना सीमाओं पर दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ी रहती है, उसकी ताकत सिर्फ हथियारों और सैनिकों तक सीमित नहीं होती। इसके पीछे उन तमाम लोगों की मेहनत भी होती है जो पर्दे के पीछे रहकर सेना को मजबूत बनाए रखते हैं। भारतीय सेना का विद्युत एवं यांत्रिक अभियंता कोर दिवस हमें ऐसे ही समर्पित कर्मियों के योगदान को समझने का अवसर देता है। दोस्तों, युद्ध के मैदान में जब कोई सैन्य वाहन खराब हो जाए, हथियारों की मरम्मत की जरूरत पड़े या बिजली और तकनीक व्यवस्था में कोई समस्या आ जाए, तब विद्युत एवं यांत्रिक अभियंता कोर के विशेषज्ञ अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। उनका काम केवल मशीनों को ठीक करना नहीं, बल्कि सैनिकों की कार्यक्षमता, सुरक्षा और अभियान की सफलता सुनिश्चित करना भी है। उनकी तकनीकी दक्षता कई बार कठिन परिस्थितियों में सेना की ताकत बन जाती है। जरा सोचिए, जब कोई सैनिक देश की रक्षा के लिए दुर्गम पहाड़ियों, तपते रेगिस्तान या घने

जंगलों में तैनात होता है, तब उसके पीछे कितने लोगों का परिश्रम काम कर रहा होता है। किसी मशीन का फिर से चल पड़ना, किसी वाहन का समय पर तैयार हो जाना या किसी तकनीकी बाधा का दूर हो जाना कभी कभी पूरे अभियान की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, इस कोर के जवान और अधिकारी हमें सिखाते हैं कि देश सेवा केवल मोर्चे पर हथियार उठाने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी विशेषज्ञता, मेहनत और ईमानदारी से राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज इस अवसर पर हमें उन सभी कर्मियों के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए जिनकी मेहनत अक्सर सुर्खियों में नहीं आती, लेकिन जिसके बिना सेना की कार्य क्षमता की कल्पना करना कठिन है। देश की सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है और हर समर्पित हाथ इस जिम्मेदारी को मजबूत बनाता है।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सहफसली खेती।
4: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी

0: जमीन वही खेती का तरीका समझदार।
1: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
0: तो एक फसल पर निर्भर ना रहें। गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निशुल्क प्राप्त करें।
1: किसान वही खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
0: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: दोस्तों, जब हम ग्रामीण भारत की तस्वीर अपने मन में बनाते हैं तो अक्सर खेतों में काम करते किसान मिट्टी के घर, हरे भरे पेड़ और गांव की पगडंडियां याद आ जाती हैं। लेकिन इस तस्वीर का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है ग्रामीण महिलाएं, जिनकी मेहनत से घर भी चलता है, खेत भी लहलहाते हैं और परिवार के सपने भी आकार लेने लगते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हमें इन्हीं महिलाओं के योगदान को पहचानने और सम्मान देने का अवसर देता है। गांव की एक महिला सुबह सबसे पहले उठकर परिवार की जरूरतें पूरी करती हैं। बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा, पशुओं की जिम्मेदारी, खेती किसानी और घर के अनगिनत कामों के बीच वह अपने लिए समय निकालना भी भूल जाती है। कई बार उसकी मेहनत परिवार की समृद्धि का आधार भी बनती है, लेकिन उसके योगदान को वह पहचान नहीं मिलती जिसकी वह अक्सर हकदार होती है। दोस्तों, ग्रामीण महिलाएं केवल घर संभालने तक सीमित नहीं है, वे खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, स्वयं सहायता समूहों और छोटे छोटे व्यवसायों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। आज अनेक महिलाएं अपने हुनर और आत्मविश्वास से न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। फिर भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संपत्ति के अधिकार और निर्णय लेने के अवसरों तक उनकी समान पहुंच सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। किसी महिला को आगे बढ़ने का अवसर देना केवल एक व्यक्ति की मदद करना नहीं, बल्कि पूरे परिवार और पूरे समाज के भविष्य को बेहतर बनाना है। आइए इस दिवस पर हम ग्रामीण महिलाओं की मेहनत को केवल शब्दों में सम्मान देने के बजाय उनके सपनों को पूरा करने में सहभागी बने, उन्हें शिक्षा, संसाधन, अवसर और निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिले। क्योंकि गांव की महिला जब सशक्त होती है तो उसका आत्मविश्वास पूरे गांव की ताकत बन जाता है। दोस्तों, कुछ लोग अपने जीवन में यह साबित कर जाते हैं कि सपने देखने का अधिकार हर इंसान को है और उन सपनों को सच करने की ताकत भी उसी के भीतर होती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऐसी महान शख्सियत थे जिन्होंने साधारण परिस्थितियों से निकलकर असाधारण ऊंचाइयों को छुआ और करोड़ों भारतीयों के दिलों में अपनी जगह बनाई। दोस्तों, 15 अक्टूबर को उनकी जयंती हमें उनके विचारों, उनके संघर्ष और सादगी को याद करने का अवसर देती है। दोस्तों, तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे कलाम साहब का जीवन मेहनत, अनुशासन और सीखने की लगन की एक अनोखी मिसाल है। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा सहारा बनाया। विज्ञान के प्रति उनकी रुचि ने उन्हें भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में स्थान दिलाया। देश के मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उनके योगदान के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। दोस्तों, चलिए इसी क्रम में वार्ता सुनते हैं जिसका विषय है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक प्रेरक व्यक्तित्व, और वार्ताकार हैं एहतिशाम परवीन।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं एहतिशाम परवीन, स्वागत है आपका आज की इस खास पेशकश में जहां हम आपसे चर्चा करेंगे एक ऐसे महान इंसान के बारे में जिनकी जिंदगी हर भारतवासी के लिए एक मिसाल है। जी हां, हम आज बात करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। दोस्तों, रामेश्वरम तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर है, वहीं 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म हुआ। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। वह एक गरीब मछुआरे के बेटे थे, घर में पैसे नहीं थे, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। छोटी सी उम्र में ही कलाम साहब ने अखबार बेचना शुरू कर दिया था ताकि अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। मगर उनके अंदर कुछ अलग था, जिद, जुनून और जज्बा। उन्होंने कहा था, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सुनते ही हमारे मन में एक महान वैज्ञानिक

आदर्श शिक्षक और भारत के मिसाइल मैन की छवि उभर कर सामने आती है। वे न केवल भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे, बल्कि उन्होंने अपने विचारों, जीवन शैली और कार्यों के माध्यम से करोड़ों युवाओं को प्रेरणा दी। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और कठिनाइयों को पार करते हुए अपने सपनों को साकार किया। वे आज भी युवाओं के लिए एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत हैं। कलाम जी बचपन से ही मेहनती और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। कई कठिनाइयों के बावजूद उनकी शिक्षा के प्रति लगन ने उन्हें आगे बढ़ने से कभी नहीं रोका। अब्दुल कलाम विज्ञान और गणित में विशेष रुचि रखते थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में प्राप्त की और फिर तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एयरनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यहीं से उनका सपना था कि वे एक फाइटर पायलट बने, लेकिन चयन प्रक्रिया में वे 9वें स्थान पर रहे, जबकि केवल 8 को चुना गया। यह उनके लिए बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वैज्ञानिक बनने के लिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। कलाम जी ने अपने करियर की शुरुआत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से की, लेकिन उन्होंने असली पहचान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में मिली। वहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने 1980 में रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने कई मिसाइल प्रोजेक्ट्स जैसे अग्नि और पृथ्वी का सफल नेतृत्व किया, जिसके कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। उनका योगदान भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में बेहद महत्वपूर्ण रहा। 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, जिसमें अब्दुल कलाम जी की अहम भूमिका थी। इसके बाद वे एक राष्ट्रव्यापी चर्चा का विषय बन गए और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। उनके सरल और सादगी भरे स्वभाव ने उन्हें आम जनता के और भी करीब ला दिया। उन्होंने विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे आम लोगों की जिंदगी में लाने का प्रयास किया। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचे। उनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम जनता और खासकर छात्रों के लिए खोल दिए थे। वे हमेशा युवाओं से घिरे रहते थे और उनका मानना था कि भारत को महान बनाने की शक्ति युवाओं में है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर स्कूलों और कॉलेजों में व्याख्यान दिए और छात्रों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी वे लगातार छात्रों और युवाओं से संवाद करते रहे। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020, माय जर्नी और इग्नाइट माइंड्स प्रमुख हैं। उनकी लेखनी में आशा, आत्मविश्वास और प्रेरणा का भाव होता है। वे हमेशा मानते थे कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनका यह विचार आज भी लाखों युवाओं को प्रेरणा देता है। डॉक्टर कलाम का जीवन सादगी और उच्च विचारों का प्रतीक था। वे धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर थे और उन्होंने हमेशा विभिन्न धर्मों में एकता और सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया। उनके जीवन में अनुशासन, ईमानदारी, समय का पालन और निरंतर आत्मविश्वास का विशेष स्थान था। वे प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर अध्ययन करते थे और दूसरों को भी यही आदत डालने की सलाह देते थे। उनका योगदान भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में था। कलाम जी के 79वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके अलावा उन्हें लगभग 40 विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधियां प्रदान की गई थी। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण का सम्मान प्रदान किया।

0: किया गया। 1997 में कलाम साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। अब्दुल कलाम जी की सुक्तियों में है, मैं यह बहुत गर्वोक्ति पूर्वक तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसके लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकर ग्रहण किया, उसे किसी ऐसे गरीब बच्चे को संतावना अवश्य मिलेगी जो किसी छोटी सी जगह पर सुविधाहीन सामाजिक दशाओं में रह रहा हो। शायद यह ऐसे बच्चों को उनके पिछड़ेपन और निराशा की भावनाओं से विमुक्त होने में अवश्य सहायता करेगा। अब्दुल कलाम जी कहते हैं, सबसे उत्तम कार्य क्या होता है? किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना देना, जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखियारों को दुख हल्का करना और किसी घायल की सेवा करना। तो आइए दोस्तों, आज हम सब एक वादा करें कि हम भी अपने भीतर के कलाम को जगाएंगे, हम भी सपने देखेंगे, मेहनत करेंगे और हम इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां से दुनिया भारत को सलाम करेगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक नाम नहीं, एक सोच है, एक रोशनी है। 27 जुलाई 2015 को जब वे शिलोंग के एक संस्थान में व्याख्यान दे रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने वहीं अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु भी उनके समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण था। वे अंतिम क्षण तक देश और युवाओं की सेवा में लगे रहे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि साधारण परिस्थिति में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अपने संकल्प, मेहनत और ईमानदारी से असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। उनका जीवन हम सभी को यह सिखाता है कि शिक्षा, विज्ञान और सकारात्मक सोच से हम न केवल अपना जीवन बदल सकते हैं, बल्कि समाज और देश को भी नई दिशा दे सकते हैं। वे आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं। उनके विचार, उनकी जीवन शैली और उनका समर्पण हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता हो। धन्यवाद
1: दोस्तों। अभी आप वार्ता सुन रहे थे जिसका विषय था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक प्रेरक व्यक्तित्व, और वार्ताकार थी एहतिशाम परवीन।
2: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
3: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।

0: तो डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, साहित्य केवल शब्दों का संसार नहीं होता, वह इंसान के मन की संवेदनाओं, उसके संघर्षों और जीवन के उन अनुभवों की अभिव्यक्ति भी होता है, जिन्हें हम अक्सर महसूस तो करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य के ऐसे ही महत्वपूर्ण रचनाकार थे, जिन्होंने अपनी लेखनी से साहित्य को समृद्ध किया और हिंदी नाटक तथा काव्य जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। दोस्तों, उनकी पुण्यतिथि हमें उनके साहित्यिक योगदान और रचनात्मक व्यक्तित्व को याद करने का अवसर देती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जन्म 15 सितंबर 1905 को मध्य प्रदेश के सागर में हुआ था। वे हिंदी के प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध नाटककार और साहित्यकार थे। दोस्तों, हिंदी एकांकी के विकास में उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। उन्होंने अपने लेखन में मानवीय भावनाओं, जीवन के मूल्यों और समाज से जुड़े अनुभवों को संवेदनशीलता के साथ अभिव्यक्त किया। उनकी रचनाओं में भाषा की सुंदरता के साथ विचारों की गंभीरता भी दिखाई देती है। उनके साहित्य को पढ़ते हुए महसूस होता है कि शब्द केवल कहानी कहने के लिए नहीं होते, वे पाठक को सोचने, समझने और अपने भीतर झांकने का अवसर भी देते हैं। दोस्तों, यही किसी साहित्यकार की वास्तविक उपलब्धि भी होती है कि उसकी रचना पढ़ने के बाद भी मन में कुछ देर तक विचारों की हलचल बनी रहे। साहित्यकार का जीवन भले ही समय के साथ समाप्त हो जाए, लेकिन उसकी रचनाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए

0: अनुभव और प्रेरणा का खजाना बन जाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की साहित्य साधना भी हमें यही संदेश देती है कि भाषा और साहित्य के माध्यम से समाज की संवेदनाओं को जीवित रखा जा सकता है। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करना केवल एक साहित्यकार को श्रद्धांजलि देना नहीं, बल्कि हिंदी भाषा और साहित्य की उस परंपरा का सम्मान करना है जिसने हमें अपनी भावनाओं को समझना और दूसरों के अनुभवों से जुड़ना सिखाया है। आइए हम उनकी स्मृति में पुस्तकों से जुड़कर हिंदी साहित्य को पढ़कर और नई पीढ़ी से साहित्य के प्रति रुचि जगाकर सार्थक बनाएं, क्योंकि अच्छे साहित्य की आवाज समय के साथ शांत नहीं होती, वो पीढ़ियों के मन में हमेशा गूंजती रहती है।
1: सर, 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
2: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
4: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
5: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही, खेती का तरीका समझदार।
4: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
5: तो एक फसल पर निर्भर न रहें, गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निःशुल्क प्राप्त करें।
4: किसान वही, खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
5: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

दोस्तों चलते चलते बस इतना कि हम अक्सर सफलता के बारे में सोचते हैं, लेकिन इसके पीछे की मेहनत को कभी कभी हम अनजाने में नजरअंदाज कर जाते हैं। दोस्तों मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। मेहनत करने से हमें अपनी मनचाही सफलता मिलनी लगभग तय है। दोस्तों सफलता पाने के लिए सही तरीके से तैयारी करनी चाहिए और इसके साथ ही साथ सकारात्मक सोच के साथ योजना बनानी चाहिए और इसके पीछे और अपनी कड़ी मेहनत के साथ हमें लग जाना चाहिए। आत्मविश्वास बनाए रखने से भी नकारात्मक विचारों से बचा जा सकता है और सकारात्मक सोच बनाई जा सकती है। अगर आप सही दिशा में सही तरीके से काम करते हुए कठिन मेहनत करते हैं तो दोस्तों आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ कि आप डटे रहिए, कड़ी मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। अपनी रेडियो हम सफर रानी राजश्री को कार्यक्रम युववाणी से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी। हम आकाशवाणी के उभरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। शाम के 5:30 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम हेलो फरमाइश का। प्रस्तुति रानी राजश्री की है और प्रस्तुत करता है सचिन कुमार वर्मा।
1: हेलो, दिल की धड़कन बीट का वाइब्रेशन,
2: आपकी चॉइस हमारा डेडिकेशन।
1: कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
3: हेलो हेलो
4: हेलो,
2: आपके दिल की आवाज आपके रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस सफर में आपके साथ हूँ रानी राजश्री। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आपसे बातचीत का ये सिलसिला। हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते सर, कैसे हैं आप बताएं?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: जी सर, और आपका परिचय सर?
1: ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: जी तो सर, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि नवरात्रि का ये जो त्योहार चल रहा है और ये जो 10 दिनों की जो हलचल रहती है पूरे उल्लास के साथ, क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर?
1: जी इस खास मौके पर यही कहना चाहेंगे कि जब माता जी का दरबार लगता है हर जगह पर
0: जी,
1: और हमारे यहाँ पर भी माता जी का दरबार लगा है, पांडाल लगा है, तो सभी लोग भक्तिमय माहौल हो चुका है यहाँ पर।
0: जी जी।
1: और शाम को गरबा भी होता है, कुछ लोग भजन की प्रस्तुति भी देते हैं और अपने अपने स्तर पर जितने भी कलाकार होते हैं ना
0: जी,
1: सभी प्रस्तुति देते हैं और ऐसा भक्तिमय माहौल हो जाता है कि बस समझिए कि भजन सुनते रहे और माता जी की सेवा करते रहे।
0: और ये जो खुशियाँ होती है ना त्योहारों के माध्यम से और ज्यादा दोगुनी हो जाती हैं।
1: जी दोगुनी हो जाती है। बट एक बात और कहना चाहेंगे
0: जी
1: कि भक्ति भाव एक जगह है, आस्था अपनी जगह है,

0: लेकिन हमारी माँ जब हमें जन्म देती है वो माँ हमारे लिए सबसे सर्वोपरि होती है।
1: बिल्कुल।
0: सबसे पहले हम अपने जन्म देने वाली माँ का ही आदर करें, सम्मान करें, उनकी पूजा आराधना तो ठीक है लेकिन उनकी जो भी सुविधा होती है, उनको जो भी चाहिए होते हैं उनको हम उपलब्ध करें सारी सुविधा, तो हमारी माता रानी ऐसे ही खुश हो जाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने पेरेंट्स के, अपने जो माता पिता हैं, उनकी जो सच्चे मन से जब हम सेवा करते हैं, उनकी हर बात हम सुनते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं, तो उनकी सेवा हमें जरूर करनी चाहिए।
0: माता पिता की सेवा सर्वोपरि होनी चाहिए, और माता पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचेगा, और जो भी माँ है पिताजी है हमेशा अपने बच्चों के लिए भलाई के लिए ही कार्यरत रहते हैं और हमेशा रहेंगे।
1: बिल्कुल। और अपनी माँ की जब हम सेवा करेंगे तो खुद ब खुद वो माँ जो दुर्गा माँ है वो प्रसन्न हो जाएंगी।
0: बिल्कुल प्रसन्न होगी। वो बोलेगी कि ये जन्म देने वाली माँ इतनी सेवा कर रहे हैं तो हम तो
1: जगत जननी है ही
0: जी, वो खुद भी खुद प्रसन्न हो जाएंगे।
1: बिल्कुल। और तो सर इस इतनी अच्छी बात आपने कही, तो इस खास मौके पर क्या फरमाइश रहेगी आपकी?
0: जी, फिल्म का नाम है जय माँ वैष्णो देवी
1: जी,
0: और गाने के बोल है लेके पूजा की थाली।
1: लेके पूजा की थाली। तो बिल्कुल सर, आपकी फरमाइश पर ये भजन आपके रेडियो सेट पर। थैंक यू सर
0: जी, धन्यवाद।

0: हेलो, नमस्कार बहन जी।
1: जी नमस्ते सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका परिचय दें।
0: मैं सुनील झा बोल रहा हूँ, भोपाल प्रदेश।
1: जी सर, तो सर जैसा कि नवरात्रि चल रहा है।
0: जी जी, पहले तो आपको और ओवेरा पूरा परिवार को और जितने भी श्रोता सुन रहे हैं उनको भी नवरात्रि की और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल सर, आपको भी और आपके पूरे परिवार, आपके सभी दोस्तों को आकाशवाणी ओबरा परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। हमेशा स्वस्थ रहें और सभी के साथ खुशियों के साथ आगे बढ़ें। तो सर बताएं, क्या कुछ हलचल है आपके शहर में?
0: जी बिल्कुल, हमारे भोपाल में पूरा हर लगभग है, एक दो गली छोड़ के
1: जी
0: सभी में माता जी विराजमान है। और हमारे सोसाइटी अनुपम कस्तूर यहाँ पे भी हमारे माता जी का पंडाल सजा हुआ है।
1: क्या बात है,
0: रात को भी जागरण था, सब जगह माता जी के गीत गूंज रहे हैं।
1: ये जो 10 दिनों का जो ये पूरा त्योहार है, वो ऐसा लगता है कि बस एक अलग सा ही एक माहौल मरा हुआ है।
0: जी जी जी।
1: तो सर और बताइए, क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर हमारे युवा जनरेशन से?
0: बस ये कहना चाहता हूँ, लेकिन अभी जो इसमें जो अपनी संस्कृति को बचा के रखे, जो आजकल ये धार्मिक उत्सव न होकर के एक मनोरंजन के तौर पर मनाते, ये गलत बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमें जुड़ना है तो हम पूरी श्रद्धा के साथ जुड़ें।
0: जी,
1: ये दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आजकल दिखावा ज्यादा हो गया है, बच्चों को संस्कार भी गलत जाते हैं। जो पहले के जो धार्मिक जो श्रद्धा और भावना से जो भी है, गीत बजाएं, और आजकल तो

0: सुनना चाहती है आपसे।
1: बिल्कुल।
2: हेलो
1: हेलो, कैसे हो बेटा?
2: अच्छे।
1: आपका नाम क्या है?
2: अनादी।
1: अनादी, और कौन सी क्लास में हो?
2: फोर।
1: तो आपकी भी कोई फरमाइश है क्या?
2: मुझे गाना सुनना है।
1: चलिए, आपके पापा ने जो गाना बताया है हम आपको सुनवाते हैं, ठीक है?
2: हाँ।
1: थैंक यू।
2: वेलकम।

0: हेलो
1: जी कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
0: जी, कार्यक्रम हेलो फरपाई आकाशवाणी ओबरा।
1: जी बिल्कुल सर, तो सर अपना परिचय दें।
0: बिल्कुल, मैं ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंदौलिया।
1: तो नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। क्या कुछ है आपके शहर में, क्या तैयारियां हैं माता रानी की?
0: पहले हम भी आपको सपरिवार और आकाशवाणी परिवार में भी सभी को सपरिवार हार्दिक हार्दिक मंगलमयी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर सभी पर बनी रहे।
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत
0: और
1: धन्यवाद।
0: बात, अब आपने जो माता रानी के बारे में पूछा कि क्या, तो हम अभी अभी बाजार से आ रहे हैं,
1: जी
0: तो जगह जगह माता रानी का दरबार सजा हुआ है, बड़ा भक्तिमय माहौल है, क्योंकि भजन हो रहे हैं,
1: जी
0: कहीं अचरी हो रही हैं जिनको हम अपनी भाषा में कहते हैं।
1: जी
0: हाँ, तो बड़ा अच्छा लगता है इन दिनों।
1: आप घर में रहें या घर से बाहर निकलें, हर तरफ एक ही माहौल रहता है।
0: और वैसे देखा जाए तो ये अपने

0: इसमें तो होना ही है ये माहौल
1: जी जी,
0: और विदेशों में भी अपने त्योहार जो अपने वहाँ लोग रह रहे हैं
1: जी,
0: काफी
1: जी,
0: अच्छी तरीके से मनाते हैं, बढ़ चढ़ के मनाते हैं,
1: बिल्कुल
0: ऐसी सूचनाएं मिलती रहती हैं
1: जी
0: संचार माध्यम से, तो बड़ा अच्छा लगता है
1: जी। बिल्कुल सर, जैसे कि त्योहार की जो हमारी जो खुशी होती है वो तो हम मनाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें साफ सफाई का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
0: इस बारे में बिल्कुल आपने सही कहा, हम तो इस मामले में ये भी कहेंगे कि हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे भक्तिमय माहौल से
1: जी,
0: भक्तिमय माहौल ये भी नहीं कहता कि दूसरे को हैरानी हो और भक्तिमय माहौल बनाए।
1: बिल्कुल,
0: जैसे हो सकता है कि अपन लाउडस्पीकर बजा रहे हैं
1: जी,
0: और हो सकता है अपने आसपास कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो
1: जी, जी।
0: तो ऐसे में हमें उसका भी ध्यान करना है
1: जी,
0: और पर्यावरण का भी ध्यान करना है। माता रानी का जब विसर्जन करने जाते हैं
1: जी,
0: तो काफी कहीं कहीं होदंग भी देखने में आता है, ये नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल, साथ ही साथ एक शांति का माहौल बनाए, उसी की वजह से जो हमारी खुशी है ना वो बरकरार रहती है।
0: त्योहारों का आनंद जो शांति में है
1: जी,
0: वो क्रांति में बिल्कुल नहीं है।
1: क्या
0: त्योहार
1: बात कही सर।
0: हो बहन जी
1: जी,
0: त्योहार अपने हो, मेरा कहने का आशा है हिंदुओं के हो, चाहे मुसलमान के, चाहे ईसाइयों के, किसी के भी हो
1: जी जी,
0: त्योहार हमें अपन सबको एकता के सूत्र में बांधना सिखाता है, शांति और प्रेम का संदेश देता है, एकता के सूत्र में पिरोना सिखाता है, देशभक्ति सिखाता है।
1: बिल्कुल, अपने देश के प्रति ईमानदार रहना सिखाता है, और धर्म चाहे कोई भी हो हमें यही सिखाता है कि हम सब एक हैं और हमें मिलकर ही आगे बढ़ना है।
0: बिल्कुल, हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है
1: जी,
0: और जहां जिसको जैसा आवश्यक पड़े उस हिसाब से एक दूसरे की मदद करें
1: जी,
0: और जितना हो सके अपन से, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि हम 100% दे सकते हैं
1: जी,
0: जितना हो सके आवश्यकता पड़ने पर सामने वाले की अगर उसको जरूरत पड़ रही है
1: जी,
0: तो मदद उसकी करें
1: जी। बिल्कुल करें, और मदद के लिए हमेशा आगे भी आना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और हम ये भी बता दें आपको बहन जी
1: जी,
0: कि अब चूंकि कहने में बड़ा वैसा लगेगा, हम अमल करने वाले व्यक्ति हैं, ना कि अनावश्यक कहने वाले, कि आज आपसे हमारी आकाशवाणी ओबरा बात हो रही तो चाहे कुछ कहते रहो, करो कछु नहीं, ऐसा नहीं है, हमें जो मैंने कहा उस पे अमल करने वाले हैं।
1: बिल्कुल सर, और यही होना भी चाहिए, हम जैसे अंदर से रहे वही हमारे व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए,
0: वही दिखाई देना चाहिए
1: जी। बिल्कुल, तो आज फरमाइश क्या रहेगी आपकी?
0: आज फरमाइश में आप ये मान लीजिए कि माता रानी के दिन चल रहे हैं
1: जी,
0: और जब तक ये पर्व रहेगा तब तक हम जहाँ भी हमारा फोन लगेगा माता रानी के ही गीत सुनेंगे।
1: क्या बात,
0: हर हर गंगे में भी माता रानी के दो गीत हैं, अगर आपके पास हो तो बजा दीजिएगा।
1: तो ठीक है सर, हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये भजन।

0: जी, कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी,
0: कहाँ से बोल रही
1: हम
0: हैं?
1: यहाँ सोनभद्र ओबरा से बोल रही हूँ, रंजना
0: जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए अपने
1: वर्मा।
0: बारे में, अपने परिवार के बारे में।
1: सब बहुत बढ़िया है, माता रानी कृपा है।
0: जी,
1: इतना मन शांत हो जाता है, इतना खुशी महसूस होती है कि ब्रह्मांड से जब पृथ्वी पे आती है माता रानी तो कितना खूबसूरत माहौल बन जाता है।
0: माँ शब्द ही अपने आप में हर चीज की
1: हाँ
0: पूरक है।
1: बिल्कुल, और हम बच्चे उनके माँ की गोद में बैठ जाते हैं तो सारी
0: जी
1: अशांतियां और सब परेशानियां दूर हो जाती हैं। पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं,
0: जी जी
1: 9 दिन का कलश रखते हैं, कंजिकाएं खिलाई जाती हैं, पुरुष सभी लोग मिलके करते हैं पूजा।
0: जी जी
1: बच्चे भी कितने खुश रहते हैं उस वक्त, और
0: जी
1: खास तौर से तो बेटियां इतनी खुश रहती हैं कि पूछो ही मत।
0: तो बेटियों की बात आप कह रही हैं, और नवरात्रि जैसे कि माता रानी का दिन, तो ऐसे में बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगी?
1: बेटियां जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं और दिमाग भी बहुत अच्छा चलता है।
0: जी
1: माँ बाप का सहयोग मिले तो बेटियां आजकल क्या नहीं कर सकती हैं। बाप तो ये हमें लगता है कि माता की शक्ति, जब माँ भी सुन देखती होंगी अपनी बेटियों को
0: जी
1: पृथ्वी पे तो कितना खुश होती होंगी कि हमारी बच्चियां कितनी सुंदर निकल रही हैं, कितना अच्छा काम कर रही हैं, इस देश को संभाल रही हैं। और उनको जो है बढ़ावा जो है पुरुषों को देना चाहिए कि कम से कम ये स्त्री अगर ना होती तो ये दुनिया समाज कहाँ होता,
0: जी जी
1: ये चीज तो होना चाहिए।
0: सृष्टि में हर एक चीज का सम्मान निर्धारित है, बस हमें उसे
1: बिल्कुल,
0: पूरा करना चाहिए।
1: वो कहते हैं ना कि जितना हम अच्छा कर्म करेंगे, हमें जितनी ज्ञान की बातें मिलती हैं,
0: जी
1: अगर हम उनके नक्शे कदम पे चलें तो फिर जो है देश का कल्याण हो जाए। लेकिन मन में जो विकार भरे हैं वो जो है मन को बेलगाम कर देते हैं और
0: जी
1: मन कंट्रोल में रहता नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारी दुनिया को जीत लिया,
0: बिल्कुल। और
1: बस।
0: यही मन पर जो काबू करना है वो हमें सीखना है, क्योंकि वही हमें सही राह के साथ आगे बढ़ाएगा।
1: हाँ, है राधे कृष्णा है,
0: जी
1: भोलेनाथ है, माता पार्वती है, जितने भी हैं बिद्नार्था गणेश हैं, जितने लोग हैं सब लोग वही बातें करते हैं।
0: पूजा पाठ है वो हम
1: हाँ
0: करें बिल्कुल, लेकिन साथ ही
1: मन से
0: साथ
1: ना,
0: उसको अपने जीवन में भी जरूर शामिल करें।
1: बिल्कुल,
0: उन सबका सम्मान, उन सबके लिए हमें अच्छा ही
1: बस
0: सोचना चाहिए।
1: तब जाके देश हमारा सुधरेगा।
0: जी बिल्कुल। फरमाइश क्या रहेगी आपकी?
1: बस माता रानी का आऊंगी आऊंगी अगले बरस फिर आऊंगी करके वो सुना देना।
0: तो चलिए आपकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये प्यारा सा भजन।

0: श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर रानी राजश्री। और कार्यक्रम में आज का सफर बस यहीं तक। आकाशवाणी के माध्यम से कार्यक्रम में हमसे जुड़े रहिए, बातचीत का ये सिलसिला यूं ही बनाए रखिए।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।

0: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
1: हेलो,
2: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
0: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
2: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
0: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
2: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति रानी राजश्री की थी और प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार, जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने वाराणसी दौरा के दूसरका दिन स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में हिस्सा लेने हैं। यह मौका पर अपने संबोधन में वहां के कहने की स्वच्छ भारत अभियान के जरिए देश दुनिया के एगो नया प्रेरणा देले हो।
1: प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश ने स्वच्छ भारत अभियान को दुनिया के अंदर सफलता की नई ऊंचाइयों पे पहुंचा करके दुनिया को एक नई प्रेरणा प्रदान की। अगर भारत कर सकता है तो दुनिया का हर देश कर सकता है। पीएम साहब की, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा आज दुनिया के लिए एक उदाहरण बनी है।
0: एक बादे मुख्यमंत्री मिर्जापुर पहुंच के माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कैले और ओजा शिक्षक सम्मेलनों के संबोधित कैले। यही क्रम में मुख्यमंत्री प्रयागराज जिलों के दौरा पर पहुंचले आ ओजा महाशय मसूरिया दीन पासी के मूर्ति के अनावरण समारोह में शामिल भैले। वहां के प्रयागराज में आयोजित स्नातक मतदाता सम्मेलनों के संबोधित कैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित वाराणसी दौरा के लेके तैयारी जुड़िया गई बा। यही क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल अपने वाराणसी दौरा के पहलका दिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के तैयारियन का समीक्षा कैले। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम वाले जगहिन का स्थलीय निरीक्षणों कैले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र आ लगातार प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 बरिस पूरा कैले हले हमें आ उनकर ही सफर लगातार जारी बा। सेवा सुशासन के यही नजरिया से प्रेरित होके सरकार बरिस 2047 ले भारत के विकसित राष्ट्र बनौले का लक्ष्य पावे बदे लगातार कार्य कर रही हो। आज खास श्रृंखला में बात पीएम जनधन योजना का जेकर सफलता प्रधानमंत्री के नजरिया के साकार भइले का प्रमाण हो।
2: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत के बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है।
3: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंक

0: किंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
1: वाराणसी के रहने वाले संजय सिंह ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
2: मैं प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभार्थी हूं। इस योजना के तहत मेरा बैंक में शून्य बैलेंस खाता खुला है, जिससे मुझे बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। सरकारी योजनाओं की सहायता राशि सीधे मेरे खाते में प्राप्त हो रही है।
1: इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिल रही है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
3: आकाशवाणी का महानिदेशक राजीव कुमार जैन आज वाराणसी केंद्र का दौरा कई के वरिष्ठ अधिकारी लोग इनके साथ बैठक कई ने ए दौरान वहां के आकाशवाणी के कार्यक्रमन का गुणवत्ता सुनिश्चित कैले श्रोता लोग इनके संख्या में बढ़ोतरी आ राजस्व बढ़ौले जैसन खास बिंदुअन पर चर्चा कैले। सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था देले हो कि हिंदू धर्म से इस्लाम चाहे औरियो गैर हिंदू धर्म में धर्मांतरण करे वाले मनई पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का दावा नहीं कर सकेले। एगो रिपोर्ट।
4: न्यायालय ने कहा कि गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्मांतरण स्वतः किसी अधिसूचित पिछड़े वर्ग समुदाय की सदस्यता प्रदान नहीं करता। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत वैधानिक लाभ केवल किसी व्यक्ति की धर्मांतरण पूर्व स्थिति के आधार पर नहीं दिए जा सकते। न्यायालय ने दोहराया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। ये फैसला मार्च 2024 के तमिलनाडु सरकार के एक आदेश से संबंधित याचिका के जवाब में आया है, जिसमें दूसरा धर्म अपना चुके लोगों को आरक्षण लाभ देने की मांग की गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
3: शारदीय नवरात्र के पांचवा दिन ने आज प्रदेश भर में माई दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप को आराधना कैल जा रहल बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर।
5: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। शाम के 6:05 हुए हैं। श्रोताओं, आइए आपको संक्षिप्त जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। अब से कुछ देर बाद शाम 6:10 पर सुनिएगा अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। हमारे लखनऊ केंद्र से शाम 6:50 पर किसान श्रोता सुन सकेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम सबरस का समय होगा शाम 7:31 का। सुगम संगीत कार्यक्रम के 3 अंकों का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:30 पर और रात्रि 9:45 पर। पुराने फिल्मी गीतों को सुनिएगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के अंतर्गत रात्रि 9:15 पर। कार्यक्रम रसधारा हमले कराएंगे रात्रि 10:00 और कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत रात्रि 10:30 पर सुनिएगा विदुषी शोभा गोटू का ठुमरी गायन। श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार राजेश कुमार पुत्र भोला निवासी ग्राम पिंडारी थाना बीजपुर जनपद सोनभद्र जो दिनांक 15 मई 2026 से लापता है। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 27 वर्ष, लंबाई 5 फीट 4 इंच, सांवला रंग, लंबा चेहरा, इकहरा मजबूत जिस्म। इन्होंने सफेद व भूरे रंग की चेकदार जर्सी, नीले रंग का पैंट तथा लाल हवाई चप्पल पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।
6: विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 से संबंधित एक विशेष सूचना। वाराणसी खंड स्नातक और वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता कृपया ध्यान दें। कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी सोनभद्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। कृपया मुख्य तिथियों पर विशेष ध्यान दें। चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तारीख मंगलवार 29 सितंबर 2026, नामांकन की आखिरी तारीख मंगलवार 6 अक्टूबर 2026, नामों की वापसी की अंतिम तारीख शुक्रवार 9 अक्टूबर 2026, मतदान का दिन शुक्रवार 23 अक्टूबर 2026, मतदान का समय प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक, मतगणना का दिन मंगलवार 27 अक्टूबर 2026। वाराणसी खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी सम्माननीय मतदाताओं, याद रखें, लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और सही समय पर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। जिलाधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सोनभद्र द्वारा जनहित में जारी।
5: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। शाम के 6:10 हो चुके हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन
1: के
0: राम
1: राम।
0: राम। गौरी भौजी तोहरों के राम राम हो।
1: और भगेलू भैया आपके भी राम राम। और बतावे का हाल समाचार बा, घरे का दुआरे का गाय का गिराए का हाल चाल
0: भौजी हो। देखा हाल चाल तो सब ठीके बा। मौसम के मिजाज देखते बाड़ो का है कि दिन में देखा तेज घामे होत बा और राति में देखा जाड़ा पड़ जात बा। ओकरे साथे साथे देखा तर त्योहार भी चल रहल बा। ऐसने में देखा हम लोगन के सतर्क और सजग रहले के जरूरत बा। काहे कि जब सजग और सतर्क नहीं रहल जाई ना तो सर्दी खांसी बुखार होके के डर रहेला। तो यह समय जौन न्यूनतम तापमान बा ना तो वो देखा 21 डिग्री बा और जौन अधिकतम तापमान बा 31 डिग्री सेल्सियस बा।
1: बिल्कुल भगेलो भैया सही बात कह रहे हैं आप कि मौसम जब बदले तो ओकरे हिसाब से हम लोग के अपन कपड़ा पहनावा खान पान रहन सहन रखल सब बहुत जरूरी है। काहे कि देखा अब इसमें मेला ठेला बा, माई का नवरात्रि चलत बा और संगे संगे रामलीला भी। तो बच्चों लोगों के आप जानते हैं हमन की न पहनी है न ओढ़ी है, लेकिन वो जल्दी से मेला देखे भाग जाइए हमारे खुशी के मारे। मन तरह तरह कुल मिठाई मिली है, बर्फ मिली, आइसक्रीम मिली, कुल खाए खाती बचपन अपन आगे बढ़ी है। लेकिन अगर बचपन के हम लोग जब उनकर पसंद का चीज है बना के घर ही पे खियावल जाए तो कम से कम वो बड़ बीमारी से बची है।
0: तो गौरी भौजी देखा हम लोगों की तो बातचीत तो होते रही, लेकिन देखा हम कहल चाहते कि पंच भैया लोगन से कहत चाहते है ना कि हम लोगन गांव गिराव में रहिला और हम लोगन के हर ओरी ध्यान रखल जरूरी होखेला। काहे कि हर तरह से जब ध्यान हम लोग नहीं रखब ना तो कई तरह के दिक्कत परेशानी आ जाला। हर तरह के जिम्मेदारी होला केहू के घर के क्षेत्र में बा और कोई जानकारी जैसे खेती बारी बा गोरुआरी बा ये हर तरह से हम लोग
1: देखा। आज है 15 अक्टूबर, आज के दिन देखा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनावल जा रहा है ना। अब पंच भैया लोगों के मन में देखा सवाल उठत हो कि ये दिवस काहे खातिर मनावल जाता। वो कह जाला कि बिन घर नहीं घर भूत का डेरा।

0: अगर घर में मतलब औरत ना है तो दिया बाती या घर का साफ सुथरा मतलब इस सब सब सर सफाई जो घर में चमक बनल रहे ला वो देखे के ना मिलेला। अक्सर ऐसा मानल गई है कि मन से तो थोड़ा लापरवाह होता है। और देखा कहावत कई उद्देश्य बा कि अगर हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बही लोग बाड़ी महिला लोगन बाड़ी तो वो खाली खेती किसानी नहीं कि खाली खेती बाड़ी और खाद्य के सुरक्षा के साथ साथ गांव के विकास में वो सब लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका बाटे। चाहे खेती का काम होके बाड़ी का होके गुरुवारी का होके और चाहे तो उन्होंने उनके बाजार हाट के बात होके उन लोग के हर जानकारी बाटे और हर काम में अपने मन सेधु के साथे
1: हाथ
0: कदम
1: बटाले
0: से
1: के जरूरत है।
0: कदम मिला के चलत हैं तब जाके घर का व्यवस्था चलता। चाहे बच्चों का पढ़ाई लिखाई होके चाहे शादी ब्याह होके तो हमारे बहन लोगन कहीं पीछे ना बढ़ी।
1: तो देखा वही तरीके से एक हम जोन कहानगी बा कुछ भैया लोग कहेलन कि वह खेत में अन्न उगाती हैं और वह हर आंगन को महकाती हैं, खुद संघर्ष से लड़कर भी वह परिवार को आगे बढ़ाती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आ चलो चलो देखा कुछ पंक्ति बा हमू बतियाई मतलब
1: हाँ हाँ
0: सर
1: बतिया।
0: कि नारी का सम्मान करें उसके सपनों को उड़ान दें गांव की हर बेटी को शिक्षा हर महिला को पहचान दें।
1: तो भैया देखा यह तरीके से अपन भैया लोगों से कहा जाता कि यह तरीका की जब बात बत कही बा ना
0: हाँ
1: तो वही तरीके से आज हम लोग अपन भैया लोगों के बीच में एक बात बत कही भी शामिल कर ले है, जिसे ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के तरीके से करल जाए कृषि आधारित व्यवसाय से। तो नीतू देवी और राधा देवी जो प्रगतिशील किसान होवन,
0: हाँ
1: इनसे जगत नारायण भैया के बातचीत बात ये सुन ले, लेकिन देखा ऐसे पहले कुछ आप संदेश भी बा ओकर सुन लिया जाए।
0: सुन ले।
2: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
3: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
4: हमेशा पूछो WHY वाई कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI
3: आपका साइबर रक्षक।
5: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
6: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही खेती का तरीका समझदार।
5: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
6: तो एक फसल पर निर्भर न रहें, गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निशुल्क प्राप्त करें।
5: किसान वही खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
6: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
7: श्रोताओं, अक्सर हम लोग ये सुना करते हैं कि सेवा साधना हमारा संगठित प्रयास है, गांव के विकास से देश की विकास है। अगर इसी क्रम में ये कह दिया जा सकता है कि गांव के नारियां जाग जाए अगर देश स्वयं ही बदलता चला जाएगा। हम लोग पठन पाठन के दरमियान कभी शिक्षा पद्धति के बारे में बातचीत चलती है तो पता चलता है कि बच्चों का प्रथम गुरु माता होती हैं। निश्चित रूप से हर तरह के कार्य करने के शैली जो होता है उनसे बच्चे सीखते हैं और सभी घर का विकास, क्षेत्र का विकास, गांव के विकास की अगर बात की जाए तो महिलाओं के जागरूक होना बहुत ही जरूरी होता है। आज सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी बला के कादल में प्रगतिशील कृषक महिला नीतू देवी और राधा देवी जी से मुलाकात हो रही है। आप लोग से बातचीत होगी, क्या कुछ खेती किसानी में कर रहे हैं या आय के क्या कुछ स्रोत खोज पाए हैं, बातचीत होगी। नीतू देवी जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। खेती किसानी में क्या क्या चल रहा है इसमें?
8: खेती किसानी में चल रहा है जैसे कि गोभी हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया, बैंगन हो गया, इत्यादि बहुत कुछ चल रही है।
7: और पशुपालन वगैरह भी किसी कुछ किए हैं?
8: जी हाँ, पशुपालन में जैसे कि गाय पाले हैं और मुर्गा पाले हैं।
7: तो मुर्गा पालन में तो बहुत मेहनत पड़ता है?
8: जी हाँ, मुर्गा पालन में तो बहुत मेहनत पड़ता है।
7: कितना पाले हैं?
8: मुर्गा पालन तो हम लोग पाले हैं लगभग 2,000।
7: 2,000 है
8: जी।
7: तो इसमें तो बड़ा ध्यान देना पड़ता होगा रख रखाव में?
8: जी हाँ, ध्यान देना पड़ता है, सही से उन लोग का चारा लगाना, सही से पानी देना, साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है।
7: तो इसमें मुनाफा हो जाता है कुछ आमदनी?
8: जी हाँ, मुनाफा हो जाता है, जैसे कि हम लोग ढंग से चारा लगाते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो मुनाफा हो जाता है। अगर बीमारी ज्यादा लग जाने पर सही से दवा नहीं चल पाता है तो नहीं हो पाता है।
7: अच्छा, रोग व्याधि भी

0: लगते हैं,
1: हाँ रोग व्याधि के
0: ये
1: लक्षण
0: सब
1: है
0: आप लोग कर लेती हैं?
1: जी। हाँ हम लोग सब कर लेते हैं।
0: अच्छा, साफ सफाई कैसे रखती हैं?
1: साफ सफाई रखते हैं, जैसे कि मुर्गा डला गया तो उसमें कम से कम 15 दिन में एक बार झाड़ू लगा देना। झाड़ू
0: अच्छा,
1: लगा करके उसमें थोड़ा सा बीट रहता है, उसको चला देना।
0: तो ये बिक्री कितना दिन में होने लगता है जब चूजा रखते हैं, लाते हैं तब से?
1: 3 महीना में हो जाता है तैयार, 3 या 4 महीना के आसपास में हो जाता है।
0: अच्छा, तो ऐसे आमद के घर परिवार आपके इसी से चलता है?
1: हाँ हम लोग का घर परिवार खेती बाड़ी और फार्म से ही चलता है।
0: हाँ, तो ये साग सब्जी उत्पादन में भी ये मुर्गा कुछ सहयोग करते हैं?
1: हाँ साग सब्जी में जैसे कि उन लोग के चारा डाल देते हैं, घास पात हो गया और गोभी का पत्ता हो गया, टमाटर हो गया, मतलब रूप सब खा जाते हैं।
0: अच्छा, तो उस
1: और
0: वो लोग का आहार
1: उस
0: हो
1: सब
0: जाता है?
1: खाने से मतलब उन लोग तंदुरुस्त अच्छा रहते हैं, उन लोग का एकदम मतलब थोड़ा सा क्वालिटी भी अच्छा बन जाता है। हरा साग सब्जी खाने से ठीक
0: हाँ,
1: रहते हैं उन
0: तो
1: लोग।
0: ये कैसे बिकते हैं सब?
1: बिकते हैं छोटा में जैसे कि हो गया, छोटा जैसे रहते हैं तो 150, फिर 200, 250, फिर किलो साइज हो जाता है तो 500 रुपये किलो बिकता है। और अगर 2 किलो हो गया, 1.5 किलो हो गया तो 450 के बिकता है
0: किलो पे? अच्छा,
1: किलो पे।
0: जो मतलब फुटकर में बेचेंगे तब,
1: हाँ फुटकर में बेचेंगे तो,
0: और थोक पर भी ले
1: अगर
0: जाते हैं लोग?
1: थोक पर बेचेंगे तो वही 300, कभी 280, मतलब समय के अनुसार जिसे मतलब समय आता है उन लोग का उसी बिकता है। ये नहीं है कि मना पूरा वही से रहेगा।
0: मतलब बहुत दूरदर्शी सोच है, क्योंकि ये बड़े अच्छे अच्छे लोग जल्दी नहीं कर पाते
1: नहीं
0: हैं।
1: नहीं नहीं सबसे बस की बात नहीं है, जो मेहनत करेगा उसको से
0: हाँ
1: वो हो
0: हाँ
1: जाएगा,
0: हाँ
1: और जो मेहनत नहीं करेगा वो नहीं हो पाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने मेहनत, इसमें
1: हाँ
0: निगरानी बहुत
1: मेहनत,
0: जरूरी
1: हाँ
0: है।
1: मेहनत बहुत जरूरी है और साफ सफाई भी जरूरी है। अगर साफ
0: हाँ,
1: सफाई नहीं हो पाएगा ढंग से तो उन लोग
0: बीमारी
1: को
0: लग
1: बीमारी
0: जाएगी।
1: बहुत तेजी से लग जाता है। अगर जितना ही अच्छा से रखिएगा उन लोग को स्वतंत्र तो बड़ा अच्छा रहेंगे।
0: अच्छा, ये बीमारी लगने पर कैसे पहचान करते हैं ये सब का?
1: उन लोग का पहचान हो जाता है, वो लोग पूरा लोग सुस्त हो जाते हैं और पूरा
0: हाँ,
1: एकदम खांसी खांसने लगते हैं, तो उसी के अनुसार से दवा भी चलने लगता है। तो हम लोग जान जाते हैं तहाँ दवा लगा देते हैं, तहाँ फिर वो हो जाता है, वो सही हो जाता है धीरे धीरे।
0: तो कुल मिलाकर के मतलब घर परिवार चलाने के लिए ये सब बहुत
1: हाँ
0: उपयोगी है,
1: उपयोगी है।
0: और घर भी आप लोग अच्छा अच्छा बनाए हैं सब, तो ये
1: हाँ
0: सब
1: तो भाई
0: इसी के।
1: मेहनत कीजिएगा तो अच्छा ही बनबे ना करेगा, नहीं मेहनत कीजिएगा तो कहाँ से बनेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी क्रम में एक और मुलाकात हो रही है राधा देवी जी से। अब इनका क्या अपना अनुभव है खेती किसानी के क्रम में? तो राधा जी, ये जो अभी बातचीत हो रही थी नीतू देवी जी से कि हम मुर्गी पालन करते हैं, तो आपके यहाँ भी है मुर्गी?
2: जी हाँ हम लोग हैं यहाँ भी मुर्गी पाला जाता है और पालते भी हैं।
0: ये जो इसका बीट होता है उसका क्या करती हैं?
2: इसका हम लोग खेती किसानी में यूज करते हैं, जो कि खाद के रूप में आ जाती है।
0: अच्छा,
2: और उससे उसका बीट डालने पर ज़्यादा मतलब फायदेदार होते हैं सब्जी,
0: हाँ, वो
2: वो
0: मतलब
2: हरी हरी मतलब पत्तियाँ होती हैं, सुंदर
0: हाँ, रासायनिक दवा नहीं डालना
2: रासायनिक
0: पड़ता होगा खाद?
2: बहुत कम, मतलब इसको डालने पर बहुत कम ज़्यादा डालना पड़ता है खाद,
0: हाँ,
2: और ये डाल देते हैं तो खाद के बराबरी मतलब हो जाता है।
0: बिल्कुल। अच्छा, ये हमें खाने में स्वाद भी लगता होगा साग सब्जी का?
2: हाँ जी हाँ
0: साग
2: साग
0: सब्जी
2: सब्जी
0: में कहाँ
2: खाने
0: कहाँ
2: में
0: साग?
2: जैसे हो गया
0: हाँ,
2: गोभी हो गया, बैंगन हो गया और आलू भी हो गया, टमाटर भी हो गया
0: तो ये
2: और
0: जो
2: कोहड़ी लौकी, मतलब सीजन सीजन पे हरी हरी सब्जियां सभी लगती है।
0: ये स्वयं आप लोग कर लेती हैं?
2: स्वयं हम लोग करते हैं घर पे ही।
0: अच्छा, तो ये बिक्री प्रतिदिन होता होगा?
2: हाँ प्रतिदिन मंडी होती है,
0: कहाँ पर जाता है?
2: ये सब सब्जियां जाती है दूधी मंडी
0: दूधी मंडी में?
2: जी हाँ। और कभी कभी जाती है रेणीकूट भी, मतलब फिलहाल में भी रेणीकूट बंद है, अभी फिलहाल में जाता है ज्यादा ही दूधी।
0: अच्छा, असल में ये जो खेत के उत्पादन करने के लिए जो खाद डालते हैं लोग, गोबर के, आप तो मुर्गी के भी डाल ले रही हैं, तो उसके लिए खेत में कब इसको डालना होता है, मतलब जुताई के बाद या जुताई से पहले?
2: उसको डालकर ही हम लोग यहाँ मतलब जोताई की जाती है, जब खेत खाली होता है सब्जी से तब डालकर उसको जोताई करते हैं अच्छे तरीके से कम 4 से 5 बार उसको जोताई होता है। एक इसके बाद मतलब खेती उसमें बुआई जाती है।
0: लोग बताता है कि आजकल यूरिया डीएपी डालने की वजह से खेत खराब हो रहा है, तो क्या ये डालने से अच्छा हो रहा है?
2: जी हाँ।

0: इसको डालने से फायदा ही है, और इसको कितना भी डाल देंगे खराब नहीं जल्दी होता है।
1: अच्छा। और कीटनाशक की का प्रयोग करती हैं इसमें, जो कीड़ा मकोड़ा लगते होंगे साग सब्जी में, तो ओके खातिर का प्रयोग करती हैं, बाजार के दवा लाती हैं या?
0: उसके लिए बाजार से ही दवा लाया जाता है,
1: अच्छा।
0: तभी उस सब्जी मतलब सही तरीका से ठीक होता है।
1: साग सब्जी अच्छा उत्पादन होए इसके लिए निगरानी प्रतिदिन करना पड़ता है।
0: जी हाँ, देखना ही पड़ता है, और उसको समय समय पर पानी भी देना पड़ता है, समय समय पर उसको साफ सफाई, जैसे खरपतवार हो गया उसको साफ करना ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो खरपतवार के लिए मतलब
0: स्वयं
1: निराई
0: हम
1: गुड़ाई
0: लोग,
1: करते हैं।
0: हाँ जी, हम लोग स्वयं निराई उसको करते हैं।
1: तो चूंकि रेडियो के माध्यम से बहुत लोग सुन रहे हैं, और कितने लोग काम करने से कोताही करते हैं, महिलाएं कहती हैं कि जो हम काहे करें, आप कमा के लाओ तो जन बाकी हम लोग खाली घर बना खाना बनाए खाए, तो ऐसा हमें का कहती हैं आप?
0: ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और स्वयं मतलब काम करने से स्वच्छ भी
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ठीक रहता है,
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: ना
1: हाँ
0: करने से भी मतलब कुछ बीमारियां आ
1: बीमारी
0: सकती है,
1: आती है।
0: और मतलब करना ही चाहिए, और दोनों को भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक लोग करेंगे एक लोग देखेंगे,
1: निश्चित रूप से
0: निश्चित
1: अगर
0: रूप से मतलब दोनों लोग के करना चाहिए।
1: अब एक गाड़ी के अगर एक टायर पंचर हो जाए तो गाड़ी नहीं कूदी, ठीक वही तरीके जो बाकी एक घर परिवार में अगर आदमी है, दोनों मिलकर जब काम करें हैं तभी घर के
0: हाँ,
1: गाड़ी
0: जब
1: चल
0: विकास
1: पाए,
0: होगा बढ़ेगा।
1: तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बातचीत चल रही। तो ये सब जो खेती किसानी करती हैं तो इसके माध्यम से आमदनी अच्छा हो जाता है,
0: जी हाँ, अच्छा होता है हम लोग के,
1: तो ये कैसे मन बना कि हम लोग खेती करना चाहिए?
0: हम लोग के देखिए यही मतलब शुरू से पढ़ाई लिखाई भी मतलब उतना ज्यादा टैलेंटेड थे, फिर भी मतलब सफल नहीं हो पाए पढ़ाई लिखाई में। तो हम लोग सोचे कि ऐसा किया जाए कि खेती किसानी मन से ढंग से करेंगे तो उसमें लगन
1: बिल्कुल
0: लगा
1: बिल्कुल
0: कर,
1: बिल्कुल।
0: तो इसमें इनकम हो सकता है, और
1: तो
0: हम लोग का अच्छा ही इनकम होता है खेती किसानी में।
1: पढ़ाई कितना तक की है?
0: हम लोग तो ऐसे मतलब 12 किए हैं, लेकिन फिर भी मतलब हम डिग्री कर रहे थे, मैं फाइनल मतलब नहीं कर
1: अच्छा
0: पाए,
1: अच्छा
0: लास्ट पेपर हम
1: वो
0: नहीं दे
1: बहुत
0: पाए।
1: बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई किए हैं। अच्छा, बहुत लोग पढ़ने वाले लड़के हों चाहे लड़कियां हों कहते हैं कि जो है कि हम पढ़े वाला है तो काम खेती किसानी काहे करी, का विचार है आपका?
0: इस पर विचार डालने के लिए ये हो जाता है कि हम लोग अगर नहीं पढ़ाई लिखाई कर पाए, उतना नौकरी नहीं ले पाए, लास्ट में यही ऑप्शन है खाने पीने का। फिर
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई कमा के लाएगा तो हम बैठे बैठे घर में खाएंगे, हम मेहनत करेंगे तब तो स्वयं खाएंगे ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से देखिए कर बहिया बला अपनी छड़ी बिरानी आस, जाकर घर आंगन है नदी सोकत मर्द प्यास। इतना अच्छी बातचीत हो रही थी नीतू देवी से और राधा देवी जी से। आप लोग स्वयं अपना घर का काम करते हुए अच्छे उत्पादन करने के काम कर पाते हैं, इतने अच्छा जानकारी और इतना अच्छा काम करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
2: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
4: गौरी भाई देखा कितना बढ़िया हम लोगों के नीतू देवी और राधा देवी बहन एकदम बात अपन घरे के बात बतौलन, तो वो तरीके से हम लोगों के भी अपन घरे में द्वारे में और आस पड़ोस में बता करके जगा करके काम करावे के बाद कि देखा जब तक महिला लोग घर के जगह नहीं तो कोनो काम बढ़िया से होके नहीं।
5: और भगेलू भैया कहा जा रहा ना कि एक एक मिल के 11 तो जब शक्ति है ये है, जब एक से एक इकट्ठा होके लगी है तो सबके हाथे में काम आई, सबका विकास हुई। और हमेशा हम लोग कहा जा रहा कि एक खेत पे दूसरा बाजार पे, तो आज के बाजार

0: हाँ हमरे हाथे लगल है मधुपुर सब्जी मंडी कहा पूर्णवासी चौहान भैया भेजले वहाँ कुंतल में है आगे कहते ना आप तो बता देती।
1: तो नेकी और पूछ पूछ।
0: वे देखा लाल आलू है 1200 रुपया कुंतल, सफ़ेद आलू है 900 रुपया, प्याज है 4500 रुपया, लहसुन है 11000
1: अच्छा,
0: और अदरक है 10000 रुपया कुंतल, धनिया है 13000, मिर्चा है 6000 रुपया, परवल है 5000 रुपया कुंतल, गोल बैंगन है 2700 रुपया, लंबा बैंगन है 1500 रुपया और बोरा है 3000 रुपया, करेला है 3200 रुपया कुंतल, भिंडी है 1800 रुपया, नेनुआ है 2200 रुपया, कोहड़ा है 1500 रुपया, लौकी 2000 रुपया, पालक 2500 रुपया, सूरन 3700 रुपया, फूल गोभी 3000 रुपया सैकड़ा और पत्ता गोभी 2200 रुपया सैकड़ा है, मूली 3200 रुपया कुंतल है और गाजर 3000 रुपया कुंतल, शिमला मिर्च है 6000 रुपया, चुकंदर है 3000 रुपया, नींबू है 300 रुपया सैकड़ा।
1: अच्छा, तो चला इतना बढ़िया जानकारी हम लोगन के मिली गई। तो हम तो कहते कि जब जानकारी मिल गई तो भैया लोगन के धन्यवाद देवल जाए, काहे कि हम लोगन के समय समय पर पाती देवलन। तो परशुराम यादव उनका संगतिया भैया के एक पचरा विधा में गीत गौनई बात, तो हम तो कहते कि बिना देर के लिए चला
0: ये
1: सुना ली।
0: समय नवरात्रि बा माई का 9 दिन का तो बढ़िया बाई कि हम लोग ये मौके पे सुना जाए इनका पचरा परशुराम यादव के संगाते लोग गावन।

0: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
1: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही, खेती का तरीका समझदार।
0: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
1: तो एक फसल पर निर्भर न रहें, गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निशुल्क प्राप्त करें।
0: किसान वही, खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
1: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: गौरी भाई देखा कितना बढ़िया हम लोगन के मन मनसाइन सुने के मिलल, और एहले पहले जोन जानकारी रहे वो जानकारी सुनल गईल। लेकिन देखा हम ही कहते हैं कि हम लोग गांव ग्राम में रहिला, हम लोगन के हर काम खेती बाड़ी से चलेला, और ओकरे साथे साथे खेती बाड़ी के संग हम लोगन के कुछ अर्थव्यवस्था भी बनावे के पड़ेला। जैसे कि देखा गांव ग्राम के जोन महिला बाटेन तो उ सबन के देखा भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जोन रीढ़ कहल गेल हवन। तो इवन की कहे कि हर काम देखा खेती से लेकर के बारी से लेकर के हाट बाजार से लेकर के हर तरह महिला अपन भागीदारी निभा रहल हवन।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और बहन लोगन देखा जन कहला कटाई मड़ाई निराई गुड़ाई भंडारण कर अनाज का और बाजारी का मतलब जांच कर बाजारी सामान पहुंचावल, और साथे साथे मिल करके बहुत बहन लोग जो ने के हम लोग स्वयं सहायता समूह तो मिल करके देखा जो अनाज का कैसे बनावे ली लोग पैकेट बनावे ली, अच्छा है टमाटर वमाटर जैसे फसल छोट बड़ छाटे ली बनावे ली दोनों को अलग अलग दाम मिलेला चमक बनल रहेला। तो बहुत मेहनत इन लोग का है, बहुत इन लोग का भूमिका है।
1: और देखा वही तरीके से ना अपन घरे के जोन उत्पादन अनाज होखेला हाँ, या साग सब्जी होला हाँ, यह से देखा अपन तरह तरह के व्यंजन बना करके जिसे देखा पापड़ हो गई दलिया हो गई और कई तरह के व्यंजन बना करके
2: अचार है मुरब्बा हाँ, है। और बहन लोगों तो देखा जो है कहा जाला की जो पशुपालन कर रही बहन लोगों ने देखा की दूध है दही है पनीर है जितना जितना आप दूध बेची है कमे दाम मिली, दही का तन ज्यादा दाम मिली और घी का और बढ़िया दाम मिली पनीर का और बढ़िया दाम मिली। तो ऐसे कहा है कि इनका रोजगार बढ़त चल जाला और एक के साथ एक जुड़ी है तो तीन चार पांच बहन इकट्ठा हो जाये और सबके हाथ रोजगार मिल जाये।
1: तो वही तरीके से ना कहल गेल बा कि देखा अपन घर के रीढ़ महिला हवन और अपन मन से कंधे मिला करके काम करेलन तो अपन दो पैसा के जुगाड़ बनावे के काम रखले रहलन। तो आज ऐसने बात हम लोग शामिल कैले है कि खेती में सशक्त होती महिलाएं प्रतिभागी में हवन। देखा रूबी देवी जो कृषि सखी हवन
2: हाँ।
1: और चंद्रावती देवी हवन, सरिता देवी और उनके साथ सावित्री देवी, देखा ये सब कृषि सखी हवन हर गांव से अपन अपन बात कही है। तो हम तो कहते कि बिना देर के लिए चलो सुन
2: जाए
1: और ममता त्रिपाठी इनसे बातचीत के लिए हमन
2: हम लोग सुन जाए।
3: किसान भाई देखें आज राष्ट्रीय महिला किसान दिवस है। आज हमारे साथ बहुत सी किसान बहनें हैं और उन बहनों का नाम आप सबको हम बताना चाहेंगे जो हमारी बहनें हमारे साथ हैं। चंद्रावती देवी जी टूरीडीह से हैं, रूबी देवी जी डुमरडीहा से हैं, सरिता देवी जी सायल से हैं और धनौरा से सावित्री देवी जी हैं। आप सब लोगों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आर्थिक रूप से मजबूत रहने के लिए खेती बाड़ी के साथ साथ हम लोग काम करते हैं और घर गृहस्थी का काम निपटाते हुए आप लोग किस तरीके से आप लोग खेती किसानी से जुड़ी और किस तरीके से अपना काम कर रही हैं जो इतना आगे

0: रखते हैं अपना। अच्छा। इसका रखने के लिए भी घर मिट्टी का अलग है, इनका बकरी का भी व्यवस्था अलग बना दी, बकरी का और सुगर का
1: पालन।
0: इसका साथ साथ हमने अपना खेती बाड़ी भी घर पे कर लेते हैं।
1: और चंद्रावती देवी जी, आपके आपकी बातों को हमने सुना, बहुत ही बहनों ने भी सुना होगा
0: जी।
1: साथ में अब रूबी देवी जी डुमरडीहा से आप क्या कहना चाहेंगी?
2: नमस्ते सभी को। देखिए दीदी, पहले हम लोग ये नहीं जानते थे कि हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं, हम लोग यह कर सकते। नारी लोग का जब संगठन बना, जब हम लोग आगे निकले बाहर, जो ये नारल में आया, वो हम लोग को प्रशिक्षण दिया कि पुरुषों के मामले में महिलाएं किसी भी मामले में कम नहीं है। पहले हम लोग को बोला जा रहा था कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी,
1: घर गृहस्थी के कामों के साथ साथ
2: तुम बाहर नहीं जाओगी।
1: बहुत बड़ी बात होती है कि
2: बहुत लोगों के लिए प्रेरणा बना कि कैसे महिलाएं बाहर जा रही हैं। कुछ लोग दबाव भी दिए कि लोग देखो तुम्हारी पत्नी बाहर जा रही है। हम लोग सोचे कि देखिए, दो पैसा आप कमा रहे तो दो हम लोग कमाएंगे तो चार हो जाएगा।
1: बहुत अच्छी सोच है।
2: दो आप कमाएंगे, दो हम कमाएंगे तो हम लोग कुछ और आगे जाएंगे। जब एनआरएल आया, दीदी लोग का समूह बनने लगा, तो लोगों ने भी बोला कि नहीं, महिलाएं नहीं जाएंगी, यहाँ से बाहर निकलेंगी, इन लोग ज्यादा जानकार हो जाएंगे। तो हम लोग बोले जानकार हो जाएंगे, आप ही लोग को तो फायदा होगा, दो आप कमा रहे हैं दो हम लोग कमाएंगे। जब एनआरएल आया, प्रशिक्षण दिया, तो हम लोग कुछ यहाँ से सीखे, कुछ घर से सीखे, तो कुछ खेती में भी फायदा हुआ, कुछ बकरी पालन में भी फायदा हुआ, कुछ मुर्गी पालन में। मेरे यहाँ गाय भी है, बकरी भी, मैं खेती भी करती हूँ, मुर्गी भी पालती हूँ।
1: अच्छा।
2: और एनआरएलएम से जुड़ के ड्राई राशन में भी काम करती हूँ। अच्छा। आजीविका सखी के पद पे ये जैविक खाद, जैविक दवाई का भी इस्तेमाल करती हूँ। मेरे यहाँ सब तरह की, इस समय मूंगफली है, मक्का है, धान लगा है, कम से कम 10-12 बीघा में मेरे यहाँ। मेरे यहाँ तिली है, रहर है, जो भी मतलब बुआता है, वो कोई ऐसा फसल
1: मतलब
2: नहीं है,
1: हर प्रकार की।
2: हाँ, लौकी है, बैगन है, टमाटर है, मेरे यहाँ कोई ऐसा सब्जी नहीं है जो मेरे यहाँ नहीं लगता है। अब मैं नहीं करती हूँ। इस समय आलू का बीज लगना है, प्याज का अथी हो रहा है, टमाटर बुआ रहा है, बैगन बंधा रहा है जो फलने वाला है, उसमें मक्का टूट रहा है, तिली छत पे मैं डाल के आई हूँ, इसीलिए परेशान हूँ कि घर जाऊंगी कब उसको उठाऊंगी, नहीं तो बोलेंगे तुम घूमते रहो, बारिश आएगा वो बिक जाएगा। इस तरह
1: हम लोग गृहस्थी के साथ साथ जो हम लोग जुड़े हुए हैं अपने खेती बाड़ी से, अपने मुर्गी पालन व्यवसाय से, तो हम लोगों को देखिए घर की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने बाहर की भी जिम्मेदारी निभाना बहुत बड़ी बात होती है। और सारी बहनें इसको निभाएं, इस चीज को समझें, आपकी बातों को हमारी बहनें भी इस अपने जीवन में उतारे।
3: रूबी देवी जी, आप बहुत अच्छा बात बताई कि घर गृहस्थी के साथ साथ आपने इतना अच्छा कार्य किया, मुर्गी पालन और खेती बाड़ी, सब्जी और भी जो फसलें हैं, तिलहन दलहन हर प्रकार का फसल आप उगा रही हैं अपने खेत में, और इतनी अच्छी बातें आपने बताई। उम्मीद करेंगे कि जो हमारी बहनें आपकी बातों को सुन रही होंगी, वो भी इस आपकी बातों को अपने जीवन में उतारे, आपसे कुछ गुण सीखें और जो भी आपकी जानकारी है उससे लाभ उठाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरता देवी जी, जो कि सायर से हम लोग के बीच में है, आप क्या कहना चाहेंगी इस विषय में?
4: जी नमस्ते। हम खेती बाड़ी इस समय धान लगा है, मक्का लगा है और मूंगफली लगा है। ज्यादा धान का खेती हम करते हैं और रहर का भी है।
1: अच्छा।
4: और तिल का भी है, उर्द भी है। सब इस समय कट रहे हैं, उर्द और तिल कट गए हैं।
1: अच्छा।
4: और उर्द काट के हम आए हैं और यही सब खेती कर रहे हैं। साथ में गाय भी है, बकरी भी है हमारे पास। इसी का मतलब बीट निकाल करके और पूरा धान में भी डालते हैं, गेहूं। अच्छा। में भी डालते हैं, फल सब्जी में भी डालते हैं। इसी के साथ मतलब हम लोग खाली जैविक खेती करते हैं।
1: अच्छा। घर गृहस्थी के कार्य के साथ साथ आप इतने बाहर भी इतना समय दे ले रही हैं
4: जी,
1: आपकी घर गृहस्थी के कार्य को कैसे निभाती हैं कि बाहर भी समय मिल जाता है?
4: बस अपना घर का भी काम कर करके, और घर में हमारे आदमी भी हैं, सब साथ में हम लोग मिलजुल के काम करते हैं।
1: आपको प्रेरणा कहाँ से मिला सरता देवी जी?
4: प्रेरणा हमारा समूह से भी मिला और घर के भी पहले के पूर्वजों का, मतलब हमारे सास ससुर हैं, वो लोग के भी सीख सीखे हम लोग। और एनआरएलएम में जब ट्रेनिंग होने लगा, उसमें भी आने जाने लगे, तो हम लोग को सीख मिला।
1: अच्छा। एनआरएलएम में किस किस चीज का प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया था?
4: हम लोग सब्जी का भी और धान का भी, गेहूं का भी सीख मिला। और ट्रेनिंग लिए।
1: अच्छा।
4: जैविक खाद भी बनाने के लिए सीखे, दवा भी बनाने के लिए, सिलाई भी करते हैं, कढ़ाई भी करते हैं।
1: अच्छा, मतलब हर प्रकार की शिक्षा आप लोग को एनआरएलएम में मिला था
4: जी।
1: तो आप
4: और
1: इतनी अच्छी
4: बत्ती भी बनाने के लिए हम लोग को सिखाए।
1: अच्छा। लाइट
4: और मिट्टी जाँच भी करने के लिए हम लोग को सिखाए।
1: अच्छा, मोमबत्ती बनाने के लिए
4: जी। और क्या कहते हैं, और मिट्टी जांच करने के लिए भी सिखाए हम लोग को, नमूना भी वो सब बताए।
1: चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई सरता देवी।

0: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सावित्री देवी जी जो कि धनौरा से हमारे बीच आई हैं, आप क्या कहना चाहेंगी, किस प्रकार से आप अपने घर गृहस्थी के कामों को देखते हुए अपने बाहर की खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हैं, अपना अनुभव हमें साझा करें।
1: नमस्ते सब दीदी को। देखिए दी कि जब से हम अपने घर में रहते थे, घर से तो पहले था कि महिला चौकट को लांघे ना, घूंघट में रहे। पर जब ये हमारा NRLM आया तो गांव घर में जब महिला लोग आ करके हम लोग के समूह में जोड़ने लगी, हम लोग भी घर में अपना बात किए कि हम लोग भी समूह में जुड़े।
0: अच्छा।
1: पर हमारे घर के जेम्स लोग पहले थे, पहले के तो कहते थे कि चौकट को न लांघे, अब बहू अभी तक घूंघट में रहे। पर बहुत प्रयास करने से हमारे जेम्स लोग माने, बाहर निकलने दिए, NRLM में जुड़े। 10 रुपया साप्ताहिक बचत पहले हम लोग किए।
0: अच्छा।
1: इसके 10 रुपया
0: समूह से जुड़ने के
1: NRLM समूह से जुड़ने के बाद 10 रुपया सप्ताह बचत किए।
0: अच्छा।
1: ये बचत करने से जिसे अपने आप में हम लोग में महिला लोग में मजबूती आया।
0: अच्छा।
1: एक महिला सशक्तिकरण मतलब ये हम लोग में संगठन बना, 12 दीदी लोग का एक गठन बना। 10 रुपया सप्ताह बचत करके जिसे आज किसी दीदी के पास कोई इमरजेंसी फसल है, पैसा उनके पास खाते में रह करके भी मौका पर नहीं मिल पाता। रात में यदि परेशानी है तो रात में तो बैंक वाला देगा ही नहीं,
0: बिल्कुल नहीं।
1: मगर हम लोग के समूह के जरिए अपने आप से हम लोग अपने को बैंक बने।
0: अच्छा।
1: एक 10 दीदी में से किसी दीदी का रात में चाहे दिन में कभी परेशानी पड़े, जहाँ दीदी इतना एक छोटा हम लोग का मतलब ये बिजनेस चालू हुआ 10 ही रुपया बचत करके, आज दीदी लोग के जैसे तब तक 1000-2000 का पैसा का जरूरत पड़ा रात या हो या दिन, उस समय हम लोग निकाल के दे दिए कि दीदी अभी अपना काम चलाइए। तो उस समय हम लोग का ही हुआ ना कि आज किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ा, आज रात में हमारा बैंक वाला तो देगा नहीं, अपना खुद के पैसा रख के भी हम लोग परेशान रहते हैं। यही NRLM में हम लोग जुड़ करके 2016 से जुड़े थे।
0: अच्छा।
1: 18 से हम ट्रेनिंग लिए, इसमें ट्रेनिंग लिए जैसे हर कोई घर देखे यदि खेती नहीं रहता है, खेती बहुत कम रहता है इस समय, खेती जनसंख्या बढ़ रहा है, जमीन बढ़ नहीं रहा है,
0: बिल्कुल।
1: तो खेती कम है तो थोड़ा सा ही जगह में आंगन में बोरी बगीचा के हम ट्रेनिंग मिला।
0: अच्छा।
1: जब जिनके पास खेती नहीं है वो बोरी बगीचा करिए।
0: अच्छा।
1: बोरी बगीचा करके हम लोग बोरी में ही सब्जी 5 प्रकार के लतेदार सब्जी उगा करके हम वो छतों पे अपने चढ़ा चढ़ा करके उसमें 5 प्रकार के सब्जियां खाते हैं।
0: अच्छा।
1: और उसमें खाने के साथ जब न उसमें समय है, लागत कम है, समय भी कम, बहुत बचत है, पानी का भी बचत है,
0: मुनाफा
1: उसमें ज्यादा है। और उसका घर गृहस्थी में घर में बैठल बैठल वो काम करना है। इसके साथ साथ मशरूम के भी हम लोग ट्रेनिंग लिए, मशरूम का भी खेती हम किए।
0: अच्छा।
1: जो घर में ही बैठ के इसका करना है, कहीं आना जाना नहीं है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो उसमें मशरूम का भी है जो घर में ठंडे जगह में करके मशरूम का भी उगाए, उसमें मशरूम उगा अच्छा तरीका से, उसका भी खेती हुआ, उसका ट्रेनिंग लिए थे।
0: अच्छा। मशरूम का भी।
1: इसके साथ साथ थोड़ा ही समय निकाल कर घर गृहस्थ को देखते हुए, अपना काम देखते हुए, ये नहीं कि हम अपने में निकल जाते हैं, घर गृहस्थ देख के ही बाहर निकलते
0: हैं। क्योंकि एक महिला होने के नाते महिला का पहला प्रथम कर्तव्य अपने घर गृहस्थी होती है,
1: घर गृहस्थ देखना।
0: घर गृहस्थी में अपने बच्चे हैं, अपना परिवार है, बड़े बुजुर्ग हैं,
1: सबको देखते हुए
0: अपनी गृहस्थी में किसी को कोई तकलीफ ना हो, शिक्षा है, बच्चों को शिक्षा देना, उनको स्कूल विद्यालय भेजना, और हर प्रकार का कार्य करते हुए आप लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और किस प्रकार से आप जो NRLM का जो आप प्रशिक्षण बता रही हैं, वो प्रशिक्षण प्राप्त करके आपने मुनाफा भी तो कमाया होगा।
1: मुनाफा भी कमाए इसमें हम, आज कहां से कहां पहुंच गए।
0: आज हमारे कार्यक्रम में चंद्रावती देवी टूरीडीह से और डुमरडीहा से रूबी देवी, सरिता देवी सायल से और धनौरा से सावित्री देवी जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और सबसे पहले आप सब लोगों को और सब किसान बहनों को इस दिवस का यानी कि राष्ट्रीय किसान महिला दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सब बहनें हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुटी, इतनी अच्छी बातें बताई, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्ते।
3: गौरी भाई देखा, हम लोगों के तरफ से भी धन्यवाद बा, कहे कि इतना बढ़िया जानकारी महिला होकर के देहलन।
2: हाँ।
3: और चलत चलाओ हम यो कहल चाहत है कि जब इतना काम करते हवन तो किसान महिला के स्वास्थ्य के जागरूकता के तरफ भी अपन ध्यान बढ़ोले के,
2: बिल्कुल सही कलम भगेल भैया कि जब काम ज्यादा बढ़ जाला तो स्वास्थ्य प्रभावित होला, तो बहन लोगन के काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखल बहुत जरूरी है। यही के साथ देखा कि अपने बैठक का समय अब समेटे का समय होता चल जा, तो सब पंचन के राम राम, राम।

अभी ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.7 पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: रामजीत भैया,
1: हाँ अनुराधा बहने।
0: देखो अपने सबके खेती पाती में काम बहुत जोरों पर है, तो हमहू बच्चे अपने खेती पाती की तैयारी के लिए इसी खातिन कटाई पिटाई के खातिन अपन हसिया खुरपा सब देखो भैया बिल्कुल तैयार के लिए है, पिटाई के रख लीन है। देखो अपन काम चाहे घर का हो चाहे बाहर हो, दोनों का मिल के करे चाहिए। तो अब देखो चाहे वो दुकान हो या कोई व्यवसाय हो या कहूँ बाहर कोनो काम काज शुरू करे के, तो देखो सब निकी तरह तरह कई रही है।
1: बिल्कुल बहने, जो उनका महिलाएं हैं ये अब कौनो क्षेत्र में पीछे नहीं है, और यही बदे इनके सम्मान की ताएं आज के दिन का राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनावा जा रहा है। और यही के ताएं देखो जोन अपने आसपास हो रहा है वही के जानकारी उन्हें मिल जात है, और
0: हाँ
1: ये सब जानकारी मिलत है आज की खबरें में।
2: उत्तर प्रदेश में किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान पाने का अवसर मिल रहा है। कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र किसान ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों, कृषि रक्षा उपकरणों और फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू हुई है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक किसान कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर किसान कॉर्नर में जाकर यंत्र बुकिंग प्रारंभ विकल्प चुनें, इसके बाद अपनी जरूरत के अनुसार कृषि यंत्र का चयन करें और मांगी गई जानकारी भरकर टोकन बुकिंग की प्रक्रिया पूरी करें। टोकन मिलने के बाद विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार अधिकृत विक्रेता से यंत्र खरीदें और जरूरी दस्तावेज जमा करें। विभागीय सत्यापन के बाद पात्र किसानों को नियमानुसार अनुदान दिया जाएगा। किसान आवेदन से पहले अनुदान की दर और पात्रता की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य जांच लें।
0: रामजीत भैया,
1: हाँ राधा बहनी,
0: देखो जहाँ पर हम पंचे बात अपनी खेती पाती की सब चीजन की कर चुकी हैं, हुए पर यहाँ अब हम पंचे रवि की फसल की देखो तैयारी कर रहे हैं, तो अब बात कर लीन जाए सब्जियों की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में।
1: बिल्कुल बहनी, और ई बात हम करित है आज की बातें माँ।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहाँ सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन आप कर रहे हैं, तो खास करके रबी मौसम में कौन कौन सी सब्जियां पैदा करें, इनकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सेकंड कटिया सीतापुर से वैज्ञानिक उद्यान डॉक्टर शुभम सिंह राठौर। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस समय जो रबी की सब्जियां पैदा करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो उनको क्या सलाह है आपकी?
4: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, उद्यान विभाग की और कृषि विज्ञान केंद्र की या विश्वविद्यालय के जितने भी समस्त हाईटेक नर्सरी हैं उनसे पौध प्राप्त कर सकते हैं हमारे किसान, जैसे कि टमाटर हो गया, मटर के बीज प्राप्त कर सकते हैं, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अगर उनको लगाना है तो उसके बीज और उसके पौध आप अभी प्राप्त करके और अपने खेत में डायरेक्ट रोपाई भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें जल निकासी पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मौसम का भी प्रतिकूल व्यवहार देखने को मिला है। तो हमें रिज पे अगर हम करें, जैसे कि आलू में हम करते हैं ट्रेंच और रिज और फरो मेथड से, तो उस प्रकार से करेंगे तो हमारा जो निकासी है जल की वो अच्छी बनी रहेगी।
3: जहां रबी में सब्जी मटर की खेती करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं, बीज की मात्रा कितना लगेगी, अंतरण क्या होगा और बुआई का समय क्या?
4: सामान्यतः जो

0: उन्नत प्रजातियाँ, जैसे आज़ाद मटर हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी से ये चलती है, काशी नंदिनी अच्छी वैरायटी है। अगर कोई पछेती खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए काशी समृद्धि इस टाइम पे उचित रहेगी, क्योंकि अभी सीजन अक्टूबर का आधा निकल चुका है, तो काशी समृद्धि जो है लेट वैरायटी है, तो उसके लिए काफ़ी उपयुक्त रहेगी। साथ ही साथ जो 30 से 40 किलोग्राम तक का प्रति एकड़ जो है हमारा सीड रेट रहता है, और स्पेसिंग जो है आप अगर लाइन सोइंग कर रहे हैं तो पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिससे कि पौध का विकास बेहतर होता है।
1: एकड़ में पैदावार कितनी मिल जाती है सब्जी मटर की?
0: कम से कम 40 से 50 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार हम ले सकते हैं, अगर हमने अच्छी तकनीक फॉलो की है तो।
1: आलू की बुआई का भी समय चल रहा है?
0: जी, आलू की भी बुआई का समय चल रहा है, तो कुफरी पुखराज हो गया और कुफरी बहार अच्छी एक वैरायटी आई है, तो कम से कम इसका 10 से 16 कुंटल प्रति एकड़ हमें बीज की मात्रा लगती है। स्पेसिंग की अगर हम ध्यान रखें तो इसको जिस प्रकार बताया, रिज और फरो मेथड से हमें करना चाहिए, तो जो हमारी पंक्ति है उसकी 60 सेंटीमीटर की दूरी रखें और
1: यानी
0: पौध
1: लाइन
0: से,
1: से लाइन की दूरी
0: जी
1: 2 फीट।
0: 2 फीट के लगभग लगभग रखें, और पौध से पौध की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर हम रख सकते हैं। इससे क्या कंद का विकास बढ़िया होता है। अगर हम बात करें इसकी उपज की, तो 120 से लेकर के 150 कुंटल प्रति एकड़ हम अगर उन्नत कृषि तकनीक का करते हैं तो मिल जाएगी।
1: जहां टमाटर पैदा करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या अभी भी नर्सरी डाल सकते हैं या
0: जी,
1: हाईटेक नर्सरियों से पौध लेकर के रोपाई कर दें?
0: अगर किसान अपनी नर्सरी में अगर टमाटर लगाना चाहते हैं तो अभी भी वक्त है, नर्सरी लगा सकते हैं, और सबसे उपयुक्त रहेगा कि वो हाईटेक नर्सरी से पौध अपने लिए, अपने खेत के लिए ले लें और डायरेक्ट रोपाई कर दें। अगर किसी को अच्छी खेती या टमाटर की अच्छी किस्म के बारे में जानना है, तो मैं कहूँगा कि काशी अमन एक अच्छी वैरायटी, एक ओवरऑल जो है साबित हो रही है। काशी अभिमान का भी एक अच्छा रिस्पॉन्स आया है, लेकिन काशी अमन जो है काफ़ी अच्छी वैरायटी है, जिसका लगभग लगभग 160 ग्राम प्रति एकड़ बीज हम लगा करके उसका पौध तैयार कर सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर दूरी की बात की जाए तो 45 सेंटीमीटर पौध से पौध रहती है और 60 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति दूरी हमें बरकरार रखनी चाहिए। जी
1: यानी 2 गुणे 1.5 फीट
0: जी
1: की दूरी
0: दो
1: हो।
0: फीट की दूरी और 2 फीट की पंक्ति से पंक्ति दूरी और 1.5 फीट की जो है पौध से पौध की दूरी हमें रखनी चाहिए।
1: जहां गोभी वर्गीय सब्जियां लगाना चाहते हैं किसान भाई बहन, खास करके फूल गोभी, पत्ता गोभी,
0: फूल गोभी और पत्ता गोभी लगभग लगभग अभी वक्त है, आप लगा सकते हैं, नर्सरी भी लगा सकते हैं, चाहे तो अपने पौध हाईटेक नर्सरी से ले लें ताकि अगेती हो जाए। इसके अगर उन्नत किस्म की बात करें तो फूल गोभी की जैसे पूसा दीपाली अच्छी एक किस्म है, पंत शुभ्रा भी बहुत अच्छी किस्म है, जो कि उत्तर प्रदेश की जलवायु के हिसाब से काफ़ी अच्छी फलित होती है।
1: और पूसा कत्की भी।
0: पूसा कत्की भी बहुत अच्छी उन्नत किस्म है। अगर इसका बीज दर की बात करी जाए तो 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ तक का बीज लगता है
1: यानी नर्सरी। हाँ,
0: नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए। अगर हम बीज बुआई करें तो 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ बीज हमको लगता है।
1: और अगर पौध तैयार है या हाईटेक नर्सरी से ले रहे हैं तो रोपण दूरी लाइन से लाइन की दूरी?
0: पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों में ही हमको जो है 2 फीट से 1.5 फीट की दूरी हमें लगानी चाहिए, लाइन से लाइन 2 फीट और पौध से पौध 1.5 फीट की दूरी हमें बरकरार रखनी चाहिए।
1: पत्ता गोभी की उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं डॉक्टर साहब?
0: पूसा ड्रम हेड है, प्राइड ऑफ इंडिया है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, और मैं सलाह दूंगा कि लोकल जो अवेलेबल पौध जो हाईटेक नर्सरी से उपलब्ध हैं वो भी लेकर के किसान अगर लगाएंगे तो एक बढ़िया उनको किस्म मिल जाएगी।
1: यानी 1 महीना पहले फसल तैयार हो जाएगी और उस समय बाजार भाव अच्छा रहेगा।
0: जी बिल्कुल।
1: डॉक्टर साहब, जहां गाजर, मूली और धनिया पैदा करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो बुआई का समय चल रहा है,
0: जी,
1: कौन कौन सी प्रजातियां चुने?
0: गाजर की अगर बात करें तो काशी अरुण और काशी कृष्णा किस्म है। मूली की अगर बात करें तो काशी मूली 40 एक अच्छी किस्म है, अगर हम मध्य और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें। और धनिया में पंत हरिथीमा और हिसार सुगंध अच्छी किस्म है। अगर बीज दर की बात करें तो गाजर में 2.5 से 3 किलोग्राम बीज दर लगता है,
1: प्रति एकड़।
0: जी प्रति एकड़ लगता है, और उसी प्रकार से मूली में भी 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज दर होता है। धनिया की बात करें तो 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज दर है।
1: और लाइन में बुआई अगर करनी है तो?
0: सीधी सी बात है कि अगर लाइन से बुआई करनी है तो पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर लगभग होनी चाहिए, लाइन से लाइन जो है 1 फीट की अमूमन होनी चाहिए।
1: जितना जल्दी से जल्दी हो सके किसान भाई बहन बुआई करें, जहां

0: मेथी की बुआई करनी है तो उसके लिए क्या सलाह है?
1: पूसा अर्ली बंचिंग एक काफ़ी उन्नत किस्म है, तो वो किस्म लगा सकते हैं। इसका जो 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज दर है, और 20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति, लाइन से लाइन, और 10 सेंटीमीटर पौध से पौध दूरी रखें, तो बेहतर उपज मिलेगी। कम से कम 40 से 50 पत्तियां का जो कुंटल प्रति एकड़ है, पत्तियों का जो हमें उपज मिलती है, वो हमें मिल जाएगी।
0: डॉक्टर साहब, जहाँ भी पौध लेकर के रोपाई करनी है या नर्सरी तैयार करके रोपाई करनी है या सीधी बुआई करनी है, तो बीज शोधन और भूमि शोधन भी तो आवश्यक है।
1: बिल्कुल, बीज शोधन और भूमि शोधन अति आवश्यक है। अगर हमें फफूंद नाशक या कवक नाशक से अगर हमें बीज को बचा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आगे चल के रोग नहीं आएगा। उसी प्रकार से अगर हम बीज शोधन करते हैं तो ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हार्जियनम जो है आपका, 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके 10 से 15 मिनट आप बीज को उसमें शोधित कर दें और फिर रोपाई करें, तो जो
0: यानी
1: आपका
0: पौध जड़ उपचार करें,
1: जी पौध जड़ उपचार भी करें और बीज उपचार भी करें, दोनों
0: बीज उपचार तो सूखा भी कर सकते हैं।
1: जी। सूखा भी कर सकते हैं अगर आप पाउडर से कर रहे हैं, लेकिन क्या है अगर हम द्रव्य में कर रहे हैं तो वो अच्छे से लेप जो है बीज पे
0: यानी
1: कोटिंग हो
0: कोटिंग
1: जाती
0: हो
1: है
0: जाएगी अच्छी।
1: जी।
0: और अगर भूमि शोधन करना है तो
1: भूमि शोधन करना है तो हमें सबसे पहले ट्राइकोडर्मा हार्जियनम जो है 2 किलोग्राम 100 किलो गोबर में मिला करके गुड़ के साथ, आप आधा किलो गुड़ ले लीजिए और उसमें मिला करके अच्छे से आप रख दीजिए 3-4 दिन के लिए या 48 घंटे के लिए कम से कम, और फिर उसके बाद आप जो है इसको सीधा
0: अंतिम
1: खेत में
0: जुताई के समय खेत
1: अंतिम
0: में।
1: जुताई के समय लगा दीजिए, जिससे कि आपका जो है प्रचुर मात्रा में आपके लाभकारी जो सूक्ष्म जीव हैं उनका वहाँ पे फैलाव हो जाएगा।
0: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे रबी सब्जियों की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: जी, मेरा मोबाइल नंबर 88 27 57 82 53, 88 27 57 82 53, 88 27 57 82 53।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का रबी सब्जियों की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में? डॉक्टर साहब,
1: मेरा ये आह्वान है कि उर्वरक संतुलित मात्रा में उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा जैव उर्वरकों का उपयोग करें, और 30 से 45 दिन के बाद आप चाहें तो नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं, 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके पर्णीय छिड़काव करें, तो इससे जो आपकी मुख्य यूरिया और डीएपी की जो दानेदार होता है उसकी आधी मात्रा ही आपको लगेगी। तो यही मेरा सबसे बड़ा सुझाव है
0: और
1: इस
0: आजकल जल विलेय उर्वरक भी आ गए हैं।
1: जी। अगर किसी के पास ड्रिप इरिगेशन है या टपक सिंचाई विधि का पूरा सिस्टम है तो वो फर्टिगेशन के माध्यम से भी जो है द्रव्य में मिला करके सिंचाई के माध्यम से पोषक तत्व तो दे सकते हैं।
0: डॉक्टर शुभम सिंह राठौर, आज आप कार्यक्रम में आए और रबी सब्जियों की उन्नत कृषि तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को सम्मान, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: रामजीत भैया।
4: हाँ राधा बहनी।
3: देखो और सब चीजों के देखो बातचीत तो हुई गया है, अब कुछ बात अपनी गीत गुने की हुई जाए।
4: यह समय देवी माँ के निवर्ता चल रहा है तो सुन जाए एक पचरा अंजू भारती बहनी की आवाज माँ।

0: अनुराधा बहनी,
1: हाँ रामजीत भैया,
0: देखो खेती पाती तो हम सब पंच करी थे,
1: बिल्कुल
0: मूल बहुत से किसान ऐसा है
1: हाँ
0: जो धीरे धीरे अपने खेती में इतना निपुण हो जाते और
1: हाँ
0: इतना आगे बढ़ जाते कि वह पूरे गांव घर में एक मिसाल बन जाते। और
1: बिल्कुल
0: वह सिर्फ ना अपन खेती बढ़िया करे थे बल्कि सब पंच का बतौबो करे थे और उन्हें आगे बढ़ावा थे। और
1: बिल्कुल
0: वही का हम पंच बात करी थे आज के किसान में।
2: किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं सीतापुर जनपद के बिसवां ब्लॉक के तेंदुआ गांव, जहां की महिला किसान सुधा रानी तोमर टेलीफोन लाइन पर हैं। सुधा रानी बहन नमस्ते।
3: नमस्ते जी।
2: ये बताएं कि आप एक महिला किसान हैं
3: जी,
2: आपकी पढ़ाई लिखाई कहां तक हुई और खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
3: मेरी पढ़ाई इंटर पास हूँ और मेरे पति सर्विस करते थे, मेरे पास खेती पहले से ही थी तो मुझमें मतलब कोई देखने वाला नहीं था, मेरे ससुर बुजुर्ग थे, तभी से मेरा लगाव हुआ कि मैंने निकल के अपनी खेती खुद संभाली।
2: यानी कितने साल पुरानी बात है
3: ये? लमसम 35 साल से कम मैं खुद देख रही हूँ।
2: कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
3: मेरे पास 12 एकड़ से कुछ ज्यादा है।
2: तो 12 एकड़ में इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
3: 12 एकड़ मेरे पास धान भी है, मेरे पास गन्ना भी है और कुछ खाली उसमें है, तो मैंने पेड़ पौधे सब लगा रखे हैं।
2: तो कितना कितना रकबा धान और गन्ने का है?
3: लमसम करीब 2 एकड़ तो मेरे पास बाग है
2: जी,
3: और बांस भी मैंने जो धनिया बोलते हैं वो भी मैंने लगा रखी है, और 3 एकड़ के करीब मेरी गन्ना ना है और काला नमक धान भी लगाया हुआ है।
2: तो धान की कौन कौन सी वैरायटी है काला नमक के अलावा?
3: बासमती धान है और जो बिक्री के लिए अच्छा पैसा मिलता है वो मोटा धान लगा रखा है, बाकी मैंने लमसम 1.5 एकड़ काले नमक लगा रखा है।

0: गन्ने की कोई खास वैरायटी लगाती हैं?
1: गन्ने की वैरायटी हमने फैक्ट्री से लिया था।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो उन्होंने ही दिया था, अपने फैक्ट्री से ही लेते हैं, बिस्मा फैक्ट्री में ही लगती है।
0: तो जो लेटेस्ट वैरायटी है वो आपके खेत में है,
1: हाँ वो है मेरे इसमें, हम
0: क्या
1: उत्पाद में
0: खासियत
1: वो
0: महसूस कर रही हैं जो नई वैरायटी का गन्ना लगाई है?
1: इसमें उत्पादन अच्छा होता है, फैक्ट्री हमारी जल्दी ले लेती है। ये नहीं कि हमारा आज हमारा गन्ना खड़ा है उसका 6 महीने रिजेक्ट वैरायटी में लगाएंगे तो उसके अच्छे पैसे भी नहीं मिलते। ये हमारे आ गए, और उसमें अगौड़ा जो होता है वो भी जानवरों के लिए छीलने वाले होते हैं, वो भी अच्छे लोग छील लेते हैं। और जो वैसी रिजेक्ट वैरायटी में लगाते हैं उसमें अगौड़ा नहीं होता, गन्ना सूखता भी बहुत है और वो गिरता भी बहुत है, उसमें चीनी भी कम निकलती है, उसको फैक्ट्री वाले लेते बहुत कम है।
0: जो पैदा करती हैं उसको बेचती कहाँ है?
1: बेचते क्या, हम अपने मंडी भेज देते हैं, बाकी हम अपना ऐसा रखते हैं कि चावल जैसे हमको खाने हैं कम से कम 5-6 साल पुराने हम चावल खाते हैं।
0: जो 12 एकड़ की आपकी खेती है तो पूरे साल में लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेती हैं और आपका मुनाफा
1: उत्पादन
0: होता कितना है
1: हाँ, मुनाफा क्या 25 क्विंटल एकड़ धान,
0: और बचत कितना होती है?
1: बचत इसमें मान लीजिए हमको 60% बचत हो जाती है सब लागत निकालने के बाद।
0: और गन्ने
1: अपना
0: में?
1: गन्ने में तो 70-75 हो जाती है, गन्ने में ज्यादा लागत नहीं क्योंकि एक ही बार लगाना पड़ता है, दोबारा से केवल गुड़ाई करवानी पड़ती है, उसका औसत अच्छा आता है।
0: कुल मिला जुला करके आप खेती करके खुशहाल हैं?
1: बहुत खुशहाल है
0: आज राष्ट्रीय महिला किसान दिवस है,
1: जी
0: जो किसान बहनें खेती में जुड़ी हैं
1: जी
0: उनको क्या कहना चाहेंगी?
1: उनको हम यही कहेंगे घर से निकलें, किसी के सहारे ना रहें, ये शर्म ना करें कि हम खेत जा रहे हैं या खेत में हमारे पास पैसा है सब कुछ, हम खेती ना देखें, जो करने वाला खुद करें, नहीं करने वाला हम अपने लेबरों से करवा लेंगे। मतलब खुद अगर देख रेख नहीं करेंगे तो कभी भी खेती में कुछ नहीं हो पाएगा, अपने आप देखेंगे तो उसमें बहुत प्रॉफिट है, अपना अच्छा खाएंगी, अपना अच्छा पहनेंगी और खुद सक्षम रहेंगी।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: मेरा मोबाइल नंबर है 7905185080, 7901-5180, 7901-5180।
0: सुधा रानी तोमर बहन, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान भाइयों बहनों, आइए अब आपको ले चलते हैं सीतापुर जनपद के मछरेहटा ब्लॉक के गोड़ा गांव, जहां ड्रोन दीदी सुनीता वर्मा टेलीफोन लाइन पर है। सुनीता बहन नमस्ते।
7: नमस्ते डॉक्टर साहब।
6: सुनीता बहन, ये बताएं कि आपका खेती से जुड़ाव हुआ कब से और ये ड्रोन दीदी कब बनी?
7: हमारा डॉक्टर साहब खेती से जुड़ाव हुआ था 2011 से और ड्रोन दीदी बने थे 2023 में, और इसके बीच में हम मतलब कुछ महिलाओं के साथ में भी काम करते थे, जैसे पंचगव्य से दिया वगैरह बनवाते थे, हर्बल गुलाल है, जैसे भी दीपावली आ रही है तो गाय के गोबर से दीपक वगैरह भी बनवाते हैं।
6: अच्छा
7: जी,
6: तो क्या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला किसानों को जोड़ी है क्या?
7: जी जोड़ रखे हैं डॉक्टर साहब, बहुत सारी महिलाएं को मतलब वही कृषि विज्ञान केंद्र कटिया ले जाके हमने प्रशिक्षण दिलाए हैं, और इसके साथ में मतलब हम खुद अपना बनाते हैं और सेल भी करवाते हैं।
6: तो इसका कहीं से प्रशिक्षण आपको मिला होगा?
7: प्रशिक्षण वही कृषि विज्ञान केंद्र कटिया से मिला था।
6: ये ड्रोन की शुरुआत कब से हुई कि खेती में ड्रोन का प्रयोग करें, इसके लिए कहीं से प्रशिक्षण आपको मिला होगा?
7: जी ये ड्रोन की जानकारी वही कृषि विज्ञान केंद्र में जो हमारे डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी ने बताया था, फिर वो फार्म डाले थे, फिर हमारी ट्रेनिंग अक्टूबर 2023 में हुई थी इलाहाबाद फूलपुर, 15 दिन की एक बार हुई थी, फिर एक हफ्ता फिर बुलाए थे, वो प्रधानमंत्री जी का इवेंट था तब।
6: तो अब आप ड्रोन के माध्यम से खेती की सेवा

0: और किसान भाइयों बहनों की सेवा कर रही हैं।
1: जी, जैसे अभी इस समय धान है, बहुत सारा रोग इस समय जो धान पक गए हैं या कोई पकने वाले हैं, उनमें गंधी की दवा अभी डाल के कल ही आए हैं। तो जैसे किसानों को ये लगता है कि हम अगर पीठ पे मशीन लाद के स्प्रे करते हैं तो हमारा समय भी बर्बाद होता है और पानी भी ज्यादा लगता है। और एक ड्रोन से है कि जो 1 एकड़ में उनका पूरा दिन जाता है, 2 लेबर 1 एकड़ में पूरे दिन में काम करते हैं, वो हम 20 मिनट में काम करके मतलब खत्म कर देते हैं।
0: तो आपकी दिनचर्या है क्या रोज की रोज?
1: सीजन पे तो हमारा पर डे का काम रहता है, और अगर अभी दीपावली आ रही है उसका काम करेंगे, अपना दीपावली का सामान अपना बनाना शुरू करेंगे।
0: जो खेती में आप ड्रोन दीदी के रूप में काम कर रही हैं और पंचगव्य से दिया बना रही हैं, तो
1: जी,
0: इससे पूरे साल में कितनी आमदनी हो जाती है आपकी?
1: सब दोनों का मिला के 1 लाख रुपया हो जाता है आमदनी। इससे हमारी आजीविका भी चल रही है, हमारे बच्चे मतलब अच्छी एजुकेशन पा रहे हैं, और किसी के आगे मतलब ये नहीं है मैं जरूरत है तो हाथ फैलाना पड़े।
0: जो अब तक का आपका तजुर्बा है ड्रोन दीदी के रूप में, उसके आधार पर और किसान बहनों भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगी?
1: यही चाहते हैं कि अगर हम ड्रोन दीदी हैं तो हमारी और भी बहनें बन सकती हैं ड्रोन दीदी।
0: आज राष्ट्रीय महिला किसान दिवस है,
1: जी,
0: इस अवसर पर जो किसान बहनें हैं उनको क्या कहना चाहेंगी?
1: हमारी पहचान ड्रोन दीदी के नाम से है। पूरे पटल पे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बात की गई, मन की बात में 110वां एपिसोड है, उसमें हमारी बात हुई। तो अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो हमारी अन्य महिलाएं भी बढ़ सकती हैं। बस उनके अंदर हौसला होना चाहिए कि हमें कुछ करना है अपने लिए।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 7460079761, 7460079761, 7460079761।
0: सुनीता वर्मा बहन, आज के किसान क्रम में आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई। आप 15 साल पहले खेती से जुड़ी और आज ड्रोन दीदी बनकर के अन्य किसान

0: मिला जुला करके खुशहाल हैं और किसान भाई बहनों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
1: अनुराधा बहनी।
2: हाँ रामजीत भैया,
1: देखो अपने खेती पाती में मौसम के हाल चाल जौन है वो जानब बहुत जरूरी है, तो तनी मौसम की जानकारी दे दीन जाए।
2: भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार अगले 7 दिनन का वर्षा पूर्वानुमान पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तारीख यानी आज 15 और 16 तारीख का कहूं कहूं पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़े की संभावना है। 17, 18 और 19, 20 और 21 तारीख का संभाग में मौसम शुष्क रहे की संभावना है। चेतावनी में भी 15 तारीख यानी आज और 16 तारीख का कहूं कहूं पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ झोंकेदार हवा चले की संभावना है। 17, 18 और 19, 20 और 21 तारीख का कोनो चेतावनी नहीं है। तो ई रहा भैया मौसम का हाल।
1: देखो बहनी, अपने पंच भाई आपन अगर कुछ बात कहे चाहत है तो ओकरी तय लिख लिए पता।
2: कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ, पिन कोड है 226001। तो यूरा भैया पता।
1: और यही के साथ जे पंच भाई मेल लिखे चाहे वे मेल लिखे farmandhome@gmail.com। और देखो अब अपने बैठकी का समय हो रहा है तो पंचन से लीन जाए आज्ञा।
2: जय हिंद, हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। शाम के 7:20 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले प्रदेश के 24 खिलाड़ियों समेत भारतीय दल से किया संवाद, कहा खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मुहैया करा रही है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में स्वच्छता कार्मिकों को सुरक्षा बीमा और भविष्य निधि देने का किया ऐलान। प्रयागराज में गरीबों के लिए 602 आवासों का किया भूमि पूजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिवसीय लखनऊ दौरे के पहले दिन फैजुल्लागंज में बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री, कहा पीड़ितों को हर संभव मदद करेगी सरकार। और प्रदेश में आज से मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखना हुआ अनिवार्य, पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया फैसला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से संवाद किया। इस दल में उत्तर प्रदेश के 24 खिलाड़ी भी शामिल थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में खेल सुविधाओं के लिए पारदर्शी सिस्टम बनाया है। खेलो इंडिया नीति के तहत बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों को हर तरह की खेल सुविधा दी जा रही है।
1: खेलों के लिए

0: एक पारदर्शी और आधुनिक इकोसिस्टम बनाया। हमने खेलो इंडिया स्कीम शुरू की, समय के साथ इसका दायरा और व्यापक बनाया। आज देश में 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर बनाए गए हैं। एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, स्विमिंग पूल, हजारों ऐसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे बड़े शहरों में बन रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में नगर निगम व जल निगम के स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ काशी मिशन को धरातल पर उतार रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कार्मिकों को न्यूनतम 16,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा।
2: कॉरपोरेशन कार्य कर रहा है, न्यूनतम मानदेय की घोषणा भी कर दी, 16,000 रुपये न्यूनतम मानदेय उनको मिलना ही चाहिए। ईएसआई के तहत उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल की सुविधा भी मिलनी चाहिए और साथ साथ ये भी व्यवस्था कर दी गई है कि उन सभी कार्मिकों को सुरक्षा बीमा का भी एक कवर मिलेगा।
1: मुख्यमंत्री ने आज मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किए और गंगा घाटों पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व सांसद महाशय मसूरियादीन पासी की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकास व विरासत पर विश्वास करने वाली सरकार महापुरुषों को विस्मृत नहीं करती।
3: महापुरुषों को सम्मान देकर के ही कोई समाज आगे बढ़ सकता है। भूत को सम्मान देकर के ही हमारा वर्तमान संवर सकता है और वर्तमान संवरेगा तो अपने आप ही भविष्य अच्छा उज्ज्वल हो जाएगा। और उसी भूतकाल की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री ने यहां माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर 602 आवासों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को आवास की चाबियां भी वितरित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे। श्री सिंह ने फैजुल्लागंज में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस कठिन समय में पीड़ितों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवश्यक तटबंध के निर्माण के लिए 182 करोड़ रुपए की घोषणा की है।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत 182 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी बंदी के निर्माण करने के लिए। जल्दी से जल्दी इसका शिलान्यास भी होगा। आप आश्वस्त रहिए, हम लोगों के रहते बाढ़ के संकट से फैजुल्ला गंज को उबारने में धन की कमी नहीं आने पाएगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिला, जहां तक हो सकेगा, जितना बन सकेगा, इस संकट की घड़ी में हम लोग पूरी तरह से आप सबकी सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी केंद्र वाराणसी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कार्यक्रमों की गुणवत्ता, श्रोताओं की संख्या में वृद्धि और राजस्व बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। समीक्षा बैठक में महानिदेशक ने काशी की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करने पर जोर दिया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 और 24 अक्टूबर 2026 को लखनऊ में आयोजित होने वाली क्षमता विकास आयोग की क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह भी उपस्थित रहेंगे। इस 2 दिवसीय आयोजन में उत्तरी क्षेत्र के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक दक्षता आधारित क्षमता विकास संस्थानों के रूप में विकसित करने पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन

0: जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि देश में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए लोगों को सुलभ और त्वरित न्याय मिलने की राह आसान हुई है।
1: 1 जुलाई 2024 से देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुरानी न्याय व्यवस्था की जगह ली है। नए कानून समय सीमा के अंदर पीड़ितों को न्याय दिलाने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए कानून जनता के लिए की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करते हैं।
2: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं।
1: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता विपिन शुक्ला ने नए कानूनों को मानस प्रक्रिया आसान हुई है
3: कि ये जो नए संशोधित कानून है इसमें आम जनमानस को राहत मिल रही है। जो पुलिस की प्रक्रियाओं में लेट लतीफी थी उसमें भी बहुत ज्यादा सुधार हुआ है।
1: नए आपराधिक कानून नागरिक केंद्रित अधिक सुलभ और कुशल न्याय प्रणाली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
0: प्रदेश में आज से मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य हो गया है। यह नियम सिर्फ पैक्ड मिठाइयों तक सीमित नहीं है बल्कि बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित खुली मिठाइयों पर भी उपयोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ रोशन जैकब ने 27 सितंबर को इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया था। शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन आज माता के पांचवें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। सोनभद्र में प्रसिद्ध ज्वाला देवी मंदिर में नवरात्र में बड़ी संख्या में स्थानीय और आसपास के जिलों से भक्त पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: जनपद सोनभद्र में शारदीय नवरात्र बड़े ही धूमधाम से भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। जनपद की ज्वालामुखी मंदिर, वैष्णो मंदिर, कुंडवासिनी धाम, अमिला धाम समेत देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जनपद की सीमाएं 4 राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ से मिलती हैं, लिहाजा पड़ोसी राज्यों के भी श्रद्धालु जनपद के विभिन्न देवी मंदिरों में पूजन अर्चना के लिए आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मनोज कुमार सिंह, आकाशवाणी समाचार, सोनभद्र।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले प्रदेश के 24 खिलाड़ियों समेत भारतीय दल से किया संवाद। कहा, खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मुहैया करा रही है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में स्वच्छता कार्मिकों को सुरक्षा बीमा और भविष्य निधि देने का किया ऐलान। प्रयागराज में गरीबों के लिए 602 आवासों का किया भूमि पूजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिवसीय लखनऊ दौरे के पहले दिन फैजुल्लागंज में बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। कहा, पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी सरकार। और प्रदेश में आज से मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखना हुआ अनिवार्य। पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया फैसला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन हो सकता है। कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के।
1: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। शाम के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है मिले जुले फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बाबुल सुप्रियो और अलका के साथ साथियों की आवाज में इस गाने को, जिसे हमने लिया है फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी से।

0: मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
1: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
3: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही, खेती का तरीका समझदार।
2: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
3: तो एक फसल पर निर्भर न रहें, गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निशुल्क प्राप्त करें।
2: किसान वही, खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
3: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
4: संदेशों से पहले आपने सुना केके की आवाज में फिल्म फ्रिकी चक्र के गाने को। आप हैं आकाशवाणी ओबरा के साथ FM 102.7 पर और इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:51 हुए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस और कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए फिल्म अफलातून के इस गाने को अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
2: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही, खेती का तरीका समझदार।
1: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
2: तो एक फसल पर निर्भर न रहे, गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निशुल्क प्राप्त करें।
1: किसान वही, खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
2: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
3: सुनिधि चौहान और सोनू निगम की आवाजों में अब लीजिए सुनिए फिल्म फना के इस गाने को।

अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान और सोनू निगम की आवाजों में फिल्म फना के इस गाने को। और इसी अंतिम गाने के साथ समाप्त होता है मिली जुली फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। FM 102.7 पर रात्रि के 8 बजे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत में कुछ चुनिंदा गजलों को। तो सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं भूपिंदर सिंह की आवाज में इस गजल को।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY वाई कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
4: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही, खेती का तरीका समझदार।
3: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
4: तो एक फसल पर निर्भर ना रहें, गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निशुल्क प्राप्त करें।
3: किसान वही, खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
4: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
5: संदेश से पहले आपने सुना भूपिंदर सिंह की आवाज में इस नज्म को। आकाशवाणी के उपग्रह केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में इस गजल को।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: संदेश से पहले आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज में एक गजल, और इसी के साथ अब संपन्न होता है कार्यक्रम सुगम संगीत का ये अंक। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम

फिल्म संगीत और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी के इस गाने के साथ। आवाज है सोनू निगम की।

0: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
1: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही खेती का तरीका समझदार।
0: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
1: तो एक फसल पर निर्भर न रहें, गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निःशुल्क प्राप्त करें।
0: किसान वही, खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
1: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: प्रफुल्ल दवे, सपना अवस्थी और सुदेश भोसले की आवाजों में अब लीजिए सुनिए फिल्म क्रांतिवीर के इस गाने को।

और इसी अंतिम गाने के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये अंक। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर।

इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 और 16 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे कुछ गैर फिल्मी गीतों को। तो लीजिए, सबसे पहले सुनिए सतिंदर सरताज की आवाज में इस गैर फिल्मी गीत को।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY, why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आकाशवाणी के उबरा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए एक और गैर फिल्मी गीत आदित्य रिखरी की आवाज में।

0: सतिंदर सरताज के गाए इसी अंतिम गैर फिल्मी गाने के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना के लिए संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र खरीदे जाएंगे। सरकार ने पहली नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित

0: करना अनिवार्य किया। सेंसेक्स 2% से अधिक बढ़कर 74,316 पर बंद हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की, कहा देश वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नई प्रौद्योगिकियों को सीखने के अवसर और दूसरे शहरों में निर्भरता कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
1: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सलेंस बन रहा है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉरपीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। G7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित ये उपग्रह भारतीय वायुसेना की सुरक्षित और निर्बाध संचार क्षमता मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग ने बताया कि सेवा प्रदाता 4G और इससे आगे के वायरलेस नेटवर्क पर इस सेवा का परीक्षण कर चुके हैं। विभाग ने कहा कि 2G और 3G तकनीक वाले वायरलेस नेटवर्क तथा सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पर CNAP सेवा शुरू करने के बारे में अलग से विचार किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: उच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों के लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ संलग्न किया जाएगा। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से संबंधित अन्य याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। ये सुनवाई SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग के बीच हुई है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सोमवार को अपनी याचिका दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च निकाला था। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से भी SIR से कथित नाम हटाने पर जवाब मांगा है। सरकार ने कहा है कि शुल्क संबंधी बाधाओं के बावजूद इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात बढ़कर करीब $51 अरब हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि में ये निर्यात $45 अरब 73 करोड़ था। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों और कृषि उत्पादों के अधिक निर्यात से इस वृद्धि को समर्थन मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है।
1: न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते 20 अक्टूबर को यानी दशहरे के दिन से लागू हो जाएगा। वहीं 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता फरवरी या मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमान केंद्र का शुभारंभ किया। यह केंद्र भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी, विश्लेषण और प्रबंधन मजबूत करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस केंद्र को वरिष्ठ नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को भारत के व्यापार प्रदर्शन, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं, नियामक मंजूरियों, आवेदनों के निपटारे और अन्य कामकाज की एकीकृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि गिव इट अप अभियान जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया जा रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में गिव इट अप अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत लोगों से स्वेच्छा से LPG गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी। इस अभियान के तहत 1,13,00,000 से अधिक LPG उपभोक्ताओं ने अपनी गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दी। इससे हुई बचत से गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। इस योजना से खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को लाभ हुआ, जो पहले खाना पकाने के लिए लकड़ी और गोबर के उपलों का इस्तेमाल करती थी। सरकार ने देश भर में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को अब तक 10 करोड़ 56 लाख से अधिक मुफ्त LPG कनेक्शन दिए हैं। वर्ष 2015 में दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गिव इट अप अभियान ने लोगों को एकजुट होकर गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया।
3: We introduce the Give It Up campaign seeking the cooperation of the public in voluntarily giving up cooking gas subsidies. We promise that for every connection given up, one poor family currently without gas would be given a connection. This will enable us to liberate many poor women from the health hazards of using firewood. This brings me to an achievement that I think even our worst critics do not dispute. This is the change in the levels of corruption.
2: उत्तर प्रदेश की रहने वाली संजू देवी ने बताया कि गैस चूल्हे से खाना बनाना काफी आसान हो गया है और उन्हें अब खाना

0: बनाते समय धुएं का सामना भी नहीं करना पड़ता।
1: पहले जब चूल्हे पे खाना बनाया करती थी मैं, तो मेरे धुएं से चेहरे पे एलर्जी हो जाती। अब मुझे इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि अब आराम से खाना बना लेती। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी।
0: गिव इट अप अभियान ने लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया है, साथ ही हर परिवार तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने के सरकार के प्रयासों को मजबूती दी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।
3: हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है, और खासकर हमारी महिला हॉकी टीम, आपने तो गोल्ड लाकर 44 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है, और जहां पंच वहां परमेश्वर। शूटिंग में शानदार प्रदर्शन 1982 के बाद मैराथन में भारत को मिली सफलता, ये वाकई बहुत सुखद है।
2: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक उछलकर 74316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक की तेजी के साथ 22997 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 पर बंद हुआ।
2: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी और निचले तथा मैदानी इलाकों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है।
5: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू के रोहतांग दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर आज सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं कांगड़ा, मंडी, चंबा और शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में वर्षा हुई है। रोहतांग दर्रे से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक अब यातायात सुबह 6 बजे से 5:30 बजे तक ही चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों को रोहतांग दर्रे पर जाने से पहले ताज़ा आधिकारिक निर्देशों की जानकारी लेने को कहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने SIR के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi unveils development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh, says Union Territories development remains a key priority for centre. Supreme Court issues notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and others on protest march to Apex Court over alleged SIR irregularities. Also seeks poll panel's reply over alleged voter deletions. Defence Ministry signs contracts worth over 4,000 crore rupees for GSAT-7C communication satellite for Indian Air Force and Varunastra heavyweight torpedoes for Indian Navy. Government mandates caller name display for telecom users from 1st of next month. Sensex climbs over 2% to

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
3: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही खेती का तरीका समझदार।
2: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
3: तो एक फसल पर निर्भर न रहें, गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निशुल्क प्राप्त करें।
2: किसान वही, खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
3: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों के गाए इसी गाने के साथ संपन्न होता है पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

0: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
1: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही खेती का तरीका समझदार।
0: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
1: तो एक फसल पर निर्भर न रहें, गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निशुल्क प्राप्त करें।
0: किसान वही खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
1: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
3: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
4: हेलो,
2: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
3: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
2: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
3: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
2: ओनली ऑन AIR ओबरा।
5: आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत FM 102.7 पर, और कार्यक्रम में अब आप सुन रहे हैं फिल्म मोहरा के इस गाने को। आवाजें हैं पंकज उदास और साधना सरगम की।

आप सुन रहे थे साधना सरगम और पंकज उदास की आवाजों में इस गाने को। फिल्म थी मोहरा। और इसी अंतिम गाने के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये अंक। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। रात्रि के 9:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। और कार्यक्रम के इस अंक में सबसे पहले लीजिए सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में इस गजल को।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
4: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है।

0: जमीन वही खेती का तरीका समझदार।
1: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
0: तो एक फसल पर निर्भर ना रहें। गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निःशुल्क प्राप्त करें।
1: किसान वही खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
0: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट। वाओ,
3: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
4: हमेशा पूछो WHY, Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।

ये था मिताली सिंह द्वारा गाया हुआ आज के कार्यक्रम सुगम संगीत का आखिरी बंद। इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर।

FM 102.7 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रसधारा। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं फिल्म एतवार का ये गाना, जिसे गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने।

आकाशवाणी की उबरा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा। फाइट क्लब, इस फिल्म में अब लीजिए सुनिए शान के साथ श्रेया घोषाल को।

फिल्म वीर ज़ारा में अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण को। आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा, और कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए फिल्म मेजर साहब के इस गाने को। आवाजें हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की।

इसी अंतिम गाने के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम रसधारा का ये अंक। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं विदुषी शोभा गोटू का ठुमरी गायन। तो लीजिए सुनिए सबसे पहले राग मिश्र पहाड़ी।

इसी राग मांझ खमाज के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर।

0: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.7 पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G-SAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। G-SAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है, उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव

0: यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने एसआईआर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने जाने और अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एसआईआर करने का निर्देश दिया है। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में कल प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लागू की हैं। नई दिल्ली में आज आयोजित प्रेस वार्ता में डीसीपी नेहा यादव ने प्रदर्शनकारियों और आम जनता से अपील की कि वे ऐसे किसी भी भीड़ में शामिल न हो जो धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क अगले 2 दिनों तक बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों ने 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।